सुप्रभात श्रोता साथियों, सुबह की सुनहरी सफर में आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM, आपका रेडियो आपकी आवाज। और मैं हूँ साथियों आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर, लेकर हाजिर हो चुकी हूँ इस ताजगी से भरी सुबह में हमारे दिन के सभी कार्यक्रमों की रूपरेखा। साथियों, हर नई सुबह अपने साथ एक नई उम्मीद, एक नए सपनों की किरण लेकर आती है, और हम भी चाहते हैं कि आपके दिन की शुरुआत भी हो ज्ञान, प्रेरणा और मधुर संगीत के साथ में। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस खूबसूरत सफर की, जहां हर पल होगा खास, कुछ नया सीखने वाला और कुछ मन को छू जाने वाला, सिर्फ सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो पर। साथियों, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सुबह 6 बजे कार्यक्रम आराधना, दिन की शुरुआत हो प्रभु के नाम से। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे भक्ति, श्रद्धा व आस्था से जुड़े गीतों को, जो आपके मन को शांति दे। तो आइए साथियों, ईश्वर की वंदना के साथ अपने दिन की शुभ शुरुआत करते हैं। इसी के बाद सुबह 6:30 पर होगा कार्यक्रम खेतीबाड़ी, क्योंकि किसान हमारे अन्नदाता है और उनकी मेहनत से ही जीवन की थाली सजती है। इस कार्यक्रम में हम लाते हैं साथियों खेती के नए तरीके, मौसम की जानकारी और कृषि विशेषज्ञों की महत्वपूर्ण सलाह को, ताकि खेतों में हरियाली बढ़े और किसानों के चेहरे पर मुस्कान खिले। इस कार्यक्रम को लेकर आती है हमारी रेडियो साथी जागृति भट्ट और उनके साथ होंगी प्रस्तुतकर्ता अंजलि पाराशर। सुबह 7 बजे श्रोता साथियों, हम प्रस्तुत करेंगे कार्यक्रम सच्चा बचपन। नन्हे मुन्ने श्रोता साथियों के साथ जहां होंगी रोचक कहानियां और ढेर सारी मस्ती। यह कार्यक्रम बच्चों की दुनिया को ज्ञान और संस्कार के रंगों से सजाता है। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी कशिश पाराशर यानी कि मैं, और मेरे साथ होंगी प्रस्तुतकर्ता अंजलि पाराशर। साथियों, इसी के बाद हम रुक करेंगे सुबह 7:30 पर, आप सुनेंगे कार्यक्रम युवाओं की आवाज, क्योंकि युवा ही देश की असली शक्ति है। इस कार्यक्रम में मिलेंगी करियर से जुड़ी जानकारियां और नए विचारों को मंच, ताकि हर युवा अपने सपनों को नई उड़ान दे सके। इस कार्यक्रम को लेकर आऊंगी मैं यानी कि आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर, और मेरे साथ होंगी हमारी रेडियो साथी जागृति भट्ट। इसी के बाद दोस्तों सुबह 8 बजे प्रस्तुत होगा कार्यक्रम सच्चा स्वराज, क्योंकि स्वराज केवल स्वतंत्रता का प्रतीक नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता और जागरूकता का संदेश भी है। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे स्वतंत्रता सेनानियों की गाथाएं और आजादी के सही मायने। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी जागृति भट्ट और उनके साथ होंगी प्रस्तुतकर्ता अंजलि पाराशर। इसी के बाद दोस्तों हम रुक करेंगे धरती की खुशबू, संस्कृति की मिठास और परंपराओं की ओर। लोक संगीत में बसती है हमारी मिट्टी की पहचान, तो तैयार हो जाइए साथियों ढोलक, बांसुरी, मंजीरे की मधुर धुनों पर झूमने के लिए कार्यक्रम लोक संगीत में। इसे आप सभी सुनेंगे ठीक सुबह 8:30 पर। इसी के बाद दोस्तों हम फिर से बढ़ेंगे अगले कार्यक्रम की ओर सुबह 9 बजे, और सुनेंगे कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। इस कार्यक्रम में आप जानेंगे डॉक्टरों की सलाह, योग से जुड़ी ढेर सारी बातें और बीमारियों से बचाव के तरीके। इस कार्यक्रम को लेकर आऊंगी मैं यानी कि आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर। इसी के बाद दोस्तों शुरू होगा हमारा विशेष प्रेरणादायक कार्यक्रम सपनों की उड़ान, जिसमें आप जानेंगे साथियों नए नए प्रेरणादायक विषयों के बारे में और हमारी सपनों की उड़ान के बारे में। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी और इसे आप सुन पाएंगे ठीक सुबह 9:30 पर। तो श्रोता साथियों, जैसा कि रूपरेखा कार्यक्रम की आप जान ही पा रहे हैं, अब समय है सीधे आपसे जुड़ने का और आपकी बात सुनने का। कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में, जहां आप सभी सुनेंगे आपकी राय, आपके अनुभव और समाज से जुड़ी बातों को। इसी के आगे साथियों दोपहर 11 बजे से 1 बजे तक प्रस्तुत होगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश, जो है सिर्फ आपके नाम। इस कार्यक्रम में बजेंगे वही गीत जो आपके पसंदीदा होंगे,

आप अपनी फरमाइश और संदेश के लिए हमें व्हाट्सएप एसएमएस कर सकते हैं साथियों हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो साथियों जुड़े रहिए सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो के साथ में, क्योंकि यहाँ आपकी आवाज ही है सबसे खास। तो श्रोता साथियों, यह तो थी आज की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। आइए अब शुरुआत करते हैं आज की सुनहरी सुबह की कार्यक्रम आराधना से।

0: आज के सुविचार।
1: मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता क्या होती है? सोचिए। धन, प्रेम, अहंकार। मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता होती है उसके रहस्य। चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, कितने भी प्रबल क्यों ना हो, परंतु उसके रहस्य उसके नाश की चाबी होती है। इसलिए यदि प्रबल रहना है, शक्तिशाली रहना है, समर्थ रहना है, तो अपने रहस्य को किसी को भी ना बताएं, ना मित्र को और ना ही शत्रु को, क्योंकि समय पड़ने पर कब कौन शत्रु हो जाए ऐसा कहना संभव नहीं। विभीषण को रावण के अमृत कुंड का ज्ञात था, इसीलिए प्रभु श्री राम रावण का वध करने में सफल हो सके। इसलिए उचित यही है कि आप अपने रहस्य को स्वयं तक ही

0: जागृति बुन, आपे कारे सोचू है, अगर आप बुंदे रुके जाएंगा तो हूँ था है।
1: नाना अंजलि बुन, हूँ था का?
0: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदिया है, ये हुके जाएंगा, हितर बंजर थे ही जाएंगा, ने आपड़ो जीवन जे है, ये भी रुकी जागा।
1: ओ अंजलि बुन, इटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
0: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
1: होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बुन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
0: होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बुनो ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ, ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है, आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित है।

0: कार्यक्रम खेतीवाड़ी हम रवारा हंग्रे किसान भाई बोन ने आपनी बोन जागृति ने आपनी बोन अंजलि नु राम राम। बोने आप हमरी रहो आपरो सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM ने आप सबनो स्वागत कर रहा अपने आज निक कार्यक्रम खेतीवाड़ी में। हवे किसान भाई बोनो लेने हाजिर थे गए हैं कार्यक्रम खेतीवाड़ी ने लेने एक नया विषय ने हाथे। तो जागृति बोन आपने देखी रहो के आपने जे फसले हैं ई अणी टाइम बारिश माते निर्भर करे हैं। आपने देखी रहो के साटा पड़ी नहीं रहा, तो एवं में आपने जे किसान भाई बोन है ई चिंता में पड़ी गए हैं कि आपने हर ते अपनी फसलों नु ध्यान रखवो होगा। तो आज कार्यक्रम में आपने किसान भाई बोनों तक की घना का नी बातें करेंगा कि अगर आपने जैविक खेती कर रहा हाँ तो अगर बारिश नहीं भी था तो भी आपकी खेती में नमी बनी तकी रहे है, तो इन कारण आपकी जो फसलें हैं इन्होंने कम नुकसान पुगे है। तो एवं घना का नी बातें लेने अपने कार्यक्रम में हाजिर थी गए हैं ने अना विषय माते घना का नी बातें भी करेंगा ने पण आपने जागृति बूंदी कस कि आपने कार्यक्रम नु दस्तूर है कि कार्यक्रम की शुरुआत ने पहले आपने आपने भाई बहनों ने गीत संगीत हमराव, तो सबसे की पहले हमरा विदा गीत ने मोरे कर आपड़ी बातें
1: होवे। तो किसान भाई बहन आप हम बरतरो आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें वागर रेडियो 90.8 FM माते।

0: उपले डालकर और 7 दिन तक उसको ढक के रख देते हैं और जो पानी उसका है 7वें दिन उसको निथार के उसका कंसंट्रेशन बना के हम 10% तक के में जो अपना घोल बना के उसको पानी के साथ छिड़काव कर सकते हैं।
1: जी हाँ।
0: तो इसमें क्या होगा कि सीमित पानी के अंदर हम कुछ दिन के लिए अपन फसल को बचा पाएंगे।
1: जी बिल्कुल,
0: क्योंकि वो हालांकि वैसा जो हम बारिश से कहते हैं वो तो नहीं होने वाला, लेकिन पत्तों के ऊपर थोड़ी नमी बनी रहेगी तो जो फसलों को लाइफ सेविंग मिल जाती है।
1: जी बिल्कुल सर।
0: इसी तरह से जो अपनी जो सब्जियों वाली खेती होती है उसमें भी अभी एक ऐसी कई सारी चीजें हैं कि उसमें भी पानी हल्का सा जो बूंद बूंद पद्धति से पानी पिलाया जाता है, स्प्रिंकलर से पिलाया जाता है, फव्वारा पद्धति से पिलाया जाता है, और जो अपन ने कहा पत्तों के ऊपर पानी का छिड़काव,
1: जी बिल्कुल,
0: उसके साथ में कुछ अपने जो
1: जैविक
0: खाद वगैरह उसका छिड़काव ताकि पौधे की लाइफ बच जाए। और ये भी देखते हैं कि अगर जब क्योंकि उसमें तो जैसे पपीते हैं या जितने भी हमारे उद्यान की फसलें हैं तो उसमें पौधे सीमित मात्रा में होता है, तो हमें उसको बूंद बूंद पद्धति से या सीमित मात्रा में पानी पिलाकर अभी हमें उसकी जीवन को बचाने की आवश्यकता होती है।
1: तो
0: उसमें ये कार्य करके हम पानी का बचाव कर सकते हैं और इस विषम परिस्थिति से हमारे पौधों का रखरखाव कर सकते हैं। फिर ये भी देखा जाता है कि जब मतलब इस तरह की जो हवाएं होती है तो वो आती है तो वो भी सतह पर जो नमी है उसको उड़ा देती है।
1: जी बिल्कुल।
0: तो जहाँ पर ऐसे बैरियर क्रॉप है इस तरह से अगर लगे होते हैं तो उसमें भी पानी का उड़ना कम हो जाता है। तो इस तरह से जो कुछ कार्य हैं तो वो उनसे हम ये फसलों को बचा सकते हैं।
1: जी बिल्कुल सर, आपने बहुत सही कहा। हमारे जो किसान भाई बहन है वो किस तरीके से अपनी फसलों की देखभाल कर सकते हैं वो बहुत सारी बातों पर ध्यान देकर ये जो कार्य है वो कर पाते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे जो खेत हैं उसके चारों ओर अगर हम फलदार पेड़ पौधे लगा देते हैं और उन पेड़ पौधों पर अगर हम पानी की सिंचाई करें तो इससे भी हमारे खेत में नमी बनी रह सकती है। तो ये सारी चीजें हमारे किसान भाई बहनों को ध्यान रखने की बहुत जरूरत है, क्योंकि हमारे जो किसान भाई बहन है वो अपनी खेती से ही आमदनी प्राप्त कर पाते हैं। अगर ये बारिश के मौसम में बारिश नहीं आ रही है तो उन्हें खेतों पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और जैविक खेती को अपना कर अपने खेतों का बचाव कर सकते हैं और खेतों में नमी को बरकरार वो रख सकते हैं।
0: हाँ, साथ में ये भी है कि अपन मिलवा खेती करते हैं या जो अपन कहते हैं कि जो सांगड़ी खेती अपन अपनी भाषा में कहते हैं, तो सांगड़ी खेती में क्या होता है कि जो फसल की सघनता ज्यादा होती है।
1: जी बिल्कुल।
0: यानी कि पत्तों बहुत ज्यादा फॉलेज होता है उसमें और मिट्टी के ऊपर जो पानी की नमी को उड़ने का संभावना कम रहती है, तो उसमें क्या है पौधे आपस में सब बसते हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: तो उसमें पानी की मात्रा की आवश्यकता कम होती है। तो ऐसे समय में जब हमें इस तरह की खेती के हमने मॉडल अपनाए हुए हैं तो हमें निश्चित रूप से फायदा होता है। जैसा भी आपने बताया कि जैविक खेती है तो जैविक खेती में नमी है, जैविक खेती इसलिए कहते हैं कि जैविक खेती अपनाओ ताकि हमें खेत के अंदर नमी बनी रहे, खेत के अंदर हमारा पोषण बना रहे, खेत में उपजाऊपन बना रहे। और क्योंकि मिट्टी हमारी अभी की नहीं है, मिट्टी हमारी बरसों से लाखों सालों से चली आ रही है और लाखों साल आगे चलेगी। तो आज हमारा किसान भाइयों का ये दायित्व है कि हमें किसी तरह से मिट्टी को बचा के रखें। तो ऐसा ना कि हम थोड़ी लापरवाही से मिट्टी को खत्म कर दें, हम रेगुलर रासायनिक खेती कर करके उसके अंदर उसके उपजाऊपन का ह्रास कर दें। तो ये हमें अभी के समय में ये समझने की बहुत बड़ी आवश्यकता है कि जिन किसानों ने जैविक खेती की है तो वो फायदे में है और आगे भी हम ये माने कि हमें जैविक खेती अपनानी चाहिए।
1: जी बिल्कुल। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और हमारे किसान भाई बहनों को आपने बहुत अच्छी जानकारी दी।
0: धन्यवाद।
2: અંજલિ બોલ જેમ કે આજે આપણે રોકડેજી સર આવી હતા ને એણે આપણને ઘણા ઘણી વાતે બતાડી કે આ પાણી તો પડતું નથી, તેવામાં આપણી જે ફસલ હે એને આપણને હરતે રખરખાવ રાખવું પડે।
1: હવે જાગૃતિ બોન એણે આપણને ઘણી આખી એવી વાતે બતાડી હે જે આપણને ધ્યાન રાખવી હોગા, ને અગર એ વાતે આપણે ધ્યાનમાં રાખંગા તો આપણે દેખી શકો કે આપણે જે ફસલ હે એનું જે ઉત્પાદન હે એ ખરાબ નહીં થાય। કેમ કે આપણે દેખ કે જે વખત આપણે જૈવિક ખેતીની વાત કરે તો અણી ખેતીમાં વધારે પાણીની જરૂરત નથી પડતી। આપણે દેખ કે આપણે જે ખાદ નાખ ને જે એનમાં મિટ્ટીની ઉર્વરા ક્ષમતા રહે એ બી વધી તકી રહે, તો એનમાં નમી રહેવાને કારણ આપણી જે ફસલે હે અગર એનાને ટાઈમ માટે પાણી નહીં મળે તો આટલું આપણને નુકસાન નહીં ઉઠાવવું પડે હે, ને એને સાથે આપણે જે ખેતર હે એને સારે આડી અગર આપણે ફલદાર પૌધો લગાવી દ ને એનામાં પાણીની સિંચાઈ કરી દ તો એન તકી બી આપણે ખેતરમાં નમી બી બની તકી રહે। તો ઘણા કની એવી વાતે હે જે આપણને ખેતી કરતે ટાઈમ ધ્યાન રાખવીશું।
2: તો અંજલિ બોન વાતે તો આપણે ઘણા કની કરી, ને હવે આપ દેખી રહો કે ટાઈમ થઈ ગયો હે સૂટો પડવાનું, તો સૂટો તો પડે પણ સાથે સાથે સાંભળી લે એક ઓર કિતને મોરે પડે સૂટો
1: હવે।

0: अंजलि बोल गीत तो आई शुरू नड़स गीत हाथे पड़ा सूटा आशा करा की आज जेवी बातें करी कार्यक्रम खेती बाड़ी में ये आपड़े किसान भाई बोनों ने गमी होंगा तो किसान भाई बोन आपने हमारो आज नो कार्यक्रम केवु लाग्यो एना बारे में आप राय सुझाव आली शको आपड़े अड़ा पता माते
1: तो बोने लकी लो अमारू पतु है कार्यक्रम खेती बाड़ी वागड़ रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कुपड़ा वागथरा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान अमारु पिन कोड नंबर है 327001 अजी वधारे जानकारी बल्ले आप अमने फोन करी शको अमारे अणा फोन नंबर माते अमारु फोन नंबर है 9460051234
0: तो भाई बन फेरी मलंगा अणस कार्यक्रम में एक ना विषय ने हाते तारुदी
2: राम राम
0: राम राम, राम, राम।

0: भाई ने बोनो घर तक ही निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। माँ ने दुआ, पिता ने उम्मीद, निसोरनी मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। सेहत नु राज मुंह है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की परबात नी शुरुआत पानी तकी करो, थोड़ू सू व्यायाम ने तात्काली नी जीवन जीवा। फल सब्जी रोजे खा, बीमारी ने दूर भगावा। जंक फूड तकी दूर रह, नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरो, आज जीवन नो सहारो है। आज तकी आराज ने अपना वंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो, खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नु असली राज। वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: पप्पा पप्पा मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है।
0: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा। होवे न कोई गरीबी रोके, न कोई हालात रोके, शिक्षा तक इस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
1: हिंडो स्कूल जा, अपड़े अपना भी अपना पूरा करो।
0: याद रखिए, कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
1: होवे जयवरे सब सोरा भरेगा, तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा।
0: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: थारी में पासो लावो चूनू हवाद, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारते नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो।
0: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा।
4: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

एक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM पर मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर हाजिर हो गई हूं साथियों कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। श्रोता साथियों आज हमारी कार्यक्रम में आपसे बातचीत का विषय है आदर्श टिफिन कैसा हो। जी हाँ, बच्चों का स्कूल बैग हो या किताबें, उनके साथ एक चीज रोज जाती है, वो है टिफिन। देखने में छोटा सा टिफिन, लेकिन बच्चे की सेहत, ऊर्जा, पढ़ाई और पूरे दिन के उत्साह में इसकी भूमिका बहुत बड़ी होती है। अक्सर माता पिता की चिंता होती है कि आज टिफिन में क्या दें। बच्चा रोज एक ही चीज खाने से मना करता है, सब्जियां पसंद नहीं करता, फल घर पर छोड़ देता है और पैकेट वाले स्नैक्स देकर खुश हो जाता है। ऐसे में श्रोता साथियों सवाल है कि टिफिन स्वादिष्ट भी हो, पौष्टिक भी हो और बच्चों को पसंद भी आए तो कैसे। आज इसी विषय पर हम बात करेंगे कि आदर्श टिफिन कैसा हो। तो आइए जानते हैं कुछ आसान से काम की बातों को। लेकिन उससे पहले क्यों ना हम हमारे श्रोता साथियों को एक प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन करवा दें। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागर रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करना चाहती हूँ कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि मैंने आपको गीत से पहले विषय से रूबरू कराया था कि आज हम बात करने वाले हैं आदर्श टिफिन कैसा हो, तो इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ विषय विशेषज्ञ जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं उन्हीं से ढेर सारी बातों को, फिर आगे हम हमारी बातें जारी रखेंगे। सर नमस्कार।
1: नमस्कार
0: सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं वागड़ रेडियो परिवार में।
1: धन्यवाद।
0: जैसा कि सर आज आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं और आज हमारे कार्यक्रम में आपसे बातचीत का विषय है कि बच्चों का टिफिन कैसा होना चाहिए, क्योंकि अभी के समय में हम देख रहे हैं कि बच्चों की जो खान पान की आदत है वो बहुत ज्यादा बदल चुकी है। ये बातें हमारे कार्यक्रम में आपसे अवश्य रहेंगी, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में मैं आपके परिचय से रूबरू होना चाहूंगी।
1: मैं चाइल्ड हूँ, मेरा 28 साल का एक्सपीरियंस है। मैं जयपुर में प्रैक्टिस करता हूँ और मैं बच्चों की सोशल प्रॉब्लम्स, खाने पीने की प्रॉब्लम्स, बच्चों की स्कूली समस्याएं, इसमें विशेष रुचि रखता हूँ। और इसमें हम गांवों तक और पेरिफेरी तक, आदिवासियों तक हम जाते हैं और इन समस्याओं को सुलझाते हैं, और पर्टिकुलरली हम सरकारी स्कूलों में ज्यादा जाते हैं।
0: बिल्कुल। तो सर, जैसा कि आपने आपका परिचय हमें बताया और आज हमारे कार्यक्रम में बातचीत का विषय भी बच्चों के खान पान से जुड़ा हुआ ही है, तो सर आप सबसे पहले हमें यही बताइए कि बच्चों के लिए एक आदर्श टिफिन कैसा होना चाहिए।
1: बच्चों के लिए आदर्श टिफिन जो होता है उम्र के हिसाब से होता है और एज के हिसाब से होता है, और एज के हिसाब से उनका जो टिफिन हम भेजते हैं उसके तीन क्राइटेरिया होते हैं। उसमें एक तो टिफिन नीट एंड क्लीन होना चाहिए, उसमें जो भी खाने का पदार्थ हम रखें वो फ्रेश होना चाहिए। नंबर टू, वो फिलिंग होना चाहिए कि जिससे पेट भर जाए बच्चे का। और नंबर तीन, उसमें न्यूट्रिशियस वैल्यू भी होनी चाहिए, जो बच्चे को न्यूट्रिशन मिले, जिससे एनर्जी मिले, कैलोरीज मिले।
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। जैसा कि आपने हमें बताया कि बच्चों के लिए एक आदर्श टिफिन कैसा होना चाहिए, यही सर बच्चे के टिफिन में किन किन पोषक तत्वों का शामिल होना बहुत जरूरी है।
1: देखिए, इसमें पोषक तत्व बहुत सारे होते हैं, लेकिन इनको मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ। इसमें एक तो प्रोटीन होना बहुत जरूरी है, एक उसमें फैट भी होना बहुत जरूरी है, फैट मीन वसा, और एक मिनरल्स होने चाहिए, और एक विटामिन और जो ट्रेस एलिमेंट्स हैं जो बहुत कम मिलते हैं वो भी खाने में पूर्ति करने के लिए होने चाहिए।
0: बिल्कुल। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि बच्चों के टिफिन में कई पोषक तत्व ऐसे जरूरी हैं जो होने चाहिए, यही सर क्या टिफिन में केवल पेट भरने वाले भोजन पर्याप्त है या उसमें पोषण का संतुलन भी जरूरी है?
1: पेट भरने वाला भी होना चाहिए और पोषण का संतुलन भी होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि पेट तो हम जैसे कोई मिठाई ज्यादा खा लेगा, कोई पर्टिकुलर फूड ज्यादा खा लेगा, लेकिन उससे न्यूट्रिशन एक ही एक तरह का मिलेगा, पूरा जनरल और बैलेंस न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। तो न्यूट्रिशन के लिए डाइट बैलेंस होनी चाहिए और पेट भरने के साथ साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि सब चीजें बैलेंस रूप से, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी जा रहे हैं, उसमें प्रोटीन भी जा रहे हैं, उसमें फैट भी जा रहे हैं, उसमें मिनरल्स भी जा रहे हैं, ट्रेस एलिमेंट्स भी जा रहे हैं, मल्टीविटामिन भी जा रहे हैं। तो ये सब चीजें ध्यान रख के हमें भोजन का कंपोजिशन जो हम बच्चे को खिलाते हैं उसमें होना चाहिए।
0: बिल्कुल सर, जैसा कि आप हमें बहुत अच्छी जानकारी से अवगत करवा रहे हैं, यही अब मैं जानना चाहूंगी कि बच्चे की उम्र के अनुसार उनके टिफिन में क्या क्या परिवर्तन किए जा सकते हैं।
1: देखिए, बच्चा जब छोटा होता है तो 1 से 5 साल तक शैतानी बच्चा ज्यादा करता है।
0: बिल्कुल।
1: तो उनके थोड़े से क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट ज्यादा रखे जाने चाहिए ताकि उनको एनर्जी मिलती रहे, थोड़ा हल्का सा मीठा उसमें होता है, कुछ जैसे चावल होते हैं, इस तरह से आलू होते हैं, जैसे स्टार्च कार्बोहाइड्रेट जिसमें ज्यादा होते हैं वो हमें रखना चाहिए। अच्छा, और साथ में प्रोटीन की डाइट भी होनी चाहिए क्योंकि उनको प्रोटीन की जरूरी होता है, और फैट उनके लिमिटेड रखना चाहिए क्योंकि फैट भी उनको ग्रोइंग चाइल्ड होते हैं तो फैट की भी जरूरत होती है। लेकिन चूंकि एक्टिविटीज इन बच्चों की ज्यादा होती है तो इसमें कार्बोहाइड्रेट और कैलोरी जिससे ज्यादा मिले वो हमें खान पान रखना चाहिए। फिर बच्चे थोड़े बड़े होते हैं, थोड़े पढ़ने वाले हो जाते हैं, जो बच्चे स्पोर्ट्स ज्यादा खेल रहे हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा दें, और जो बच्चे एक्सरसाइजेस ज्यादा करते हैं, बच्चे बड़े होने के बाद 10-12 साल के बच्चे एक्सरसाइज भी करते हैं, साइकिलिंग भी करते हैं और खेलते भी हैं, कूदते भी हैं, कोई बैडमिंटन खेल रहा है, बास्केटबॉल खेलते हैं, इनके लिए हमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन भी इनके लिए बहुत जरूरी होता है। तो इनको प्रोटीन की डाइट में नापे और डॉक्टर से राय ले लेंगे कितना प्रोटीन देना है पर डे और किस डाइट में ज्यादा होता है, तो वो इतना प्रोटीन इन बच्चों को दिया जाए।
0: बिल्कुल सर।
1: और वो प्रोटीन कई रूपों में दिया जा सकता है, तो वो अलग अलग डाइट जिसकी जैसी घर का रहन सहन होता है, जैसा सेटअप होता है, जैसा रिलीजियस सोशल कस्टम्स के हिसाब से प्रोटीन डाइट देनी चाहिए।
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। जैसा कि आप हमें बता रहे हैं कि उम्र के अनुसार बच्चों के खान पान में प्रोटीन और अन्य जो पोषक तत्व हैं उनकी चीजें अलग अलग होनी चाहिए। नहीं सर, रोजाना एक ही तरह का टिफिन बच्चों के लिए हम देखते हैं कि ठीक नहीं होता है। अलग अलग तरह के भोजन बच्चों के खाने में हम कैसे शामिल कर सकते हैं?
1: इसमें निश्चित रूप से यह कि एक ही तरह का भोजन बेचेंगे तो बच्चे को बोरियत लगेगी, खाना अच्छा भी नहीं लगेगा। तो वैरायटी ऑफ फूड्स कई बार रखना चाहिए और कभी उनको प्रोटीन के रूप में, फैट के रूप में, कार्बोहाइड्रेट के रूप में डिफरेंट डिफरेंट डाइट्स होती हैं। तो कभी चावल रख दिए, कभी चपाती रख दी, कभी खिचड़ी रख दी, कभी दलिया रख दिया। और मेरी तो पर्सनल राय है कि कभी कभी सरप्राइज के रूप में उनके टिफिन में हफ्ते में एक बार कभी स्नैक्स भी रख दिए जाए, और वो कभी कभी बाजार के बने हुए हों तो उनके लिए एक सरप्राइज होता है और उनका एंथुसियाज्म बढ़ जाता है इससे खाने पीने में। तो उनके लिए ये भी अगर कर दिया जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो इस तरह वैरायटी ऑफ फूड और टेस्ट चेंज भी करें और उनको थोड़ा सा प्रफुल्लित रखने के लिए बीच बीच में हफ्ते में एक बार अगर स्नैक भी रख देंगे, स्नैक्स जो बाजार के आते हैं जो बच्चे पसंद करते हैं, थोड़ी सी चिप्स डाल दी, कभी बिस्किट्स रख दिए, तो बच्चे बहुत उनको अच्छा लगेगा कि हमें खान पान में इस तरह की चीजें भी मिल रही हैं और उनका खाने के प्रति रुचि बनी रही।
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा, क्योंकि हम देखते हैं कि बच्चों को अगर हम हमेशा पौष्टिक चीजें ही दें तो उनका मन उससे उब सकता है, लेकिन पौष्टिक चीजों के साथ साथ कभी हम अलग अलग तरीके की चीजें शामिल करेंगे तो बच्चों की खाने में रुचि भी रहेगी और बच्चे मन लगाकर अच्छे से खाना भी खाएंगे। यही सर हम देखते हैं कि बिस्किट, चिप्स और अलग अलग प्रकार के जो स्नैक्स हैं उन्हें कम बच्चों को दिया जाना बहुत जरूरी है। तो उसका क्या कारण है और उसके क्या फायदे हैं?
1: उसके फायदे न दिए जाने के तो फायदे ही फायदे हैं, और कारण इसके ये होते हैं कि एक तो ये क्या होता है कि ये पैक्ड होती है चीजें, तो जो चीजें पैक्ड होती हैं ये कब पैक हुई, बहुत लंबे टाइम से पैक हो जाती हैं, फिर बाजार में आती हैं, फिर बिकती हैं, फिर इनकी डेट लिख दी जाती है, तो ये इतने टाइम पड़ी पड़ी इनका डिजेनरेशन शुरू हो जाता है, डिजेनरेशन से थोड़ी थोड़ी टॉक्सिक हो जाती है कई बार। फिर इनमें सब में प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो शरीर के लिए ठीक नहीं होते, किसी में फर्स्ट क्लास प्रिजर्वेटिव होते हैं, किसी में सेकंड क्लास प्रिजर्वेटिव होते हैं, तो ये हेल्थ के लिए ठीक नहीं होते। इनका ऑयल और जो फैट होता है वो डिजेनरेट हो जाता है। जैसे क्रीम बिस्किट्स होते हैं उनकी क्रीम खराब होनी शुरू हो जाती है, और बिस्किट्स का जो ग्लूकोज और उसमें जो फैट मिलाया जाता है वो डिजेनरेट होना शुरू हो जाता है। तो ये कुल मिला के टेस्ट के लिए बच्चों को कभी कभार दे दिए जाए, लेकिन रूटीन इनका ना बनाए, क्योंकि रूटीन बनाने में ये हेल्थ के लिए घातक होते हैं। और टेस्ट चेंज के लिए कभी कभी बच्चों को दे दिए जाए ताकि बच्चों का मूड एलिवेट रहे और उनको टेस्ट चलता रहे, लेकिन ये एज सच रूटीन बनाना है और रोज देना और इसको डाइट का सब्स्टिट्यूट मानना गलत है।
0: बिल्कुल सर, जैसा कि आपने बताया कि किस तरीके से हमें बच्चों के खाने में बिस्किट, स्नैक्स और पैकेट वाली चिप्स वाली चीजों को कम शामिल करना चाहिए, और हो सके तब तक हमें बच्चों को ये चीजें नहीं देनी है। नहीं सर, टिफिन में फल किस तरह और कितनी मात्रा में हम शामिल कर सकते हैं?
1: देखिए, फ्रूट्स बच्चों को सप्लीमेंट के तरह देने चाहिए। जैसे हम बड़े लोग हैं, जैसे हम खाना खाते हैं तो हम जैसे सप्लीमेंट के रूप में मिठाई खाते हैं, लास्ट में थोड़ी सी मिठाई खा लिया, पापड़ खा लिया, वैसे ही बच्चों को फ्रूट्स देने चाहिए, क्योंकि फुली अगर बच्चों को फ्रूट्स देंगे तो वो पेट उनका भर जाएगा और वो खाना कम खाएंगे, तो न्यूट्रिशन लेवल जो फूड से मिलता है वो बच्चों को फलों से नहीं मिल पाएगा और बच्चों का पेट भर जाएगा। तो ये फ्रूट्स कंप्लीट डाइट नहीं होते, लेकिन इनमें कुछ मिनरल्स और कुछ ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं, तो सप्लीमेंट के थ्रू पे देंगे तो इनकी फिलिंग भी होती रहेगी, इनकी पूर्ति भी होती रहेगी और बच्चों की भूख भी नहीं मरेगी।
0: बिल्कुल सर, यही अब मैं जानना चाहूंगी कि बच्चों को रोज मीठा देना जरूरी है, और अगर नहीं तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें बच्चों को देनी चाहिए?
1: देखिए, ऐसा है कि मीठा जो होता है वो जरूरी तो होता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा कभी ना दिया जाए। जैसे कुछ चीजें होती हैं जो चीनी या गुड़ के बिना बच्चों को नहीं लगेंगी, जैसे हलवा बनेगा, खीर बनेगी, तो उसमें तो मिठास हमको डालनी ही पड़ती है।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन अननेसेसरली दूध में भी मीठा दे रहे हैं, दही में भी मीठा मिला रहे हैं, हर जगह मीठा दे रहे हैं, वो नहीं देना चाहिए। और कुछ नेचुरल चीजें होती हैं जब बच्चे खाएंगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे केला खा रहे हैं, एप्पल खा रहे हैं, अनार खा रहे हैं, उनमें जो मिठास होती है वो नेचुरल शुगर्स होती है, तो वो अगर दे दी जाए तो बच्चे को उससे नुकसान नहीं होता, फायदा ही होता है। तो शुगर देनी है लेकिन एक्सेसिवली नहीं देनी, रूटीन में जो जहाँ कंपलसरी है और जहाँ जरूरत है और जहाँ बिना चीनी के काम नहीं चलेगा, जिन प्रिपरेशन में, वो प्रिपरेशन चीनी वाली ही देनी पड़ेगी।
0: बिल्कुल सर, तो जैसा कि आपने हमें बताया कि बच्चों को मीठा कितनी मात्रा में देने की जरूरत है, यही सर मैं अब पानी के बारे में जानना चाहूंगी कि बच्चों को पानी कितनी मात्रा में पीना है, और साथ ही जो स्कूल जाते हैं, गर्मियों में खेलकूद जो बच्चे करते हैं, उनके लिए पानी की चीजें कैसे बदलती हैं?
1: देखिए, ऐसा होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जो स्कूल गोइंग होते हैं, जो 2 से 5 साल तक के होते हैं, नॉर्मली आजकल हमारे यहाँ 2 साल 3 साल के बच्चे को स्कूल भेजना शुरू कर देते हैं, तो इन बच्चों को 1.5 लीटर 2 लीटर पानी करीबन दे देना चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: और जो बड़े बच्चे हो जाते हैं जो एक्टिविटी ज्यादा करते हैं और स्कूल में कहते हैं 5 से 10 साल के लिए उनको 2.5 लीटर के करीब, और जो 10 साल से ऊपर के बच्चे होते हैं जो एडोलेसेंट हो जाते हैं स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करते हैं उनको 3-3.5 लीटर भी पी ले और स्पोर्ट्स के दौरान भी एक्सेसिवली वाटर पिए तो ठीक रहता है।
0: बिल्कुल सर, तो जैसा कि आपने पानी की मात्रा बताई और यही हम टिफिन को लेकर बच्चों की बात कर रहे हैं, तो कम समय में बनने वाले कौन से ऐसे पौष्टिक खाद्य पदार्थ हैं जो बच्चों को टिफिन में दिए जा सकते हैं?
1: फॉर एग्जाम्पल जैसे घरों में हम जो नाश्ते में चीजें बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल पोहे बनाते हैं, चीले बनाते हैं, सूजी के चीले बनते हैं, बेसन के चीले बनते हैं,
0: बिल्कुल,
1: तो इस तरह की जो तले हुए आलू होते हैं अच्छा कम ऑयल में तले जाए, कम ऑयल में फ्राई की जाए, और जब इनको प्रिपरेशन बन जाती है तो इनका ऑयल निकाल लिया जाए, तो इस तरह की चीजें जो होती हैं जिनको ये होम फास्ट फूड बोलते हैं, बाजार के तो अलग फास्ट फूड होते हैं, होम में बने हुए अलग होते हैं, तो इस तरह की चीजें हम अर्जेंट अगर कभी बनानी हो तो इस तरह की चीजें रख के दे सकते हैं, तो बच्चों का टेस्ट भी चेंज हो जाएगा और बच्चे खुश भी होंगे इस तरह का फूड देख के, तो ये इस तरह के फूड बीच बीच में रखे जा सकते हैं।
0: बिल्कुल, लेकिन सर हम देखते हैं कि बहुत सी बार बच्चे जो हैं खाने और सब्जियों और फल को लेकर मना कर देते हैं कि हमें नहीं खाना है, तो माता पिता किस तरीके से बच्चों को इन सारी चीजों को लेकर प्रोत्साहित कर सकते हैं?
1: प्रोत्साहित करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बच्चों को मोटिवेट करें पहले तो, अच्छा एक लिमिटेड लेवल तक कराएं, कई पेरेंट्स क्या होते हैं सुबह से शाम तक बच्चे के पीछे पड़ जाते हैं कि तेरे को फ्रूट्स खाने, तो उसको लगता है पता नहीं मुझे क्यों खिलाना चाहते हैं ये,
0: बिल्कुल,
1: तो वो बच्चा जिस चीज का ज्यादा जोर दो तो उससे दूर होता जाता है। तो मेरे पास जब बच्चे आते हैं तो मैं उनको पेरेंट्स को ये कहता हूँ कि आप इनको जब बिस्किट्स वगैरह या चिप्स वगैरह रख के देते हैं तब साथ में फ्रूट्स डालते हैं और इनको कहें जब ये फ्रूट्स खाओगे तब ये चिप्स वगैरह मिला करेगी, तो वो फास्ट फूड के चक्कर में, चिप्स के चक्कर में बिस्किट जब हम हफ्ते में एक आध बार रखेंगे और या पोहे रखेंगे या इडली रखेंगे या चीले रखेंगे तो बच्चे इनके लालच में कि ये खाना रखेंगे पेरेंट्स तो फ्रूट्स खा लेते हैं, मेरा ऑब्जर्वेशन और ये सक्सेसफुल टेक्निक है अगर इसको लागू किया जा सकता है पेरेंट्स को।
0: बिल्कुल, तो जैसा कि सर आपने बहुत अच्छी तरीका माता पिता को बताया है, यही मैं जानना चाहूंगी कि बच्चों को टिफिन पूरा खत्म करने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए या भूख के अनुसार ही बच्चों को खाने देना चाहिए?
1: नहीं, फूड टू फूड वेरी करता है, कई बार बच्चों को टेस्ट अच्छा नहीं लगता है तो बच्चे खाना छोड़ के ले आते हैं, तो हमें ये ऑब्जर्व करना है कौन सा खाना छोड़ रहे हैं कौन सा नहीं छोड़ रहे हैं, और उस प्रिपरेशन को 2-3 तरह से पहले जब घर में खाना खिलाते हैं बना के देखा जाए, और वो प्रिपरेशन उनको जैसे पोलिया की सब्जी है मसाले में अच्छी लग रही है रॉ अच्छी लग रही है तो वो देख के उस हिसाब से दिया जाना चाहिए, जब लगता है कि इस तरह की प्रिपरेशन ये तली हुई घिया खा लेंगे या रस्से वाली घिया खा लेंगे तो इस तरह की दिए जाए, क्योंकि उनको हो सकता है कि सूखी घिया अच्छी नहीं लग रही हो, या तो इस तरह से टेस्ट वेरी किया जा सकता है प्रिपरेशन को चेंज करके।
0: बिल्कुल, और अगर सर बच्चा टिफिन रोज वापस घर लेकर आता है तो माता पिता क्या करें?
1: उसको देखे कि साइकोलॉजिकली उसको डाइवर्जन तो नहीं हो रहे हैं, कई बच्चे जैसे ज्यादा मोबाइल देखते हैं तो आजकल मोबाइल के प्रचलन के चक्कर में हायर इनकम नहीं लोअर सोशल इकोनॉमिक नहीं पुअर लोग भी मोबाइल बच्चे देखते रहते हैं, तो उनसे इनका थोड़ा सा डाइवर्जन हो जाता है, ब्रेन में थोड़ा सा क्या है न्यूरो ट्रांसमीटर्स डिस्टर्ब हो जाते हैं तो इनको पता नहीं लगता कब भूख लग रही है कब लग रही है, एपिटाइट छोड़ देते हैं, एंग्जाइटी हो जाती है, स्ट्रेस हो जाता है, तो इन सब चीजों को नोट करें, अगर इनमें से कोई चीज निकलती है तो उसको दूर करने की कोशिश करें।
0: बिल्कुल सर, तो जैसा कि आप बहुत अच्छी जानकारी हमें दे रहे हैं तो यही अब मैं जानना चाहूंगी कि बच्चे के टिफिन में हम स्थानीय सब्जियां और फल शामिल करते हैं तो उसके क्या फायदे हैं?
1: सब्जियों में देखिए मल्टीविटामिन होते हैं, इनमें मिनरल्स होते हैं जैसे मैग्नीज मैग्नीशियम कैल्शियम ये सब चीजें होती हैं, इनमें ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं जैसे कॉपर जिंक, जैसे मटर की सब्जी उसमें कॉपर खूब होता है, सर्दी सर्दी हम खाते हैं तो कॉपर बॉडी में, ये माइक्रो एलिमेंट्स होते हैं जिनकी माइक्रो डोजेस चाहिए, लेकिन ये जब इस तरह की चीजें हम खाते हैं तो उससे उनकी आपूर्ति हो जाती है, फुलफिलमेंट हो जाता है बॉडी में, तो ये फ्रूट्स और ये जो है ये इन चीजों के काम आते हैं, और न्यूट्रिशियस वैल्यू बनाने के लिए हमें रोटी सब्जी चावल दालें प्रोटीन चने बिरिये और डिफरेंट तरह की सब्जियां और ये चीजें हमें देनी पड़ती हैं।
0: बिल्कुल सर, तो जैसा कि आपने बताया कि स्थानीय चीजों को हम बच्चे के खाने में शामिल करते हैं तो उसके क्या फायदे होते हैं, तो जैसा कि कार्यक्रम में टिफिन बच्चों का कैसा हो, कौन कौन सी चीजें हमें शामिल करनी है, माता पिता किन चीजों का ध्यान रखें, इसको लेकर आपने हमें ढेर सारी बातों से अवगत करवाया है, तो अंत में आप हमारे श्रोता साथियों को कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: मैं पेरेंट्स को ये संदेश देना चाहूंगा कि जो खाना खिलाना है बच्चों को वो एक आर्ट है, और बच्चों को रूटीन डाइट में न्यूट्रिशियस डाइट दें, दालें दें चने दें छोले दें चावल दें रोटियां खिलाएं घी खिलाएं घर की बनी हुई चीजें होनी चाहिए, बच्चों को हफ्ते में एक बार हाफ टाइम के लिए बाहर की चीजें जरूर खिलाएं ताकि बच्चों का फूड टेस्ट के प्रति एंथुजियाज्म बना रहे और वो 7 दिन तक इस वेट में भी खाना खाएं या मोनोटोनस ना कर दें कि रोज एक ही एक चीज बनाया जा रहा है, किसी ने कह दिया न्यूट्रिशियस वैल्यू डाल दे तो उसको दाल ही डाल के लाया जा रहा है सुबह शाम, ऐसा ना करें। वैरायटी ऑफ फूड बनाए, कभी कोई किसी 5-6 तरह की तो दालें ही होती है, रोज एक दाल बन सकती है अलग अलग तरह की।
0: बिल्कुल,
1: इसी तरह डिफरेंट सब्जियां बनाएं, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाएं, रोटी में कभी हरी सब्जी पत्ते की रोटी बना दें, कभी आलू की रोटी बना दें, कभी पराठे भेजें, कभी घर के बनी हुई डिफरेंट डिफरेंट डाइट्स जो है इनको टेस्ट भी डेवलप करेंगी, ग्रोथ भी करेगी, इनके लिए न्यूट्रिशियस वैल्यू भी रखेगी और खाने के प्रति इनकी रुचि भी रखेगी। और मेरा मानना है कि हफ्ते में कभी एक बार स्नैक्स और एक बार आउटडोर डाइनिंग कराने में इनकी कोई बुराई नहीं होती, इनको बाहर खाना खिलाया जा सकता है। कुछ लोग ढाबे में खाना पसंद करते हैं तो बच्चे खाएंगे साथ तो उनको अच्छा लगेगा, तो ये भी करें, ऐसा ना हो कि बिल्कुल ना खाने के चक्कर में इनको, और एक जब बाहर खिलाने ले जाते हैं तो नीट एंड क्लीन जगह देखें और जो हाइजीनिक जगह हो, जहाँ सफाई रहती हो, जब ताजा फूड बनता हो वहीं खिलाया जाए। तो मेरा मैसेज ये रहेगा कि वैरायटी ऑफ फूड और हफ्ते में एक बार बाहर की इनको खाना खिलाया जाए, डाइनिंग रखी जाए और स्नैक्स बीच बीच में कभी कभार दिए जाए ताकि इनका खाने पीने के प्रति रुचि बनी रहे।
0: बिल्कुल, तो सर आपने हमें कार्यक्रम में बहुत अच्छी जानकारी दी है, तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
1: जी धन्यवाद।
0: श्रोता साथियों, जैसा कि आज की बातचीत से एक बात साफ है कि आदर्श टिफिन महंगा या बहुत खास होने की जरूरत नहीं है, हमारे घर और आसपास आसानी से मिलने वाली चीजों से भी स्वादिष्ट और पौष्टिक टिफिन तैयार किया जा सकता है। टिफिन में कोशिश करें कि विविधता हो, पौष्टिकता हो, साफ सफाई हो और बच्चों की पसंद का भी थोड़ा ध्यान हो। बच्चों को सिर्फ यह न सिखाया जाए कि सब्जी खानी है, बल्कि

उसे भोजन की कीमत और उसके शरीर के लिए उसकी जरूरत भी समझाई जाए। जब बच्चे भोजन बनाने, फल सब्जी चुनने और अपना टिफिन तैयार करने में छोटी छोटी जिम्मेदारी निभाते हैं, तो उनमें स्वस्थ भोजन की आदत विकसित करना आसान हो जाता है। याद रखिए, टिफिन छोटा हो या बड़ा, उसमें पोषण हो सबसे ज्यादा। स्वाद के साथ सेहत का मेल, तभी तो बच्चा रहेगा चुस्त दुरुस्त और खेल। इसी संदेश के साथ श्रोता साथियों, कार्यक्रम सच्चा बचपन से मैं विदा लेती हूँ। आप भी अपने बच्चों के टिफिन को सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि स्वस्थ भविष्य की छोटी सी शुरुआत बनाइए। तो आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें जरूर पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखे, कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर को कार्यक्रम सच्चा बचपन से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

0: जागृति बुंद, आपने कारे सोचू है? अगर आप बुंदे रुकी जाएंगा तो हूँ था है?
1: नाना अंजलि बुंद, हूँ था का?
0: अरे जागृति बुंद, आपड़ी जे नदिये हैं, ये हुकी जाएंगा, खेतर बंजर थे ही जाएंगा, ने आपड़ो जीवन जे है, ये भी रुकी जागा।
1: ओ अंजलि बुंद, इटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
0: होवे जागृति बुंद, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
1: होवे अंजलि बुंद, आपड़े भाई बुंद थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नीर राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी सागा।
0: होवे होवे जागृति बुंद, आपड़े भाई बुंदो ने कहो कि पानी बचावो ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। अगर चाहो तेज दिमाग ने स्वस्थ जीवन तो आयरन थकी भरपूर तत्व नु करो भोजन।
0: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपड़ा ने थी सके।
2: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
0: होवे भाईन बोनु, आ लक्षण आपड़ा ने आपड़े मई देखाए तो आपड़ा ने आपड़े पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाईने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
2: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
0: होवे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
2: होवे आ सब सावधानी रखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
3: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आप सभी साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ साथियों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: लेकर हाजिर है श्रोता साथियों कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातचीत का विषय रहने वाला है, आधे मन से जीने की आदत ने हमसे क्या छीन लिया है।
0: जी जी
1: श्रोताओं, कभी आपने गौर किया है, हम कई काम करते हैं तो लेकिन पूरे मन से नहीं। पढ़ाई कर रहे हैं तो मन मोबाइल में है, दोस्तों के साथ है तो दिमाग भविष्य की चिंता में है, परिवार के साथ बैठे हैं कशिश तो ध्यान किसी और जगह में है। हम मुस्कुराते हैं लेकिन मन कहीं और रहता है। हम सपने देखते हैं लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए पूरी ताकत नहीं लगाते हैं। और यही है आधे मन से जीना। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जानेंगे कि आधे मन से जीने की आदत ने हमसे क्या क्या छीन लिया है।
0: जी हाँ जागृति जी, तो बातें ढेर सारी होंगी लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्यों ना साथियों को पहले यहाँ एक प्यारा सा गीत हम सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहें कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। और जैसा कि गीत से पहले विषय से अवगत करवाया था कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी आपसे बातचीत रहने वाली है, आधे मन से जीने की आदत ने हमसे क्या क्या छीन लिया है।
1: बिल्कुल।
0: तो कशिश, हमारे युवा साथियों को हम कहना चाहेंगे कि जिंदगी सिर्फ सांस लेने का नाम नहीं है, जिंदगी तो उस हर पल को पूरी शिद्दत से जीने का नाम है, जिसे हम अक्सर कल के इंतजार में आज खो देते हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: श्रोताओं, कभी आपने गौर किया है कि हम कई काम करते हैं लेकिन पूरे मन से नहीं करते। आधे मन से जीना मतलब ये नहीं कि इंसान मेहनत नहीं करता, बल्कि इसका अर्थ है कशिश कि हमारी मौजूदगी कहीं और, हमारा मन कहीं और है। हम अपने वर्तमान को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाते और भविष्य की चिंता या अतीत की यादों में उलझे रहते हैं।
1: बिल्कुल जागृति जी, ऐसे में सवाल ये होता है युवा साथियों कि आधे मन से जीने की शुरुआत होती कहाँ से है।
0: बिल्कुल।
1: अक्सर इसकी शुरुआत आपको बताएं तो छोटी छोटी चीजों में होती है, जैसे कि अभी मन नहीं है इस काम को करने का, कल से शुरू करूंगा या करूंगी, देखते हैं आगे क्या होता है, मुझसे नहीं होगा, दूसरे लोग मुझसे बेहतर हैं। जागृति जी, ये ऐसी कुछ छोटी मोटी बातें होती हैं जिससे हम कह सकते हैं कि आधे मन से जीने की शुरुआत होती है।
0: जी हाँ।
1: श्रोता साथियों, धीरे धीरे यही सोच हमारी आदत बन जाती है। हम किसी काम को इसलिए नहीं करते क्योंकि उसमें हमारी रुचि नहीं है।
0: बिल्कुल।
1: किसी अवसर को इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि असफलता का डर होता है। और किसी रिश्ते को इसलिए समय नहीं देते क्योंकि हमें लगता है कि सामने वाला तो समझ ही जाएगा। लेकिन युवा साथियों, जिंदगी हमेशा दूसरा मौका दे ये जरूरी नहीं है।
0: बिल्कुल कशिश, क्योंकि इस आदत ने हमसे सबसे पहले हमारा वर्तमान ही छीन लिया है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि जब नौकरी लग जाएगी तब हम खुश हो जाएंगे, जब अच्छे नंबर आएंगे तब हम खुश हो जाएंगे, जब पैसा होगा तब हम घूमने जाएंगे, जब सब ठीक हो जाएगा तब चैन से बैठ जाएंगे, और इसी जब के इंतजार में हमारा आज निकल जाता है।
1: बिल्कुल।
0: साथियों, युवा जीवन का सबसे खूबसूरत समय भविष्य बनाने में लगना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वर्तमान को जीना ही हम भूल जाएं।
1: जी जी।
0: मेहनत और खुशी एक दूसरे के विरोधी नहीं है। पढ़ाई करते हुए भी दोस्तों के साथ हंसा जा सकता है, करियर बनाते हुए भी परिवार को समय दिया जा सकता है, और संघर्ष के बीच भी छोटी छोटी खुशियों को महसूस किया जा सकता है।
1: जी हाँ जागृति जी, हम देखते हैं कि हर युवा के भीतर कोई ना कोई सपना जरूर होता है। कोई कलाकार बनना चाहता है तो कोई शिक्षक, कोई खिलाड़ी तो कोई उद्यमी साथियों, कोई अधिकारी तो कोई अपने गांव और समाज के लिए कुछ करना चाहता है। लेकिन सपना देखने और सपने के लिए कदम उठाने में अंतर होता है दोस्तों।
0: बिल्कुल।
1: कई बार हम शुरुआत ही नहीं करते क्योंकि मन में सवाल आते रहते हैं कि अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा। लेकिन सवाल ये नहीं होना चाहिए कि अगर मैंने कोशिश नहीं की तो क्या होगा।
0: जी हाँ।
1: असफलता हमें रोकने के लिए नहीं बल्कि हमें बेहतर बनाने के लिए भी एक अनुभव बन सकती है साथियों।
0: बिल्कुल।
1: इसलिए हमारे युवाओं को अपने सपनों को केवल सोचने की नहीं बल्कि उनके लिए छोटे छोटे कदम उठाने की भी आदत डालनी चाहिए जागृति जी।
0: जी हाँ कशिश, और इस आदत ने रिश्तों से भी बहुत कुछ छीन लिया है। हम देखते हैं कि आज हम डिजिटल रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन कई बार भावनात्मक रूप से दूर होते जा रहे हैं। घर में परिवार के साथ बैठे हैं लेकिन हर हाथ में मोबाइल है। दोस्त सामने बैठे हुए लेकिन बातचीत के बीच बार बार स्क्रीन देखी जा रही है।
1: जी जी।
0: रिश्तों को केवल हमारी मौजूदगी नहीं, हमारा ध्यान चाहिए श्रोताओं। किसी अपने की बात को सच में सुनना, किसी परेशान दोस्त से पूछ लेना कि तुम ठीक हो, माता पिता के साथ कुछ समय बैठना, ये छोटी चीजें लग सकती हैं श्रोताओं, लेकिन रिश्तों को मजबूत बनाने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है।
1: बिल्कुल।
0: आधे मन से जीने में हमारी खुशियां भी कम करती है। कई बार कशिश, हमारे पास खुश होने के बहुत सारे कारण होते हैं लेकिन हमारा ध्यान उन चीजों पर रहता है जो हमारे पास नहीं है।
1: बिल्कुल।
0: दूसरों की सफलता देखकर हम अपनी उपलब्धियों को छोटा समझने लगते हैं। सोशल मीडिया पर किसी की जिंदगी देखकर हमें लगता है कि सबकी जिंदगी बेहतर है और हमारी अच्छी नहीं है।
1: बिल्कुल जागृति जी, और ये समस्या आज वर्तमान में काफी प्रचलन में है। तो इस विषय को लेकर जैसा कि हमारी बातें चल रही है कि आधे मन से जीने की आदत ने हमसे बहुत कुछ छीन लिया है।
0: बिल्कुल।
1: तो कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें हैं जो आगे कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं से हमारी बनी रहेंगी। लेकिन अभी क्यों ना हमारे साथियों को यहाँ पर एक और प्यारा सा गीत हम सुनवाएं।
0: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन लेते हैं यह गीत।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि बातचीत का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा आपसे चल रहा है कि वर्तमान में जो आधे मन से जीने की हमारी आदत है उसने हमारा बहुत कुछ छीन लिया है। जैसा कि गीत से पहले हम जान पाए थे जागृति जी कि इस आदत ने हमारे रिश्तों को हमसे छीन लिया है, खुशियां कम कर दी है, और साथ ही हमने ये भी जाना था कि किस प्रकार से आधे मन से जीने से हमारे सपनों को साहस नहीं मिल पाता। अब यही अगर बात करें श्रोता साथियों, तो आपसे कहना चाहेंगे कि पूरे मन से जीना आखिर होता क्या है। तो आपको बताना चाहेंगे कि पूरे मन से जीने का मतलब ये नहीं है कि हर समय खुश रहना है। पूरे मन से जीने का मतलब होता है जागृति जी कि हम पढ़े तो मन लगा कर पढ़े, परिवार के साथ बैठे हो तो सच में उनके साथ रहें, जब दोस्त से बात करें तो उनकी बात सुने, और जब कोई सपना देखे तो उसके लिए प्रयास करते रहें साथियों।
1: जी हाँ,
0: जब कोई गलती हो जाए तो उससे सीखने का प्रयास करें, और जब मुश्किल समय आए तो खुद को थोड़ा समय दें। दोस्तों, पूरे मन से जीना मतलब अपनी जिंदगी में अपनी मौजूदगी महसूस करना होता है।
1: बिल्कुल कशिश, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम एक सवाल पूछना चाहेंगे। श्रोता साथियों, आप खुद से पूछिए कि अगर मैं इसी तरह आधे मन से जिंदगी जीता रहा तो 5 साल बाद मैं कहाँ खड़ा रहूंगा।
0: बिल्कुल,
1: ये सवाल डराने के लिए नहीं है, ये हमें जगाने के लिए है। क्योंकि कशिश, जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या हमेशा ये नहीं होती कि हमारे पास समय कम है।
0: बिल्कुल,
1: कई बार समस्या ये होती है कि हमारे पास समय होते हुए भी हम उसे पूरी तरह जी नहीं पाते हैं। तो शुरुआत कैसे करें, ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्रश्न है।
0: जी जी,
1: बहुत बड़े बदलाव की जरूरत नहीं श्रोताओं, हर दिन एक काम ऐसा कीजिए जिसे आप पूरे मन से करना चाहते हैं। मोबाइल से थोड़ा समय निकाल कर किसी अपने से बात कीजिए, अपने लक्ष्य को लिखिए और उसके लिए एक छोटा सा कदम उठाइए। अपने मन की बात को दबाने के बजाय किसी भरोसेमंद व्यक्ति से साझा कीजिए, और सबसे जरूरी बात यह है कि आप अपने जीवन को दूसरों की नजर से नहीं, अपनी समझ और अपने मूल्यों से देखना सीख जाइए।
0: बिल्कुल,
1: याद रखिए, हर दिन परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, कुछ दिन अच्छे होंगे कुछ मुश्किल होंगे, लेकिन हर दिन खुद से जुड़े रहना बहुत जरूरी है।
0: जी हाँ जागृति जी, साथियों जिंदगी कोई रिहर्सल नहीं है, बल्कि असली जिंदगी बाद में शुरू होती है, और यही पल आपकी जिंदगी का एक हिस्सा है। इसलिए अपने सपनों को आधे मन से मत देखिए, अपने रिश्तों को आधे मन से मत निभाइए युवा साथियों, अपने मेहनत को आधे मन से मत कीजिए, और सबसे बढ़कर खुद को आधे मन से मत जिए, क्योंकि जब हम आधे मन से जीते हैं तो धीरे धीरे सिर्फ समय नहीं खोते बल्कि हम अवसर, रिश्ते, आत्मविश्वास, खुशियां और अपने सपनों की उड़ान भी खो सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: ऐसे में आप आज से ही छोटा सा संकल्प लीजिए कि मैं हर दिन को परफेक्ट बनाने की कोशिश नहीं करूंगा या करूंगी, लेकिन जिस पल में रहेंगे उसमें पूरी तरह मौजूद रहेंगे, मैं अपने सपनों के लिए कदम उठाऊंगा या उठाऊंगी, अपने रिश्तों को समय देंगे और अपने जिंदगी को आधे मन से नहीं बल्कि पूरे दिल पूरी ईमानदारी से जीने की कोशिश करेंगे।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। तो हमारे श्रोता साथियों को इस कार्यक्रम के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि श्रोताओं, सवाल ये नहीं है कि हमारे जीवन में कितने अवसर आए, बल्कि सवाल ये है कि हमने उन अवसरों को कितने पूरे मन से जिया। आधे मन से किया गया काम हमें केवल परिणाम से नहीं बल्कि अपने भीतर छिपी संभावनाओं से भी दूर कर देता है। हमने कई बार असफलता के डर से कदम रोक लिए, लोगों की बातों के डर से अपनी आवाज दबा दी, और सुविधाओं के कारण अपने सपनों को टालते रहे।
0: जी हाँ,
1: धीरे धीरे यही आदत हमारे जीवन का हिस्सा बन गई। लेकिन जीवन हमें हर दिन एक नया अवसर देता है कशिश, पूरे मन से शुरुआत करने के लिए। जरूरी नहीं है श्रोताओं कि हम हर काम में सफल हो, लेकिन जरूरी ये है कि जब कोई भी काम करें तो अपनी पूरी नीयत, अपनी मेहनत और विश्वास के साथ करें, क्योंकि अधूरे मन से जिया गया जीवन केवल अधूरे काम छोड़ता है, जबकि पूरे मन से जिया गया जीवन अनुभव, आत्मविश्वास और संतोष देता है।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए आप आज से ही खुद से एक वादा कीजिए कि जो करेंगे पूरे मन से करेंगे, जो सीखेंगे पूरे समर्पण से सीखेंगे, और जो जीवन में मिला है उसे आधे मन से नहीं पूरी जागरूकता और पूरी ऊर्जा के साथ जिएंगे।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि जिंदगी लंबी हो ये हमारे हाथ में नहीं, लेकिन जिंदगी को पूरे मन से जीना हमारे हाथ में जरूर है। आधा मन हमें केवल समय बिताना सिखाता है, जबकि पूरा मन हमें जीवन जीना सिखाता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो इस तरीके से जैसा कि आज के इस कार्यक्रम में युवा साथियों से हमारी बातें ढेर सारी हो चुकी हैं।
1: बिल्कुल,
0: और हम जान पाएंगे किस प्रकार से हमें अपनी जिंदगी को, अपने जीवन को आधे मन से नहीं बल्कि पूरे निष्ठा से और पूरे मन से जीना चाहिए। बातें जैसा कि ढेर सारी हो चुकी है और समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का, तो विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना हमारे श्रोता साथियों को यहाँ पर कार्यक्रम का अंतिम गीत हम सुनवाएं।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन लेते हैं यह गीत।

0: साथ ही इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से जो भी बातें रही वो बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ साथियों आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

भाई ने बोनो घर तक निकलते वक्त कोई आपनो इंतजार करी रू है। माँ ने दुआ, पिता ने उम्मीद, निसोरनी मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

0: अधिकार समान अवसर और निर्णय लेने में समान भागीदारी देने से होकर गुजरता है। महिला को अवसर देना केवल एक व्यक्ति को आगे बढ़ाना नहीं बल्कि पूरे परिवार, समाज और राष्ट्र की क्षमता को मजबूत करना है। इसीलिए महिला सहभागिता और समान अवसर केवल चर्चा का विषय नहीं श्रोताओं, बल्कि एक न्यायपूर्ण और विकसित समाज की अनिवार्य आवश्यकता है।
1: जी हाँ जागृति जी, तो आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से इस विषय पर ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में क्यों ना हम हमारे श्रोता साथियों को एक प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन करवा दें।
0: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम सच्चा स्वराज में वागर रेडियो 90.8 FM।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि गीत से पहले विषय से अवगत करवाया था कि आज हम बात करने वाले हैं महिला सहभागिता और समान अवसर को लेकर। अंजलि, कहा गया है कि नारी को अवसर, समाज को नई दिशा, समान भागीदारी से बनेगा सशक्त राष्ट्र।
1: बिल्कुल,
0: यानी कि श्रोताओं, जब आधी आबादी आगे बढ़ती है तभी समाज पूरी गति से आगे बढ़ता है।
1: बिल्कुल जागृति जी, क्योंकि किसी भी देश की वास्तविक प्रगति का आंकलन केवल उसकी सड़कों, इमारतों, तकनीक या आर्थिक विकास से नहीं किया जा सकता। विकास तब सार्थक माना जाता है श्रोता साथियों, जब समाज के प्रत्येक वर्ग को आगे बढ़ने का समान अवसर मिले।
0: बिल्कुल,
1: और हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार योगदान दे सके। इस दृष्टि से महिलाओं की सहभागिता और उन्हें समान अवसर प्रदान करना बहुत जरूरी है। महिलाएं समाज की आधी आबादी है और परिवार, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, इसी के साथ हम देखते हैं कि संस्कृति और राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका सदियों से महत्वपूर्ण रही है।
0: बिल्कुल,
1: आज महिलाएं केवल परिवार की जिम्मेदारी नहीं निभाती जागृति जी, बल्कि वह शिक्षक, डॉक्टर, वैज्ञानिक, किसान, उद्यमी, अधिकारी, खिलाड़ी, कलाकार, जनप्रतिनिधि और समाज सेवी के रूप में अपनी पहचान भी बना रही है।
0: जी हाँ।
1: लेकिन महिलाओं की क्षमता का पूरा उपयोग तभी संभव है जब उन्हें रोजगार, शिक्षा, नेतृत्व, निर्णय लेने और अपने सपनों को पूरा करने का समान अवसर मिले।
0: बिल्कुल अंजलि, आपने सही कहा। तो हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से कि महिला सहभागिता केवल महिलाओं के अधिकारों का विषय नहीं है, बल्कि ये परिवार, समाज और राष्ट्र के विकास से जुड़ा हुआ प्रश्न है।
1: बिल्कुल,
0: जिस समाज में महिलाओं की प्रतिभा को अवसर मिलता है वहाँ विकास की गति और अधिक व्यापक और समावेशी होती है। महिला सहभागिता का अर्थ है श्रोताओं, समाज के प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं की सक्रिय, सम्मानजनक और प्रभावी भागीदारी। परिवार के निर्णयों से लेकर ग्राम सभा, पंचायत, विद्यालय, कार्यस्थल, व्यापार, प्रशासन और राष्ट्र नीतियों तक महिलाओं की आवाज को महत्व मिलना महिला सहभागिता का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सिर्फ महिलाओं की संख्या बढ़ जाना ही पर्याप्त नहीं है। वास्तविक सहभागिता तब मानी जाएगी जब महिलाएं अपनी राय स्वतंत्र रूप से रख सके, निर्णय प्रक्रिया में भाग ले सके और उनके विचारों को सम्मान पूर्वक सुना जाए।
1: जी हाँ जागृति जी, अब यही बात आती है समान अवसर क्यों आवश्यक है। श्रोता साथियों, समान अवसर का अर्थ यह नहीं है कि हर व्यक्ति को बिल्कुल एक जैसी परिस्थितियाँ दी जाए।
0: जी हाँ।
1: बल्कि यह है कि किसी व्यक्ति के आगे बढ़ने में केवल उसके महिला होने के कारण बाधा न बने। यदि किसी लड़की में प्रतिभा है तो उसे शिक्षा का अवसर मिलना चाहिए। यदि कोई महिला व्यवसाय करना चाहती है तो उसे प्रशिक्षण और आवश्यक सहयोग मिलना चाहिए। यदि वह नेतृत्व की क्षमता रखती है तो उसे नेतृत्व करने का अवसर भी मिलना चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि किसी भी समाज में प्रतिभा का लिंग नहीं होता, प्रतिभा को अवसर चाहिए, मेहनत को सम्मान चाहिए और सपनों को उड़ान चाहिए।
0: बिल्कुल अंजलि, और कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को कि महिला सशक्तिकरण की सबसे मजबूत नींव शिक्षा है। शिक्षा महिला को केवल पढ़ना लिखना नहीं सिखाती, बल्कि उसे अपने अधिकारों, जिम्मेदारियों और संभावनाओं को समझने की शक्ति देती है।
1: बिल्कुल।
0: एक शिक्षित लड़की अपने भविष्य के बारे में बेहतर निर्णय ले सकती है श्रोताओं, वो अपने परिवार और समाज में जागरूकता फैलाती है। इसीलिए बेटियों की शिक्षा को खर्च नहीं बल्कि भविष्य में किया गया निवेश समझना होगा। जरूरी है कि बेटियों की शिक्षा को बीच में न रोका जाए और उन्हें विज्ञान, तकनीक, खेल, कला, व्यावसायिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिले। बेटी को शिक्षा का अधिकार मिलेगा तभी बनेगा उसका भविष्य शानदार।
1: जी हाँ, यही अब बात आती है आर्थिक आत्मनिर्भरता के महत्व की। श्रोता साथियों, महिला सहभागिता का एक महत्वपूर्ण आधार आर्थिक आत्मनिर्भरता है।
0: बिल्कुल,
1: जब महिला अपनी आय अर्जित करती है तो उसके आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता में वृद्धि होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में हम देखते हैं जागृति जी कि महिलाएं खेती, पशुपालन, दूध उत्पादन, हस्तशिल्प, घरेलू उद्योग और छोटे व्यवसायों में महत्वपूर्ण योगदान देती है।
0: बिल्कुल,
1: उनके श्रम को अक्सर औपचारिक आर्थिक गतिविधि के रूप में पहचान नहीं मिली है। आवश्यकता है श्रोता साथियों कि महिलाओं के कौशल को प्रशिक्षण, बाजार, तकनीक और वित्तीय अवसरों से जोड़ा जाए, क्योंकि महिलाओं को केवल रोजगार की तलाश करने वाली नहीं बल्कि रोजगार देने वाली उद्यमी के रूप में भी विकसित करना चाहिए।
0: बिल्कुल अंजलि, तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें चल रही है महिला सहभागिता और समान अवसर को लेकर, तो ये बातें आज के इस कार्यक्रम में ऐसे ही बनी रहेंगी। लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
1: जी हाँ।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि गीत से पहले हम जान पा रहे थे कि किस तरीके से महिला सहभागिता और समान अवसर की जरूरत होती है, आर्थिक आत्मनिर्भरता के महत्व को हमने जाना। यही बात करें ग्रामीण महिलाओं की सहभागिता की, तो श्रोता साथियों, भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है।
1: बिल्कुल,
0: वे खेतों में काम करती हैं, पशुओं की देखभाल करती हैं, परिवार का प्रबंधन करती हैं और कई छोटे घरेलू व्यवसाय भी चलाती हैं। ग्राम विकास की योजनाओं में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी से हम देखते हैं जागृति जी की स्थानीय समस्याओं की बेहतर पहचान हो सकती है।
1: बिल्कुल,
0: पानी, स्वच्छता, शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य और आजीविका जैसे मुद्दों पर महिलाओं का अनुभव महत्वपूर्ण होता है। ग्राम सभा और पंचायतों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर मजबूत करती है।
2: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि जिस निर्णय का प्रभाव महिलाओं और परिवारों पर पड़ता है उसमें महिलाओं की आवाज भी शामिल होनी चाहिए।
1: बिल्कुल,
2: घर में बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक योजना और महत्वपूर्ण पारिवारिक फैसलों में महिलाओं की राय को सम्मान मिलना होगा। इस तरह हम कह सकते हैं कि समाज और शासन के स्तर पर महिलाओं की भागीदारी बहुत जरूरी है। जब महिलाएं निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा बनती है तो विकास के मुद्दों में उनके अनुभव और दृष्टिकोण शामिल होते हैं। श्रोताओं, महिला समानता की राह में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक पुरानी सोच है, ये काम महिलाओं का है और ये काम पुरुषों का है। ऐसी सोच व्यक्ति की क्षमता को सीमित करती है। काम का निर्धारण लिंग के आधार पर नहीं होता है बल्कि रुचि, योग्यता और क्षमता के आधार पर होना चाहिए। बेटियों को वो भी सपने देखने का अधिकार है जो बेटों को मिलता है। अगर बेटी विज्ञान पढ़ना चाहती है, खिलाड़ी बनना चाहती है, व्यवसाय करना चाहती है या प्रशासन में जाना चाहती है तो परिवार को उसका उत्साह बढ़ाना चाहिए।
0: जी हाँ जागृति जी, इसमें परिवार की भूमिका है कि वह महिला सहभागिता की शुरुआत घर से करे। यदि परिवार बेटियों और बेटों के बीच भेदभाव नहीं करता तो समानता की मजबूत नींव रखी जा सकती है। बेटियों को निर्णय लेने का अवसर देना, उनकी बात सुनना, उनकी शिक्षा को महत्व देना, उन्हें अपनी प्रतिभा विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना परिवार की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।
1: बिल्कुल,
0: साथ ही घर के कार्यों को केवल महिलाओं की जिम्मेदारी मानना भी उचित नहीं है। परिवार के सभी सदस्यों को घरेलू जिम्मेदारियों में सहयोग करना चाहिए। हम देखते हैं जागृति जी कि महिलाओं को रोजगार के क्षेत्र में भी समान अवसर मिलना चाहिए। उनकी योग्यता, मेहनत और कार्य क्षमता का सम्मान होना चाहिए। कार्यस्थल ऐसा होना चाहिए जहाँ महिलाओं को सुरक्षित, सम्मानजनक और सहयोगी वातावरण मिले।
1: बिल्कुल,
0: उन्हें अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ने, नई जिम्मेदारियां लेने और नेतृत्व करने का अवसर मिलना चाहिए। क्योंकि महिलाओं की कार्य क्षमता पर संदेह करने के बजाय अगर उनकी प्रतिभा को हम पहचानते हैं तो हम देखते हैं कि महिलाएं अपने आप में आत्मनिर्भर बन पाती है।
2: जी हाँ अंजलि, क्योंकि आज डिजिटल तकनीक ने महिलाओं के लिए नए अवसर खोले हैं। ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल भुगतान, ई कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग और कई विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम महिलाओं को घर से भी कई तरह के अवसरों से जोड़ सकते हैं। विशेषकर हम देखते हैं कि ग्रामीण महिलाओं को डिजिटल साक्षरता से जोड़ना आवश्यक है। मोबाइल और इंटरनेट का सही उपयोग उन्हें शिक्षा, सरकारी योजनाओं, बाजार और रोजगार के अवसरों की जानकारी दे सकता है। महिलाओं की जिम्मेदारी नहीं है श्रोताओं, पुरुषों को भी इस परिवर्तन में भागीदार बनना होगा। पिता को बेटी के सपनों पर विश्वास करना होगा, भाई को बहन के अधिकारों का सम्मान करना होगा, पति को पत्नी की प्रतिभा और करियर का सहयोग करना होगा, सहकर्मियों को महिलाओं के योगदान को सम्मान देना होगा। श्रोताओं, महिला सशक्तिकरण का अर्थ पुरुषों को पीछे करना नहीं बल्कि महिलाओं और पुरुषों को साथ लेकर आगे बढ़ना भी है।
0: जी हाँ जागृति जी, हम देखते हैं कि समान अवसर मिलने के साथ साथ महिलाओं में आत्मविश्वास का विकास भी जरूरी है।
1: बिल्कुल,
0: कई बार सामाजिक दबाव या असफलता के डर के कारण महिलाएं अपनी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं कर पाती। उन्हें यह समझना होगा कि असफलता अंत नहीं है, सीखना, प्रयास करना और आगे बढ़ते रहना ही सफलता का रास्ता है। महिलाओं को अपने अधिकारों के साथ साथ अपनी जिम्मेदारियों के प्रति भी जागरूक होना चाहिए।
2: जी हाँ अंजलि, क्योंकि नेतृत्व केवल पद प्राप्त करने का नाम नहीं है। नेतृत्व का अर्थ है लोगों को साथ लेकर चलना, समस्याओं का समाधान खोजना और समाज के हित में निर्णय लेना। महिलाओं में नेतृत्व की क्षमता को अवसर मिलने पर वे परिवार से लेकर समाज और राष्ट्र तक सकारात्मक बदलाव ला सकती है। महिला नेतृत्व से विकास में शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता, सुरक्षा और सामाजिक कल्याण जैसे मुद्दों को नई प्राथमिकता मिलती है।
1: जी जी
2: अंजलि, हम जब देखते हैं कि जब महिलाओं को शिक्षा और रोजगार के समान अवसर मिलते हैं तो देश की कार्य शक्ति का बड़ा हिस्सा सक्रिय रूप से अर्थव्यवस्था में योगदान देता है। महिलाओं की प्रतिभा को सीमित करना केवल उनके लिए नुकसान नहीं है श्रोताओं, बल्कि इससे समाज और अर्थव्यवस्था भी अपनी क्षमता का एक बड़ा हिस्सा खो देती है। इसीलिए महिला रोजगार, उद्यमिता, कौशल विकास और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना देश के आर्थिक विकास के लिए भी आवश्यक है।
0: जी हाँ चक्रवर्ती जी, क्योंकि एक महिला के आगे बढ़ने का प्रभाव केवल उस महिला तक सीमित नहीं रहता।
2: बिल्कुल,
0: जब एक महिला शिक्षित होती है तो उसका प्रभाव परिवार की अगली पीढ़ी तक पहुंचता है। जब वह आर्थिक रूप से सक्षम होती है तो परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। जब वह निर्णय प्रक्रिया में भाग लेती है तो समाज में लोकतांत्रिक चेतना मजबूत होती है। इसलिए महिला को अवसर देना वास्तव में पूरे समाज को अवसर देना है।
2: जी हाँ।
0: इसमें हमारी क्या जिम्मेदारी होती है इसको लेकर बात करें तो श्रोता साथियों, महिला सहभागिता और समान अवसर को वास्तविकता बनाने के लिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपनी भूमिका निभानी होगी। बेटियों और बेटों में भेदभाव न करें, बालिकाओं की शिक्षा को प्राथमिकता दें, महिलाओं के श्रम और योगदान का महत्व करें, महिलाओं को निर्णय प्रक्रिया में शामिल करें, ग्रामीण महिलाओं को कौशल और रोजगार के अवसर से जोड़ें, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दें, महिलाओं के प्रति सम्मानजनक व्यवहार को परिवार से ही हमें संस्कार मिलाना होगा, पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान जिम्मेदारियों में भागीदार बनाएं, इसी के साथ महिलाओं के प्रतिभा को पहचाने और उन्हें आगे बढ़ने के अवसर दें।
2: जी हाँ अंजलि, तो अंत में हमारे श्रोता साथियों को इस कार्यक्रम के माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे कि साथियों, महिला सहभागिता और समान अवसर किसी एक दिन या किसी एक अभियान का विषय नहीं है। ये निरंतर चलने वाली सामाजिक प्रक्रिया है। जिस दिन किसी बेटी को अपने सपने देखने के लिए अनुमति मांगने की आवश्यकता नहीं होगी, जिस दिन किसी महिला की क्षमता का मूल्यांकन उसके लिंग के आधार पर नहीं बल्कि उसकी योग्यता के आधार पर होगा, और जिस दिन परिवार, समाज तथा संस्थाएं महिलाओं की आवाज को समान महत्व देंगी, उस दिन हम वास्तविक समानता की ओर एक बड़ा कदम बढ़ा चुके होंगे।
0: बिल्कुल,
2: हमें ये समझना होगा कि महिलाओं को आगे बढ़ाने का अर्थ पुरुषों को पीछे करना नहीं, इसका अर्थ है ऐसा समाज बनाना जहां हर व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ने का अवसर मिले। नारी केवल परिवार की शक्ति नहीं, समाज और राष्ट्र की भी शक्ति है। उसकी सहभागिता से परिवार मजबूत होता है और उसकी शिक्षा से पीढ़ियां जागरूक होती है। उसकी आत्मनिर्भरता से अर्थव्यवस्था मजबूत होती है और उसके नेतृत्व से समाज को नई दिशा मिलती है। इसलिए साथियों, जिस समाज में नारी को सम्मान, समान अवसर और निर्णय में अधिकार मिलता है, वही समाज वास्तव में प्रगतिशील कहलाता है।
0: जी हाँ चक्रवर्ती जी, क्योंकि आधी आबादी पूरा अधिकार, समान अवसर से बनेगा सशक्त समाज और समृद्ध राष्ट्र।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें रही आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन। होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके। जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाईन बोनू, आ लक्षण आपने आपने मैं देखाए तो आपने आपने पाए वारा राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाइने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होवे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: थारी में पासो लावो जूनू हवाद, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी ने मक्का, ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारती नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो।
0: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राखंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

थारी में पासो लावो जूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारती नू खवानू सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो। मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को आपके अपने साथी मनीषा पटेल
1: और आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर का प्यार भरा
2: नमस्कार।
0: जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। मनीषा, आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बातचीत का विषय है पोषण के महत्व को लेकर।
0: जी हाँ,
1: हम देखते हैं कि इसका संबंध हमारे जीवन, स्वास्थ्य, बच्चों के भविष्य, महिलाओं की शक्ति, युवाओं की क्षमता और पूरे समाज के विकास से जुड़ा हुआ है।
0: बिल्कुल
1: साथियों, हम सभी

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि श्रोता साथियों, गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं पोषण के महत्व को लेकर। यहीं अगर अंजलि जी श्रोता साथियों को बताएं कि पोषण क्या है, तो साथियों पोषण केवल खाना खाने का नाम नहीं है।
1: बिल्कुल,
0: हम जो भोजन खाते हैं उसे हमारा शरीर पचाता है और श्रोता साथियों उसमें मौजूद पोषक तत्वों का उपयोग

0: उपयोग करता है। यही पोषक तत्व है वो हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं, शरीर की वृद्धि करते हैं और उसे स्वस्थ रखने में श्रोता साथियों मदद करते हैं। हमारे भोजन में श्रोता साथियों मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज पदार्थ, फाइबर, पानी जैसे तत्व होने चाहिए। हर पोषक तत्व का श्रोता साथियों अलग काम होता है। उदाहरण के लिए अंजलि जी, हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा देता है, प्रोटीन शरीर की वृद्धि और ऊतकों की मरम्मत में मदद करता है, वसा ऊर्जा का स्रोत है श्रोता साथियों, और कुछ विटामिनों का उपयोग भी करता है। हम देखते हैं कि विटामिन शरीर की विभिन्न क्रियाओं को ठीक करने में मदद करते हैं।
1: बिल्कुल।
0: खनिज पदार्थ श्रोता साथियों हड्डियों, खून और शरीर की अन्य आवश्यक क्रियाओं के लिए जरूरी होते हैं। फाइबर पाचन तंत्र के लिए उपयोगी होता है। साथ ही साथियों हम देखते हैं कि पानी शरीर के लिए बहुत आवश्यक होता है और शरीर के तापमान और अन्य कार्यों को सही तरह से बनाए रखने में मदद करता है। इसीलिए साथियों कहना चाहेंगी कि हमारे भोजन में विविधता होना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल मनीषा, कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि पोषण क्या है। तो पोषण का अर्थ है शरीर को स्वस्थ रखने, विकसित करने और बीमारियों से बचाने के लिए आवश्यक पोषक तत्वों का उचित मात्रा में मिलना। हमारे शरीर को कई प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट जो कि शरीर को ऊर्जा देने के लिए जरूरी है, प्रोटीन जो कि शरीर की वृद्धि और मांसपेशियों के विकास के लिए जरूरी है, वसा ऊर्जा और शरीर की अलग अलग प्रक्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण है। विटामिन की बात करें तो शरीर को स्वस्थ रखने और रोगों से बचाने के लिए जरूरी होता है।
0: बिल्कुल।
1: खनिज तत्व हड्डियों, खून और शरीर के विकास के लिए जरूरी है। पानी शरीर की सही संचालन के लिए जरूरी होता है। रेशा और फाइबर पाचन को बेहतर करने के लिए जरूरी है। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि जब इन सभी पोषक तत्वों का सही संतुलन हमारे भोजन में होता है तब हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। अगर यही बात करें पोषण का महत्व क्यों है, तो दोस्तों पोषण जीवन के हर चरण में महत्वपूर्ण है।
0: बिल्कुल।
1: एक छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग व्यक्ति तक सभी को सही पोषण की आवश्यकता होती है, लेकिन मनीषा जीवन के अलग अलग चरणों में पोषण की जरूरतें भी अलग अलग हो सकती हैं।
0: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि संतुलित भोजन शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करता है। जब श्रोता साथियों हमारे भोजन में पर्याप्त पोषक तत्व होते हैं तो हमारे शरीर की सामान्य कार्य प्रणाली ही वो अच्छी तरह से चलती है।
1: बिल्कुल।
0: विटामिनों और खनिजों से भरपूर भोजन स्वास्थ्य के लिए उपयोगी होता है। इसलिए श्रोता साथियों भोजन में अलग अलग रंगों की सब्जियां और मौसमी फल शामिल करना हमारे लिए अच्छी आदत है। हमें यह समझना चाहिए कि भोजन कोई जादुई दवा नहीं है, लेकिन स्वस्थ खान पान शरीर को मजबूत बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
1: बिल्कुल मनीषा, एक नवजात शिशु को माँ के दूध की आवश्यकता होती है। बढ़ते बच्चे को शरीर और दिमाग के विकास के लिए पौष्टिक भोजन चाहिए। किशोरों को तेजी से होने वाली शारीरिक वृद्धि के कारण अधिक पोषण की जरूरत होती है। गर्भवती महिलाओं को अपने साथ साथ गर्भ में पल रहे बच्चे के स्वास्थ्य के लिए अच्छा पोषण चाहिए। युवाओं को काम और पढ़ाई के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जबकि बुजुर्गों को शरीर को स्वस्थ रखने के लिए संतुलित भोजन चाहिए। इसलिए कहा जा सकता है कि पोषण केवल भोजन नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन की बुनियादी भी है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से पोषण के महत्व को लेकर बातें चली रही हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो ये बातें हमारे आगे भी ऐसे ही जारी रहेंगी, लेकिन क्यों ना साथियों के मनोरंजन के लिए हम कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि गीत से पहले हमने जाना कि पोषण क्या है, पोषण क्यों महत्वपूर्ण है, यही बात आती है बच्चों के लिए पोषण के महत्व की।
1: जी हाँ।
0: श्रोता साथियों, बच्चे देश और समाज का भविष्य होते हैं। यदि बच्चे स्वस्थ होंगे तो समाज और देश भी मजबूत बनेगा। लेकिन बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए केवल पढ़ाई खेल ही पर्याप्त नहीं होते, उन्हें सही पोषण भी मिलना चाहिए। बचपन में शरीर तेजी से बढ़ता है, इसी समय हड्डियां, मांसपेशियां, दिमाग और शरीर के अन्य अंगों का विकास होता है। यदि बच्चों को इस समय पर्याप्त पोषण नहीं मिलता तो उनके शरीर और मानसिक विकास पर असर पड़ सकता है।
1: बिल्कुल।
0: श्रोता साथियों, एक कुपोषित बच्चा जल्दी थक सकता है, बार बार बीमार पड़ सकता है। इसी के साथ मनीषा पढ़ाई में ध्यान लगने में परेशानी महसूस कर सकता है, शारीरिक रूप से कमजोर हो सकता है, उसकी लंबाई और वजन का विकास प्रभावित हो सकता है।
1: जी हाँ।
0: इसलिए बच्चों के भोजन में केवल स्वादिष्ट चीजें नहीं बल्कि पौष्टिक चीजें भी शामिल करनी चाहिए।
1: जी
0: बच्चों
1: हाँ।
0: को घर का बना भोजन, दालें, अनाज, हरी सब्जियां, मौसमी फल, दूध और उपलब्ध विकल्प जैसे कि अंडा, अगर परिवार इसे खाता हो तो, और स्थानीय पौष्टिक खाद्य पदार्थ देना महत्वपूर्ण है। श्रोता साथियों, हमारे ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में कई ऐसे स्थानीय खाद्य पदार्थ उपलब्ध होते हैं जो पौष्टिक होने के साथ साथ आसानी से उपलब्ध भी होते हैं। हमें अपनी पारंपरिक खाद्य संस्कृति और स्थानीय अनाजों के महत्व को समझना होगा।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, यही अगर बात करें कि महिलाओं के लिए पोषण की क्या महत्व है इसकी, तो श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि महिलाएं परिवार की देखभाल में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
0: बिल्कुल।
1: घर के सभी सदस्यों को खाना खिलाने के बाद अंजलि जी, हम देखते हैं कि कई बार महिलाएं अपने भोजन को नजरअंदाज कर देती हैं। यह आदत श्रोता साथियों सही नहीं है। महिलाओं को भी परिवार के अन्य सदस्यों की तरह पर्याप्त और पौष्टिक भोजन मिलना बहुत जरूरी है। विशेष रूप से श्रोता साथियों, किशोरियों और महिलाओं के लिए भोजन में आयरन, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन और अन्य जो पोषक तत्व होते हैं उन पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है।
0: बिल्कुल।
1: महिलाओं को कमजोरी या किसी अन्य स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के लक्षण दिखाई देते हैं तो हमें स्वास्थ्य कर्मी या डॉक्टर से सलाह भी हमें लेनी चाहिए।
0: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा, महिलाओं के शरीर में पर्याप्त पोषण की आवश्यकता होती है। विशेष रूप से किशोरावस्था, गर्भावस्था और स्तनपान के समय पोषण का महत्व बढ़ जाता है। महिलाओं में पोषण की कमी होने से कमजोरी, थकान और खून की कमी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए श्रोता साथियों, परिवार को यह समझना होगा कि महिला का पोषण केवल महिला की जिम्मेदारी नहीं बल्कि पूरे परिवार की जिम्मेदारी है।
1: जी हाँ।
0: एक स्वस्थ माँ ही स्वस्थ बच्चे और स्वस्थ परिवार की मजबूत नींव रखती है। यही बात करें किशोरावस्था और युवावस्था के लिए पोषण की जरूरत की, तो श्रोता साथियों, किशोरावस्था और युवावस्था जीवन का महत्वपूर्ण समय है। इस उम्र में शरीर तेजी से विकसित होता है और मानसिक क्षमता बढ़ती है। लेकिन आजकल युवाओं में बाहर का भोजन, पैकेट वाले स्नैक्स, ज्यादा मीठे पेय और अनियमित खानपान की आदतें बढ़ती जा रही हैं। कई युवा सुबह का नाश्ता छोड़ देते हैं, कुछ लोग केवल चाय बिस्किट पर दिन की शुरुआत करते हैं, कुछ लोग लंबे समय तक खाना नहीं खाते, फिर एक साथ बहुत अधिक भोजन करते हैं।
1: बिल्कुल।
0: ऐसी आदतें शरीर पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। इसलिए श्रोता साथियों, युवाओं को समझना चाहिए कि ताकत केवल जिम जाने से नहीं आती बल्कि सही भोजन से आती है। यदि युवा स्वस्थ और ऊर्जावान रहेंगे तभी वे पढ़ाई, रोजगार, खेल और समाज के विकास में बेहतर योगदान दे सकेंगे।
1: बिल्कुल अंजलि जी, अब सवाल आता है श्रोता साथियों, आखिरकार संतुलित भोजन है क्या? हम कहना चाहेंगे कि संतुलित आहार वह आहार है श्रोता साथियों जिसमें शरीर की जरूरत के अनुसार विभिन्न पोषक तत्व हमें उचित मात्रा में मिल सके।
0: बिल्कुल।
1: हमारे भोजन की थाली में श्रोता साथियों अलग अलग खाद्य समूहों को शामिल करने की हमें कोशिश करनी चाहिए, जैसे कि श्रोता साथियों अनाज में गेहूं, चावल, बाजरा, ज्वार और मक्का। दालों की बात करें अंजलि जी, तो हम देखते हैं कि दालों में हमें कई प्रकार की दालें होती हैं, उनको शामिल करना चाहिए। इससे श्रोता साथियों हम देखते हैं कि हमारे शरीर को प्रोटीन मिलता है। हरी सब्जियां और जो दूसरी सब्जियां होती हैं वो हमें शामिल करनी है। मौसमी फल हमें शामिल करने हैं। दूध या इसके कई सारे विकल्प होते हैं वो भी हम शामिल कर सकते हैं।
0: जी हाँ।
1: थोड़ी मात्रा में श्रोता साथियों स्वस्थ वसा है उसे शामिल करना है। पर्याप्त पानी पिए और साथियों कहना चाहेंगे कि हर व्यक्ति की उम्र, काम और स्वास्थ्य और साथ ही शरीर की जरूरतें होती हैं वो अंजलि जी अलग अलग होती हैं।
0: बिल्कुल।
1: इसलिए श्रोता साथियों विशेष स्वास्थ्य स्थिति होने पर हमें डॉक्टर से पोषण के बारे में जानकारी भी हम ले सकते हैं।
0: जी हाँ मनीषा, पोषण की बात केवल भोजन तक सीमित नहीं है, स्वच्छता भी अच्छे स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि भोजन पौष्टिक है लेकिन साफ नहीं, पानी असुरक्षित है और भोजन गंदगी में रखा गया है तो बीमारियां फैल सकती हैं। इसलिए हमें कुछ सरल आदतें अपनानी चाहिए। खाना खाने से पहले हाथ धोना, शौचालय के बाद हाथ साफ करना बच्चों को भोजन देने से पहले हाथ धोना, फल और सब्जियों को साफ रखना, भोजन को ढककर रखना, साफ और सुरक्षित पानी पीना, सही पोषण और स्वच्छता दोनों मिलकर स्वस्थ जीवन का आधार बनते हैं। श्रोता साथियों, हमारे आसपास प्रकृति हमें मौसम के अनुसार कई प्रकार के फल और सब्जियां भी देती है। मौसमी खाद्य पदार्थों को भोजन में शामिल करना एक अच्छी आदत हो सकती है। स्थानीय स्तर पर मिलने वाले खाद्य पदार्थ अक्सर मनीषा आसानी से उपलब्ध होते हैं और परिवार के बजट के अनुसार भी हो सकते हैं। हमें हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि केवल महंगे खाद्य पदार्थ ही पौष्टिक होते हैं। हमारे आसपास मिलने वाली दालें, अनाज, हरी सब्जियां, मौसमी फल, मोटे अनाज, स्थानीय पारंपरिक खाद्य पदार्थ भी पोषण का अच्छा स्रोत हो सकते हैं। इसलिए अपने गांव और क्षेत्र में उपलब्ध पौष्टिक खाद्य पदार्थ की जानकारी बढ़ाना जरूरी है।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर ढेर सारी बातें हो चुकी हैं। कार्यक्रम के माध्यम से हमने जाना कि बच्चों के लिए पोषण क्यों जरूरी है, महिलाओं और हमारे युवा साथी हैं उनके लिए पोषण क्यों जरूरी है और सही संतुलित आहार क्या है, इसे लेकर हमने ढेर सारी बातें की।
0: बिल्कुल,
1: अब देख रहे हैं कि समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना श्रोता साथियों को कार्यक्रम का अंतिम गीत हम सुनवा दें।
0: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही हम कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य से विदा लेना चाहेंगे, लेकिन अंत में आपको कहना चाहेंगे कि आज हम धीरे धीरे अपनी पारंपरिक भोजन व्यवस्था से दूर होते जा रहे हैं। पहले लोग स्थानीय अनाज, दालें, सब्जियां और मौसमी खाद्य पदार्थ अधिक खाते थे। मोटे अनाज और स्थानीय खाद्य पदार्थों को भोजन में शामिल करने की परंपरा कई क्षेत्रों से चली आ रही है।
1: जी हाँ।
0: बाजरा, ज्वार, रागी, कूड़ी, कांग, बटी, अन्य स्थानीय अनाजों को संतुलित भोजन का हिस्सा माना गया है।
1: जी हाँ।
0: लेकिन भोजन में विविधता सबसे महत्वपूर्ण है। केवल एक ही चीज को स्वास्थ्य का पूरा आधार नहीं माना जा सकता। हमें अपने पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक पोषण संबंधी जानकारी को समझदारी से जोड़ना चाहिए। यदि घर के आसपास थोड़ी सी जगह उपलब्ध है श्रोता साथियों, तो वहाँ आप छोटी सी पोषण वाटिका यानी कि किचन गार्डन तैयार कर सकते हैं। पोषण वाड़ी में हम अपनी आवश्यकता के अनुसार सब्जियां, कुछ अन्य पौष्टिक खाद्य पौधे भी लगा सकते हैं। इससे परिवार को ताजी सब्जियां मिल सकती है और बच्चों को भी बागवानी और पौष्टिक भोजन के महत्व की जानकारी मिलती है। घर की छोटी सी जगह का उपयोग करके हरी पत्तेदार सब्जियां, टमाटर,

0: मिर्ची, मौसमी सब्जियां उगाने का प्रयास किया जा सकता है। पोषण वाड़ी केवल सब्जियां उगाने का माध्यम नहीं है श्रोता साथियों, बल्कि परिवार को स्वस्थ भोजन के प्रति जागरूक बनाने का एक माध्यम भी है।
1: तो इन्हीं बातों के साथ आज के कार्यक्रम से विदा लेते हैं श्रोता साथियों। उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातें रही, गीत संगीत रहे, वो आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
0: बिल्कुल, तो श्रोता साथियों लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वाकथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
1: इसी के साथ दोस्तों, आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
0: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारश्चर
1: और आपके अपने साथी मनीषा पटेल को।
0: नमस्कार।

सेहत नु राज हूँ है बोन। असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात नी शुरुआत पानी थकी करो। थोड़ू सी व्यायाम ने दात काढ़ी ने जीवन जीवा। फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा। जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू। आज जीवन नो सहारो है। आज थकी आ राज ने अपनावंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो क्योंकि आज है सेहत नु असली राज। वागर रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM पर।

नमस्कार श्रोता साथियों, कार्यक्रम सपनों की उड़ान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर। स्वीकार कीजिएगा साथियों मेरा प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हम कार्यक्रम सपनों की उड़ान को लेकर जब भी हाजिर होते हैं तो आपसे बातचीत करते हैं एक नए विषय को लेकर। तो आज भी कार्यक्रम के माध्यम से मेरी आपसे बातें ढेर सारी होंगी एक नए विषय को लेकर। दोस्तों जैसा कि हम सभी देखते हैं कि हमारे जीवन में कई बार ऐसी परिस्थिति आती है जब हमें लगता है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हम अपने आसपास के लोगों को सफल होते हुए देखते हैं और अपने आप को उनसे कम समझने लगते हैं। लेकिन कभी आर्थिक स्थिति हमें कमजोर महसूस कराती है साथियों, तो कभी शिक्षा की कमी हमें झंझोर देती है, कभी परिवार की जिम्मेदारियां हैं तो कभी समाज की बातें और कभी किसी की असफलता का दर्द। धीरे धीरे दोस्तों हम अपने मन में ये सोच बना लेते हैं कि मैं नहीं कर सकता कुछ भी, मेरे बस की बात ही नहीं है, मेरे पास साधन नहीं है, मैं दूसरों जितना अच्छा भी नहीं हूँ। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि क्या वास्तव में हमारी कमजोरी हमारी परिस्थितियाँ होती है? नहीं साथियों, अक्सर हमारी सबसे बड़ी कमजोरी होती है खुद को कमजोर मान लेना। तो आज के इस कार्यक्रम में हम इसी विषय को लेकर ढेर सारी बातें करेंगे और जानेंगे कि खुद को कमजोर समझना साथियों सबसे बड़ी कमजोरी नहीं होती है। तो बातें ढेर सारी होंगी, लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शुरुआत में हम आपको गीत संगीत के साथ पहले मनोरंजन करवाते हैं। तो आइए श्रोता साथियों पहले सुनते हैं यहाँ पर एक प्यारा सा गीत। तो आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में।

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले बातचीत की शुरुआत हो चुकी है और विषय के बारे में भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि खुद को कमजोर समझना हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। दोस्तों, कहा जाता है कि इंसान पहले अपने मन में हारता है, उसके बाद जीवन में हारता है। जब तक हमारे मन में विश्वास होता है, तब तक कठिन से कठिन रास्ता भी आसान लगने लगता है। लेकिन जिस दिन हम अपने आप को कमजोर मान लेते हैं दोस्तों, उसी दिन हमारी कोशिशें भी कमजोर पड़ने लगती है। आप जरा सोचिएगा कि एक व्यक्ति के पास बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, वो मेहनती भी है, उसके पास सीखने की क्षमता भी है, लेकिन अगर वह हमेशा यही सोचता रहे कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो क्या वह अपनी प्रतिभा का सही उपयोग कर पाएगा? शायद नहीं। दूसरी ओर एक व्यक्ति के पास साधन कम हो सकते हैं, पढ़ाई के अवसर भी कम मिल सकते हैं, जीवन में परेशानियां भी हो सकती है, लेकिन अगर उसके मन में ये विश्वास है कि मैं कोशिश करूंगा और आगे बढ़ूंगा, तो वह धीरे धीरे अपनी मंजिल के करीब पहुंच सकता है। इसलिए हमारी ताकत केवल हमारे शरीर में नहीं होती साथियों, बल्कि हमारे विचारों और आत्मविश्वास में भी होती है। हम देखते हैं कि जीवन में हर व्यक्ति को संघर्ष तो करना ही पड़ता है। परिस्थितियां हमें कमजोर नहीं बनाती, हार मान लेना हमें कमजोर बनाता है। कोई व्यक्ति आर्थिक परेशानियों से लड़ता है, तो कोई बीमारी से, तो दोस्तों कोई पारिवारिक जिम्मेदारियों से, और कोई समाज की नकारात्मक सोच से लड़ता है। कई बार लोग सोचते हैं कि जिनके पास पैसा है, सुविधाएं हैं और अच्छे अवसर है, सफलता केवल उन्हीं के लिए बनी है। लेकिन इतिहास और समाज में ऐसे अनगिनत उदाहरण है श्रोता साथियों, जिन्होंने कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी अपने जीवन को बदल दिया है। गाँव और छोटे कस्बों में भी ऐसे अनेक युवा हैं जिन्होंने सीमित संसाधनों के बावजूद भी पढ़ाई की है, मेहनत की है और आगे भी बढ़े हैं। साथ ही महिलाओं की बात करें तो ऐसी कई महिलाएं हैं जिन्होंने घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ अपने पैरों पर खड़ा होना सीखा है। ऐसे किसान भी हैं जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में नए तरीके अपनाए हैं और खेती को एक बेहतर अवसर के रूप में अपनाया है। हमारे सामने ऐसे बच्चों के भी उदाहरण हैं दोस्तों, जिन्होंने साधनों की कमी को अपनी पढ़ाई के रास्ते में कभी बाधा नहीं बनने दिया। और इन सभी लोगों में एक बात समान थी, और वो थी उन्होंने खुद को कमजोर मानने से इनकार कर दिया। तो इस तरीके से हम जान पा रहे हैं, परिस्थितियां हमें कमजोर नहीं बनाती, बल्कि हमारे मन में जो हमारी सोच है कि हम हार मान चुके हैं, वो हमें कमजोर बनाता है। तो बातें ढेर सारी मेरी आपसे चल ही रही हैं, और हम जान ही रहे हैं श्रोता साथियों कि खुद को कमजोर समझना हमारी सबसे बड़ी कमजोरी होती है। तो इस विषय को लेकर आगे भी मेरी आपसे ढेर सारी बातें होंगी, लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं यहाँ पर एक और प्यारे से गीत के साथ में। तो आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में और सुनते रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM।

दोस्तों, इस गीत के बाद फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि बातचीत का विषय काफी महत्वपूर्ण चल रहा है और गीत से पहले ढेर सारी बातें भी हम जान पाए थे। हमने जाना था दोस्तों कि परिस्थितियां कमजोर हमें नहीं बनाती, बल्कि हमारे मन में जो सोच है कि हम हार मान चुके हैं वो हमें कमजोर बनाता है। और गीत से पहले मैंने जैसा कि आपको बताया था कि हमारे सामने ऐसे कई उदाहरण हैं जिन्होंने कभी परिस्थितियों के सामने घुटने नहीं टेके, बल्कि उन्होंने परिस्थितियों का सामना किया और खुद को कमजोर मानने से इनकार कर दिया। यही अब बात आती है कि अपनी तुलना दूसरों से करना भी हमारी कमजोरी को बढ़ाता है। वो कैसे साथियों? तो आज के समय में बहुत से लोग अपने जीवन की तुलना दूसरों से करने लगे हैं। कोई कहता है कि उसके पास मुझसे ज्यादा पैसा है, तो कोई ये कहता है कि वो मुझसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, उसके पास मुझसे ज्यादा अधिक अवसर है, वो मुझसे ज्यादा सुंदर है, वो मुझसे ज्यादा सफल है। ये ढेर सारी ऐसी बातें हैं जो हमें सुनने को मिलती है, लेकिन हर व्यक्ति की परिस्थितियाँ अलग होती है साथियों, और हर व्यक्ति का जीवन भी अलग होता है। दो लोगों की यात्रा एक जैसी नहीं हो सकती। हो सकता है कि किसी को सफलता जल्दी मिल जाए और किसी को उसके लिए अधिक समय और संघर्ष करना पड़े, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि जो व्यक्ति धीरे धीरे चल रहा है वह कभी अपनी मंजिल तक ही नहीं पहुंच पाएगा। धीरे चलना गलत नहीं है, रुक जाना गलत है। इसलिए दोस्तों, दूसरों से अपनी तुलना करने के बजाय आपको अपने आप से ये पूछना चाहिए कि मैं क्या कल से आज बेहतर हूँ, मैंने आज क्या नया सीखा है, मैं अपनी कमजोरी को ताकत में कैसे बदल सकता हूँ या बदल सकती हूँ। श्रोता साथियों, यही सवाल हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। अगर इस बात को एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाऊं, तो एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। वह पढ़ाई में बहुत तेज नहीं था। जब भी स्कूल में कोई प्रतियोगिता होती तो वह पीछे हट जाता। धीरे धीरे उसके मन में ये बात बैठ गई दोस्तों कि वह दूसरों से कमजोर है। वह ये सोचने लगा कि मैं कभी कुछ नहीं कर सकता। फिर क्या हुआ, एक दिन उसके शिक्षक ने उससे पूछा कि बेटा, तुम हर काम शुरू होने से पहले ही क्यों मान लेते हो कि तुम हार जाओगे। शिक्षक की बात सुनकर लड़के ने कहा, क्योंकि गुरुजी, मैं दूसरों जितना अच्छा नहीं हूँ। शिक्षक उसे स्कूल के बाहर एक पेड़ के पास ले गए। उन्होंने साथियों जमीन पर पड़े एक छोटे से पौधे की ओर इशारा करते हुए कहा कि देखो, ये पौधा अभी छोटा है, इसके पास न बड़े पेड़ जैसी ऊंचाई है और न ही मजबूत तना, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि यह कभी बड़ा पेड़ नहीं बनेगा। साथियों, लड़के ने कहा, नहीं, अगर इसे पानी और देखभाल मिलेगी तो यह बड़ा भी हो सकता है। यही बात सुनकर शिक्षक थोड़ा सा मुस्कुराए और बोले कि बस यही बात तुम्हारे जीवन पर भी लागू होती है। तुम आज जहाँ हो वहीं से शुरुआत करो, खुद को कमजोर मत समझो, सीखते रहो, मेहनत करते रहो और आगे बढ़ते रहो। साथियों, उस दिन के बाद लड़के ने दूसरों से तुलना करना बंद कर दिया। उसने अपनी कमियों को पहचानना शुरू किया और उन पर काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा और कुछ वर्षों बाद वही लड़का अपने क्षेत्र में एक सफल व्यक्ति बना। दोस्तों, उसकी जिंदगी तब बदली जब उसने खुद को कमजोर समझना बंद कर दिया। इसलिए कमजोरी को पहचानना गलत नहीं है, और ये बात हम सभी को समझने की आवश्यकता है। हमारे अंदर की कमजोरी को पहचानना गलत नहीं होता साथियों, बल्कि अपनी कमियों को पहचानना ही सुधार की पहली सीढ़ी होती है। अगर हमें पढ़ाई में परेशानी है तो हमें पढ़ाई पर अधिक ध्यान देना चाहिए। अगर हमें किसी काम का अनुभव नहीं है तो हमें सीखना चाहिए। अगर हम आत्मविश्वास की कमी महसूस करते हैं दोस्तों, तो हमें धीरे धीरे बोलने, समझने और आगे बढ़ने का अभ्यास भी करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कहना चाहूंगी कि परेशानी तब होती है जब हम अपनी किसी एक कमजोरी को अपने पूरे जीवन की पहचान बना लेते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए, कोई कहता है कि मैं पढ़ाई में कमजोर हूँ, इसलिए मैं जीवन में सफल नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों, ये सोच तो बिल्कुल गलत है। किसी व्यक्ति की एक कमजोरी यह नहीं तय करती कि वह जीवन में क्या बन सकता है। हर इंसान में कुछ कमियां होती है तो कुछ खूबियां भी होती है। जरूरत इस बात की है कि हम अपनी खूबियों को पहचानें, कमजोरियों को पहचानें, लेकिन खुद को कमजोर नहीं माने श्रोता साथियों। और यही आज के कार्यक्रम का मुख्य संदेश है, क्योंकि हम जैसा कि जानते हैं कि वर्तमान युग में प्रतिस्पर्धा काफी बढ़ चुकी है। हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, हर किसी को श्रोता साथियों सफलता चाहिए। लेकिन सफलता प्राप्त करने के इसी दौर में हमारे अंदर कुछ कमियां भी हैं जो हमें पीछे धकेल देती है। लेकिन दोस्तों, हमारे अंदर आत्मविश्वास ये होना चाहिए कि हम उन कमियों को हमारी कमजोरी ना समझकर हमारी ताकत बना लें। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ी कमजोरी होती है। इस बात को हम गलत साबित करें जब इंसान खुद पर विश्वास करना छोड़ देता है युवा साथियों,
तो उसकी सबसे बड़ी ताकत भी बेकार हो जाती है। लेकिन जब इंसान अपने आप पर भरोसा कर लेता है तो साधारण परिस्थितियों में रहते हुए भी वह असाधारण काम कर पाता है। हमें हमेशा जीवन में ये याद रखना चाहिए कि हमारी परिस्थितियां हमें रोक नहीं सकती। अगर हमारा हौसला मजबूत है तो हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। हमारी असफलताएं हमें हरा नहीं सकती अगर हम दोबारा कोशिश करने का साहस रखते हैं तो। दूसरों की बातें हमें कमजोर नहीं बना सकती अगर हमारा खुद पर विश्वास है तो। इसलिए आप आज से ही अपने मन में ये संकल्प लीजिए कि हम खुद को कमजोर नहीं समझेंगे। हम असफलता से सीखने की कोशिश करेंगे। हम अपनी कमियों को पहचान कर उन्हें सुधारेंगे। हम दूसरों से तुलना करने के बजाय खुद को बेहतर बनाएंगे। क्योंकि जिस दिन इंसान अपने मन पर विश्वास करना सीख जाता है उसी दिन से उसकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाती है। इन्हीं बातों के साथ अब मैं कार्यक्रम से विदा लेना चाहूंगी क्योंकि बातें ढेर सारी हो चुकी है। श्रोता साथियों, विदा तो जरूर लूंगी लेकिन जाने से पहले आपको मनोरंजन करवाना चाहूंगी यहाँ पर एक और प्यारे से गीत के साथ में। तो आप बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में।

दोस्तों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम सपनों की उड़ान अब यहीं समाप्त होता है। अंत में आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि हार से मत डरना, कोशिश को जारी रखना, रास्ते मुश्किल हो तो हौसला भारी रखना, खुद को कभी कमजोर मत समझना, जीवन में तुम्हें मंजिल मिलेगी, बस खुद पर विश्वास रखना। इन्हीं उम्मीदों के साथ कार्यक्रम से अब विदा लेती हूँ। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखिए, कार्यक्रम सपनों की उड़ान, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 94140826 43 पर। इसी के साथ आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org। तो दोस्तों, फिर से मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम सपनों की उड़ान में एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

0: कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ सुनने वाले सभी साथियों को आपकी अपनी साथी मनीषा पटेल
1: और आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। मनीषा, आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बातचीत का विषय है बचत को तीन हिस्सों में बांटे मासिक आय में लाए ग्रोथ को लेकर। हम अक्सर कहते हैं कि कमाई बढ़ जाए तो जीवन आसान हो जाएगा, लेकिन क्या केवल कमाई बढ़ना ही आर्थिक मजबूती की निशानी है? अगर किसी व्यक्ति की आय ज्यादा है लेकिन खर्च उतना ही ज्यादा है और हर महीने के अंत में उसके पास कुछ नहीं बचता, तो क्या उसे आर्थिक रूप से मजबूत कहा जा सकता है? वहीं दूसरी ओर कोई व्यक्ति सीमित आय में भी समझदारी से खर्चा करता है, नियमित बचत करता है और अपनी बचत को सही जगह लगाता है, तो धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है। इसलिए आज का हमारा विषय है बचत को तीन हिस्सों में बांटे मासिक आय में होगी ग्रोथ। जी हाँ श्रोता साथियों, यह सिर्फ पैसे बचाने के लिए नहीं है बल्कि पैसों को समझदारी से संभालने, भविष्य के लिए तैयार रखने और बचत को धीरे धीरे बढ़ाने के विषय पर है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारी श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय बताया था कि आज हम बात करने वाले हैं बजट को तीन हिस्सों में बांटे मासिक आय में होगी ग्रोथ। जी हाँ श्रोता साथियों, हम सभी चाहते हैं कि हमारी कमाई का सही उपयोग हो, घर की जरूरतें पूरी हो और भविष्य के लिए कुछ पैसा है वो हम बचा कर रखें। लेकिन अंजलि जी, हम देखते हैं कि कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि महीने की शुरुआत में पैसा आता है और महीने के अंत तक पता ही नहीं चलता कि पैसा है वो कहाँ खर्च हो गया। अचानक श्रोता साथियों, कोई बीमारी आ जाए, घर में कोई जरूरी सामान लेना पड़ जाए या बच्चों की पढ़ाई का खर्च आ जाए, तो ऐसे में अंजलि जी हम देखते हैं कि हम दूसरों लोगों से उधार लेने पड़ते हैं पैसे। हमें पैसा कमाना श्रोता साथियों जितना जरूरी है हमारे लिए, उतना ही जरूरी है कमाए हुए पैसे को सही तरीके से संभालना।
1: जी हाँ,
0: बचत के आदर्श श्रोता साथियों आर्थिक रूप से हमें मजबूत बनाते हैं। इसके लिए जरूरी यह नहीं है कि हम आय को ज्यादा बचाने की कोशिश करें, छोटी आय की बचत करके भी श्रोता साथियों अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, हमारे गाँव और कस्बों में बहुत से परिवार महीने भर मेहनत करके आय अर्जित करते हैं। कोई खेती करता है, कोई मजदूरी करता है, कोई छोटा व्यापार चलाता है, कोई नौकरी करता है, तो कोई घर से छोटा काम करके परिवार की आय में सहयोग करता है। लेकिन मनीषा, कई बार महीने के अंत में यह सवाल सामने आता है कि इतनी मेहनत से कमाया पैसा गया कहाँ। इसका एक बड़ा कारण है कि हम कमाई तो करते हैं लेकिन पैसे के आने और जाने का हिसाब व्यवस्थित तरीके से नहीं रखते। कभी अचानक बीमारी का खर्च आ जाता है, कभी बच्चों की पढ़ाई का खर्च बढ़ जाता है, कभी खेती के लिए बीज और खाद पानी खरीदना पड़ता है, तो कभी कोई सामाजिक कार्यक्रम सामने आ जाता है। ऐसी परिस्थिति में यदि हमारे पास बचत नहीं है तो हमें उधार लेना पड़ सकता है। इसलिए बचत केवल पैसा जमा करने वाली चीज नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है जरूरत के समय अपने पैरों पर खड़ा रहना, अचानक आने वाली खर्च के लिए तैयार रहना, भविष्य के सपनों को पूरा करना, बच्चों की पढ़ाई की योजना बनाना और आर्थिक चीजों में चिंता नहीं करना। हम देखते हैं कि कई बार ऐसी आर्थिक स्थिति हमारी हो जाती है कि हम चिंता में पड़ जाते हैं कि अब हम क्या करें। अगर हम बचत करते हैं तो हम उस चिंता से दूर रहते हैं। यही बात आती है अब कि बचत को तीन हिस्सों में बांटने का विचार हम कैसे करें। तो साथियों, जब भी हम बचत करते हैं तो अक्सर सारा पैसा एक ही जगह रख देते हैं, लेकिन हर बचत का उद्देश्य अलग हो सकता है। इसलिए अपनी बचत को तीन हिस्सों में बांटकर योजना बनाना एक समझदारी भरा तरीका हो सकता है। इन तीनों हिस्सों को हम इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे कि पहला हिस्सा आपातकालीन जरूरत के लिए, दूसरा हिस्सा भविष्य के लक्ष्यों की बचत के लिए, तीसरा हिस्सा आय बढ़ाने और विकास के लिए बचत। इन तीनों हिस्सों को विस्तार से हमें समझने की जरूरत है और इस प्रकार हमें बचत करनी है।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि बचत करने का श्रोता साथियों एक आसान तरीका ही अपनी बचत और मासिक आय को सही हिस्सों में तीन तरीके से बांटना। इन तीन हिस्सों को अपनी जरूरत, बचत और भविष्य की तैयारी के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यह तरीका श्रोता साथियों हर व्यक्ति अपने आय और जरूरत के अनुसार बदल सकता है। इसका उद्देश्य श्रोता साथियों केवल इतना है कि पैसा आते ही पूरा खर्च न हो, भविष्य के लिए हम कुछ पैसा और कुछ रकम है वो बचा कर रखें। यही अंजलि जी बात करें कि बचत क्या है इसकी, तो श्रोता साथियों हम देखते हैं कि बचत का मतलब है अपनी कमाई में से कुछ खर्च कर देना और कुछ अपने भविष्य के लिए सुरक्षित रखना। मान लीजिए श्रोता साथियों कि किसी व्यक्ति की महीने की आय 10,000 रुपए है, अगर वह पूरा पैसा महीने में खर्च कर देता है तो महीने के अंत में उसके पास कुछ नहीं बचेगा। लेकिन श्रोता साथियों अगर वह अपने आय से थोड़ी सी रकम बचा कर रखता है और अलग रखता है, तो अंजलि जी हम देखते हैं कि कुछ महीनों बाद उसके पास एक छोटी सी रकम जमा हो सकती है। यह रकम छोटी सी श्रोता साथियों आगे चलकर हमारी मदद बन सकती है। बचत केवल श्रोता साथियों अमीर लोगों के लिए नहीं होती, किसान, मजदूर, दुकानदार, कर्मचारी, गृहिणी, हर व्यक्ति ही वो अपनी क्षमता के अनुसार अपनी बचत कर सकता है।
1: बिल्कुल मनीषा, यही श्रोता साथियों को कहना चाहेंगी कि जीवन में हर चीज हमारी योजना के अनुसार नहीं चलती। कई बार अचानक ऐसी स्थिति आ जाती है जिसके लिए हमें पहले से हमने तैयारी नहीं की होती है, जैसे घर में किसी की तबीयत खराब हो जाना, अचानक यात्रा करनी पड़ती है, खेती में नुकसान हो जाता है, मजदूरी या काम का जो कुछ समय है वो बंद हो जाता है, वाहन या घर की जरूरी जो मरम्मत होती है वो हमें करानी पड़ती है, कभी कभी बच्चों की अचानक कोई जरूरी चीज हमें लानी होती है। तो श्रोता साथियों, ऐसे समय में अगर हमारे पास थोड़ी आपातकालीन बचत हो तो हम तुरंत किसी से कर्ज लेने की स्थिति में नहीं आते। मान लीजिए किसी परिवार की मासिक आय 20,000 रुपए है, वह परिवार अपनी स्थिति के अनुसार हर महीने एक छोटी सी राशि केवल आपातकालीन जरूरतों के लिए अलग रख सकता है। ये जरूरी नहीं है कि शुरुआत में बहुत बड़ी रकम ही बचाई जाए, छोटी बचत से शुरुआत करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। कई लोग सोचते हैं कि मेरी आय ही कम है, मैं बचत कैसे करूं? लेकिन साथियों, बचत की शुरुआत रकम से नहीं बल्कि आदत से होती है। अगर कोई व्यक्ति रोजाना 20 रुपए भी अलग रख सकता है तो महीने के अंत का लगभग 600 रुपए जमा हो सकते हैं। इसी तरह छोटी छोटी राशि समय के साथ बड़ी मदद बन सकती है। आपातकालीन बचत हमें यह भरोसा देती है कि अगर कल कोई मुश्किल सामने आती है तो हम पूरी तरह दूसरों पर निर्भर नहीं होंगे।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारी श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर बातें चली रही हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो ये बातें हमारे आगे भी ऐसे ही जारी रहेंगी। लेकिन क्यों ना साथियों के मनोरंजन के लिए हम कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना कि किस तरीके से हम आय को तीन हिस्सों में बांट सकते हैं। जैसा कि गीत से पहले मनीषा हमने आपातकालीन जरूरतों की बचत के बारे में जाना, यही बात करें भविष्य के लक्ष्यों के लिए बचत को लेकर। तो श्रोता साथियों, हर परिवार के कुछ सपने होते हैं। कोई अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहता है तो कोई घर की मरम्मत करवाना चाहता है, कोई बेटी या बेटी की आगे की पढ़ाई के लिए पैसे जोड़ना चाहता है, कोई नया घर बनाना चाहता है, कोई खेती के लिए नई मशीन खरीदना चाहता है। लेकिन श्रोता साथियों, सपने केवल सोचने से पूरे नहीं होते। सपनों को पूरा करने के लिए योजना और नियमित बचत जरूरी होती है। इसलिए अपनी बचत का दूसरा हिस्सा हमें भविष्य के लक्ष्यों के लिए रखना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: सबसे पहले परिवार को बैठ कर यह तय करना चाहिए कि आने वाले समय में कौन कौन से बड़े खर्च हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, बच्चे की स्कूल या कॉलेज की फीस, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी, शादी या पारिवारिक जिम्मेदारियां, घर का निर्माण या मरम्मत, खेती से जुड़ी जरूरतें, नया काम शुरू करना। जब लक्ष्य स्पष्ट होगा तो बचत करना आसान हो जाएगा। मान लीजिए कि किसी परिवार को पता है कि अगले 2 साल बाद बच्चे की पढ़ाई के लिए बड़ी राशि की जरूरत पड़ सकती है, तो वह परिवार आज से ही हर महीने थोड़ी थोड़ी बचत शुरू कर सकता है।
1: बिल्कुल।
0: यही छोटी छोटी तैयारी भविष्य में बड़ी परेशानी को कम कर सकती है। भविष्य के लिए बचत करते समय एक बात बहुत जरूरी है कि बचत को किसी उद्देश्य से जोड़ें। जब हम केवल यह सोचते हैं मनीषा कि पैसे बचाने हैं, तो कई बार बचत टूट जाती है। लेकिन जब हम कहते हैं कि यह पैसा बचाने की लिए बच्चों की पढ़ाई के लिए जरूरी है, यह पैसा घर की मरम्मत के लिए और यह पैसा भविष्य की जरूरत के लिए है, तो उस बचत को संभालने की जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि घर की जरूरतों के अनुसार भी हमें बचत करने की जरूरत है और उन खर्चों पर भी ध्यान देने की जरूरत है। इसके लिए श्रोता साथियों, हमें घर का राशन, बिजली का, पानी का बिल, बच्चों की पढ़ाई, आने जाने का खर्च, खेती से जुड़ी जरूरी चीजें, दवाइयां और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतें, घर की दूसरी जरूरी जो श्रोता साथियों वस्तु होती है, उनके लिए भी हम खर्च कर सकते हैं। जरूरत और इच्छा को समझना भी श्रोता साथियों हमारे लिए जरूरी है। जरूरत वह चीजें साथियों जिसके बिना हमारा काम नहीं चलता, जबकि इच्छा वह चीज है श्रोता साथियों जिसे हम लेना तो चाहते हैं लेकिन उसे बिना काम का हम ले लेते हैं और फिर बाद में वो हमारी कुछ काम नहीं आता। इसीलिए श्रोता साथियों, अनावश्यक चीजों को लेने से पहले हमें 2 बार सोचना है। जो श्रोता साथियों जरूरी चीज होती है वही चीज हमें लेनी है।
0: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। यही श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि बचत का तीसरा हिस्सा सबसे महत्वपूर्ण सोच से जुड़ा है, अपनी आय बढ़ाने के लिए तैयारी करना। हम में से कई लोग बचत तो करते हैं लेकिन यह नहीं सोचते कि बचत में बचाए गए पैसों का एक हिस्सा हमारी कमाई बढ़ाने में किस तरीके से लगाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, किसी महिला को सिलाई आती है, अगर वह थोड़ी थोड़ी बचत करके सिलाई मशीन खरीद लेती है तो वह घर से काम शुरू कर सकती है। किसी किसान को सब्जी उत्पादन का अनुभव है, यदि वह योजना बनाकर कुछ राशि खेती के लिए नए प्रयोग में लगा लेता है तो उसकी आय के नए असर बन सकते हैं। कोई युवा कंप्यूटर, मोबाइल रिपेयरिंग, डिजाइनिंग, सिलाई, ब्यूटी, डेयरी और किसी अन्य कौशल का प्रशिक्षण लेकर रोजगार के अवसर बढ़ा सकता है। इसी तरह छोटी बचत का एक हिस्सा कौशल सीखने, छोटे छोटे व्यवसाय शुरुआत करने, काम के जरूरी उपकरण खरीदने, खेती में उपयोगी सुधार, पशुपालन, घर से चलने वाले रोजगार या आय बढ़ाने वाले अन्य सुरक्षित और सोच समझ कर किए गए प्रयासों के लिए रखा जा सकता है।
1: बिल्कुल।
0: यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बिना जानकारी और बिना योजना के पैसा कहीं भी न लगाएं। किसी भी निवेश या व्यवसाय से पहले

0: जानकारी लेना, जोखिम समझना और जरूरत पड़ने पर किसी भरोसेमंद वित्तीय सलाहकार या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लेना उपयोगी हो सकता है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, यही अगर बात करें कि महिलाओं के लिए बचत क्यों जरूरी है इसकी, तो श्रोता साथियों हम देखते हैं कि घर के जो खर्च होते हैं उनको संभालने में महिलाओं की भूमिका होती है वो महत्वपूर्ण होती है। कहीं महिलाएं कम पैसों में श्रोता साथियों घर को अच्छी तरह से चलाती है। अगर महिलाएं छोटी छोटी रकम की बचत करने की आदत डाली तो हम देखते हैं कि परिवार की आर्थिक स्थिति है उसको मजबूत करने में मदद मिल सकती है। महिलाएं घर के खर्च की छोटी डायरी बना सकती है, उसमें रोज का खर्च लिख सकती है, जैसे कि श्रोता साथियों आज कितनी सब्जियां पर कितना खर्च हुआ, राशन कितना खर्च हुआ, बच्चों की पढ़ाई पर कितना खर्च हुआ और आने जाने का पैसा कितना लगा। श्रोता साथियों देखते हैं कि महीने के अंत में जब खर्च का हिसाब सामने आता है तो हमें समझ आता है कि ज्यादा पैसा खर्च नहीं हुआ है और हमारी जरूरत के अनुसार कहाँ कहाँ पैसा खर्च हुआ है। साथ ही साथियों हम देखते हैं कि बचत की शुरुआत खर्च का हिसाब रखने से होती है। कई बार हम छोटे छोटे खर्च में तो श्रोता साथियों महत्व देते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि महीने के अंत में आकर हमें पता चलता है कि हमारे कितने पैसे फालतू में चले गए और कितने उपयोग में आए। तो ऐसे में अंजलि जी हम देखते हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति है वो और भी बिगड़ती जाती है। इसलिए श्रोता साथियों खर्च करने से पहले हमारी जरूरी जो काम होते हैं, जरूरी चीजें होती हैं, उनके बारे में सोचकर हमें खर्च करना है।
0: जी हाँ मनीषा, तीन हिस्सों में बचत बांटने का आसान तरीका तो हमने जाना। अब सवाल उठता है कि आखिर बचत को तीन हिस्सों में किस तरीके से कितना कितना बांटा जाए। साथियों इसका एक ही नियम हर व्यक्ति और हर परिवार के लिए लागू हो सकता है, क्योंकि हर परिवार की आय, खर्च और जिम्मेदारी अलग होती है। लेकिन समझने के लिए आप अपनी बचत को तीन उद्देश्यों के आधार पर बांट सकते हैं। जरूरी और अचानक आने वाले खर्च के लिए, भविष्य के लक्ष्य के लिए और आय बढ़ाने और अपने विकास के लिए। आप अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार इन तीनों हिस्सों का अनुपात तय कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर किसी परिवार के पास हर महीने 3,000 रुपये बचत के रूप में उपलब्ध हैं, तो वह अपनी जरूरत के अनुसार उसका हिस्सा आपातकालीन जरूरतों, कुछ हिस्सा भविष्य के लक्ष्य और कुछ हिस्सा आय बढ़ाने या कौशल विकास के लिए रख सकते हैं। यह जरूरी नहीं है कि तीन हिस्सों में हमेशा बराबर रकम ही रखी जाए। किसी परिवार में उस समय स्वास्थ्य या अन्य जरूरी जरूरत ज्यादा हो जाती है तो आपातकालीन बचत को प्राथमिकता दी जा सकती है। किसी परिवार में बच्चे की पढ़ाई का समय नजदीक हो तो भविष्य के लक्ष्य के लिए अधिक बचत की जा सकती है। यानी बचत का नियम एक जैसा नहीं बल्कि जरूरत के अनुसार होना चाहिए।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि बचत करने के लिए श्रोता साथियों हमारे लिए यह समझना भी जरूरी है कि हमें वास्तव में क्या चाहिए और हमें क्या खरीदना चाहते हैं।
0: बिल्कुल
1: श्रोता साथियों, अगर घर में पहले से कोई चीज मौजूद है तो फिर से हम केवल दिखावे के लिए उस चीज को खरीद लेते हैं तो अंजलि जी हम देखते हैं कि यह हमारे लिए अनावश्यक खर्चा है वो बढ़ जाता है। बचत का मतलब श्रोता साथियों यह नहीं है कि अपनी इच्छाओं को हम छोड़ दें, इसका मतलब यह है कि हमें जरूरी चीजों को श्रोता साथियों पहले प्राथमिकता देनी है, इसके बाद अपनी इच्छा के अनुसार हमें खर्च करने का प्रयास करना है।
0: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। तो इस तरीके से कार्यक्रम में हम ढेर सारी बातों को जान पा रहे हैं। आगे भी निरंतर ये बातें यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए साथियों सुनते हैं इस गीत को।

0: श्रोता साथियों, इस प्यारे से गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि श्रोता साथियों, हम बातें कर रहे थे बचत को तीन हिस्सों में बांटे मासिक आय में होगी ग्रोथ को लेकर। यहीं अगर अंजलि जी बात करें कि बचत का पैसा है वो सुरक्षित कैसे रखे इसकी, तो श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि बचत करना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है हमारे लिए बचत के पैसे को सुरक्षित रखना। पैसों को कहाँ रखा जाए यह हर व्यक्ति की परिस्थिति और परिवार की जरूरत पर निर्भर करता है। बैंक में बचत खाता, डाकघर में श्रोता साथियों बचत का उपयोग योजना हम बना सकते हैं या अन्य कोई सुरक्षित और समझ आने वाले विकल्पों की जानकारी लेकर भी हम निर्णय ले सकते हैं। श्रोता साथियों, किसी भी योजना में पैसा लगाने से पहले उसके नियम, जोखिम, शुल्क और जो शर्तें होती हैं उनको समझना भी हमारे लिए जरूरी है। केवल किसी व्यक्ति के कहने पर और जल्दी पैसा दुगना करने के लालच में श्रोता साथियों में कहीं भी पैसा नहीं लगाना है।
1: जी हाँ मनीषा, यही श्रोता साथियों से कहना चाहेंगे हम कि किस तरीके से हम मासिक बजट बना सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए ये बजट बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम मासिक बजट नहीं बनाएंगे तो हमारे जो पैसे की चीज़ें हैं वो हमें समझ में नहीं आएगी कि कितना पैसा बच रहा है और कितना कहाँ जा रहा है। श्रोता साथियों, बजट की शुरुआत जो है वो बजट से होती है। जब तक हमें ये पता नहीं होता कि हमारी आय कितनी है, खर्च कितना हो रहा है, तब तक बचत की सही योजना बनाना मुश्किल होगा। इसलिए महीने की शुरुआत में कॉपी और पेन लेकर लिखें मासिक आय कितनी है। इसके बाद लिखें जरूरी खर्च कौन कौन से हैं, जैसे राशन, बिजली, पानी, बच्चों की पढ़ाई, यात्रा, दवा, खेती का खर्च, मोबाइल और अन्य जरूरी खर्च। इसके बाद देखें कि कौन से खर्च ऐसे हैं जिन्हें कम किया जा सकता है। कई बार हमारी छोटी छोटी आदतें महीने भर में बड़ा खर्च बन जाती है। बिना जरूरत की खरीदी, बार बार बाहर खाने जाने का खर्च, उपयोग न होने वाली चीजें खरीदना या केवल दिखावे के लिए खर्च करना, ये सभी बचत को कम कर सकते हैं। इसका मतलब श्रोता साथी ये नहीं है कि जीवन में खुशी और जरूरत की चीजों पर खर्च न किया जाए, बल्कि समझदारी यह है कि पहले जरूरत, फिर इच्छा और उसके बाद में बचत।
0: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि बच्चों को भी हमें बचत की आदत सिखानी है। बचत श्रोता साथियों, बच्चों को यह आदत सिखाना हमारे लिए बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल,
0: बच्चों को समझाया जा सकता है कि पैसे का उपयोग हमें कैसे करना है। उन्हें छोटी रकम देकर यह सिखाया जा सकता है कि हर पैसा तुरंत खर्च करना हमारे लिए जरूरी नहीं है। बच्चे अगर छोटी उम्र में बचत करने के महत्व को समझ जाएंगे तो अंजलि जी हम देखते हैं कि वो बड़े होकर पैसे संभालना और अधिक जिम्मेदार भी बन सकते हैं। माता पिता है श्रोता साथियों खुद की बचत करेंगे तो बच्चे के व्यवहार में भी वह उतरेगा और बच्चा है वो भी बचत करने की आदत सीखेगा। साथ ही श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि बचत हमारे लिए तभी ज्यादा प्रभावी होती है जब इसके पीछे हमारे कुछ लक्ष्य होते हैं, जैसे कि मुझे 6 महीने में कितने रुपए बचाने हैं, मुझे बच्चों की पढ़ाई में कहाँ कहाँ पैसे खर्च करने और कैसे जमा करने हैं, मुझे खेती के लिए पैसे कैसे तैयार रखने हैं और मुझे घर की जरूरतों के लिए और घर की मरम्मत के लिए कहाँ पैसे लगाने हैं और वो पैसे मुझे कैसे जमा करने हैं, ये सारे लक्ष्य हैं वो श्रोता साथियों हमारे लिए स्पष्ट होने चाहिए। इससे अंजलि जी हम देखते हैं कि कोई भी काम हमारे पास आता है, बच्चों की पढ़ाई आती है, घर का कोई काम आता है या अन्य कोई काम आता है, तो हमारे लिए उसके लिए पैसे पहले ही सुरक्षित होते हैं।
1: जी हाँ मनीषा, अक्सर लोग कहते हैं कि जो पैसा महीने के अंत में बचेगा उसे बचा लेंगे, लेकिन कई बार महीने के अंत में कुछ बचता ही नहीं है। इसलिए एक बेहतर आदत हो सकती है कि आय मिलने के बाद सबसे पहले अपनी क्षमता के अनुसार कुछ राशि बचत के लिए अलग कर दी जाए, भले ही वह राशि छोटी हो। अगर हम बचत को महीने के अंत का काम मानेंगे तो वह कई बार नहीं हो पाएगी, लेकिन बचत को एक जरूरी खर्च की तरह मानेंगे तो धीरे धीरे यह हमारी आदत बन सकती है। याद रखिए कि बचत बड़ी आय से नहीं, नियमित आदतों से बनती है। कई घरों में आर्थिक फैसले केवल एक व्यक्ति करता है, लेकिन परिवार की जरूरतों को देखते हुए पति पत्नी और घर के जिम्मेदार सदस्यों को मिलकर आर्थिक योजना बनानी चाहिए। महिलाओं की भूमिका बचत में बहुत महत्वपूर्ण होती है। गाँव में हम देखते हैं कि कई महिलाएं छोटे छोटे खर्चों को संभाल कर परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभाती है। महिलाएं बचत समूह से जुड़ सकती हैं, घर के खर्च का हिसाब रख सकती हैं, छोटे रोजगार शुरू कर सकती हैं, कौशल विकास कर सकती हैं और परिवार को फिजूल खर्चे से बचाने में सहयोग कर सकती हैं। जब परिवार के सभी सदस्य बचत के महत्व को समझते हैं तो आर्थिक योजना बनाना आसान हो जाता है।
0: जी हाँ,
1: बच्चों को भी छोटी उम्र से पैसे की कीमत समझनी चाहिए। उन्हें बताया जा सकता है कि हर चीज तुरंत खरीदना जरूरी नहीं है, जरूरत और इच्छा में अंतर होता है और पैसे का सही उपयोग जीवन में बहुत काम आता है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगी कि श्रोता साथियों, जिस दिन आय मिले उस दिन बचत की रकम हमें अलग कर देनी चाहिए। अक्सर अंजलि जी लोग सोचते हैं कि पहले पूरा खर्च कर लेते हैं, महीने के अंत में जो पैसा बचेगा उसे बचा लेंगे, लेकिन श्रोता साथियों ऐसा होता है कि कई बार हमारे पास महीने के अंत में कुछ पैसे बचते ही नहीं है। इसलिए सही तरीका श्रोता साथियों यह है कि पहले हमें बचत के पैसे अलग करने हैं और फिर हमें जरूरी खर्च हैं वो करने हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि घर की जरूरतों को हमें छोड़ देना है। इसका अर्थ यह है कि आय आते ही क्षमता के अनुसार थोड़ी रकम भविष्य के लिए हम अलग कर सकते हैं। साथ ही श्रोता साथियों, बचत और निवेश भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। बचत का उद्देश्य आमतौर पर भविष्य की जरूरतों के लिए पैसा सुरक्षित करना होता है और निवेश का मतलब होता है श्रोता साथियों, निवेश में पैसा किसी साधन में लगाया जा सकता है जैसे कि रिटर्न में हमें वापस वही मिलने की संभावना होती है। लेकिन श्रोता साथियों, कुछ निवेशों में जोखिम भी होते हैं, तो उससे जुड़ी हमें सारी जानकारी है वो लेकर फिर मुझे हमें आगे निवेश करना है।
1: बिल्कुल मनीषा, यही श्रोता साथियों को कहना चाहेंगी कि कर्ज हमेशा गलत हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन बिना योजना बिना सोच समझ के लिया गया कर्ज परिवार के लिए परेशानी बन सकता है। कई बार छोटी जरूरत के लिए लिया गया उधार धीरे धीरे बड़ा बोझ बन जाता है। यदि परिवार के पास आपातकालीन बचत हो तो छोटी मोटी अचानक आने वाली जरूरतों के लिए तुरंत उधार लेने की जरूरत कम हो सकती है। इसलिए बचत हमें केवल भविष्य के लिए तैयार नहीं करती बल्कि कई परिस्थितियों में आर्थिक दबाव से भी बचाने में मदद करती है। बचत केवल घर में नकद पैसा रखने तक सीमित नहीं होनी चाहिए। अपनी बचत को सुरक्षित रखने, उचित विकल्प चुनने के लिए बैंक, डाकघर और अन्य विश्वसनीय वित्तीय संस्थानों की जानकारी लेना उपयोगी हो सकता है। आज गाँव में भी बैंकिंग और डिजिटल सुविधाएं बढ़ रही है, लेकिन हमें किसी भी योजना में पैसा लगाने से पहले उसकी पूरी जानकारी जरूर लेनी चाहिए। किसी के कहने मात्र से अनजाना ऐप, जल्दी पैसा दुगना करने वाले वादे, बिना समझे निवेश या संदिग्ध योजनाओं में पैसा नहीं लगाना चाहिए। याद रखिए कि जहां बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा लाभ का वादा किया जाता है वहां सावधानी और जानकारी दोनों जरूरी होती है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर बातें चली रही हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो ये बातें हमारी आगे भी ऐसे ही जारी रहेंगी, लेकिन क्यों ना साथियों के मनोरंजन के लिए हम कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि गीत से पहले हम ढेर सारी बातों को जान ही चुके हैं कि किस तरीके से हमें बचत को तीन हिस्सों में बांटना है ताकि हमारी ज़रूरत की चीज़ें भी पूरी हो जाएं और हमारा जो पैसा है वो कठिन समय में हमारे काम भी आए। श्रोता साथियों, कई घरों में आर्थिक फैसले केवल एक व्यक्ति करता है, लेकिन परिवार के सभी व्यक्ति अगर मिलकर बचत की चीज़ों के बारे में सोचेंगे तो बड़ा परिवर्तन आ सकता है। हम अक्सर बड़ी रकम के बारे में सोचते हैं और इसी कारण बचत शुरू नहीं करते। लेकिन सोचिए कि अगर कोई व्यक्ति रोज केवल थोड़ी राशि अलग रखे, हर महीने नियमित बचत करे, अनावश्यक खर्च कम करे और बचत का एक हिस्सा अपने भविष्य आय बढ़ने में लगाए तो कुछ वर्षों बाद उसकी स्थिति कितनी बदल सकती है। छोटी बचत एक बीज की तरह होती है। आज बीज छोटा होता है लेकिन सही देखभाल मिलने पर वही पौधा बनता है और समय के साथ बड़ा पेड़ बन सकता है। इसी तरह बचत भी नियमितता, अनुशासन और सही योजना से मजबूत बनती है। श्रोता साथियों, बचत करते समय हमें कई विशेष बातों का ध्यान रखने की जरूरत है, जैसे कि अपनी आय और खर्च का हिसाब रखें, हर महीने अपनी क्षमता के अनुसार बचत जरूरी है, बचत को अलग अलग उद्देश्य के लिए बांटें, आपातकालीन जरूरत के लिए अलग तैयारी रखें, भविष्य के बड़े लक्ष्य की तैयारी के लिए अलग रखें, बचत का एक हिस्सा अपने कौशल और आय बढ़ने के अवसरों के लिए सोच समझ कर उपयोग करें, अनावश्यक खर्चों को पहचान कर कम करें और बिना जानकारी के किसी भी योजना में पैसा न लगाएं। परिवार के साथ मिलकर आर्थिक योजना बनाएं, छोटी बचत को भी बड़ा बना सकते हैं। जब एक व्यक्ति बचत की आदत अपनाता है मनीषा, तो उसका परिवार मजबूत होता है। जब परिवार आर्थिक रूप से समझदार बनते हैं तो पूरा समुदाय भी मजबूत बनता है। आर्थिक समझदारी का मतलब श्रोता साथियों केवल ज्यादा पैसे होना नहीं होता है, बल्कि इसका अर्थ है जितना है उसे समझदारी से संभालना। हमारे गाँव में लोग मेहनत करते हैं, किसान खेतों में मेहनत करते हैं, महिलाएं घर और काम को दोनों को संभालती है, युवा रोजगार के लिए प्रयास करते हैं और मजदूर अपने परिवार के लिए दिन रात काम करते हैं। अगर इस मेहनत की कमाई का थोड़ा हिस्सा सही योजना के साथ बचाया जाए तो परिवार धीरे धीरे आर्थिक रूप से अधिक मजबूत बन सकता है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम कह सकते हैं कि बचत हो तो हमारा आत्मविश्वास है वो भी बढ़ता है। जब श्रोता साथियों हमारे पास कुछ पैसा है वो सुरक्षित रहता है तो हमें छोटी छोटी परेशानियों में घबराहट नहीं होती है। हमें पता होता है कि जरूरत पड़ने पर हमारे पास पैसा है और सहारा भी है। यदि श्रोता साथियों आर्थिक सुरक्षा धीरे धीरे हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाती है, बचत हमें सिखाती है कि हमें अपनी मेहनत की कमाई का सम्मान करना है, उसे और सोच समझ कर खर्च करना है।
0: बिल्कुल मनीषा, तो साथियों से यही कहना चाहेंगे कि आज की सारी बातों से एक बात साफ है कि आर्थिक मजबूती केवल बड़ी कमाई से नहीं आती, बल्कि सही योजना, समझदारी से खर्च और नियमित बचत से आती है। बचत को तीन हिस्सों में बांटने की सोच हमें अपने पैसों के अलग अलग उद्देश्य को समझने में मदद करती है। एक हिस्सा उन परिस्थितियों के लिए जिनकी हमें पहले से जानकारी नहीं होती, दूसरा हिस्सा उन सपनों के लिए जिन्हें हम अपने आने वाले वर्षों में पूरा करना चाहते हैं, और तीसरा हिस्सा अपने विकास, कौशल और आय बढ़ाने के अवसर के लिए। हमें याद रखना चाहिए कि पैसा केवल खर्च करने की चीज नहीं, अगर उसे सही दिशा और सही उद्देश्य दिया जाए तो वही पैसा हमारे भविष्य को सुरक्षित बनाने, नए अवसर पैदा करने में सहयोग कर सकता है। आज से एक छोटी शुरुआत कीजिए, एक कॉपी उठाइए, अपनी आय लिखिए, खर्च लिखिए और देखिए कि आप हर महीने कितना बचा सकते हैं। फिर अपनी बचत को उद्देश्य दीजिए, कुछ आज की सुरक्षा के लिए, कुछ आने वाले कल के सपने के लिए, तो कुछ अपनी आगे बढ़ती जिंदगी और आय बढ़ाने के लिए, क्योंकि बचत केवल पैसा जोड़ना नहीं बल्कि अपने भविष्य को मजबूत बनाना है। याद रखिए श्रोता साथियों कि छोटी सी बचत आज की आदत हो सकती है, लेकिन यही आदत कल की बड़ी ताकत बन सकती है।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर ढेर सारी बातें हो चुकी हैं और समय भी हो चला है अब कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: बिल्कुल,
1: विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पता हम बता दें।
0: जी हाँ, तो लिख लीजिए श्रोता साथियों हमारा पता, कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
1: इसके साथ दोस्तों आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
0: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारशर
1: और आपके अपने साथी मनीषा पटेल को
0: नमस्कार।
1: साथी श्रोता साथियों, आप सभी को छोड़े चलते हैं कार्यक्रम के अंतिम गीत के साथ में।
0: जी हाँ।

0: भाइन बोनो, घर तक निकलते वक्त कोई आपनो इंतजार करी रू है। माँ नी दुआ, पिता नी उम्मीद, निसोरनी मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित्य जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपनो इंतजार करी रू है।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त और इस कार्यक्रम के होस्ट कशिश पारशर। स्वागत है दोस्तों आप सभी का कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसे कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि फरमाइशों का सिलसिला कार्यक्रम के माध्यम से हमारा आपके साथ रोजाना बना रहता है, सोमवार से शनिवार सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक। और इसी बीच दोस्तों आप अपनी फरमाइश गीतों के लिए हमें व्हाट्सएप SMS करते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे कार्यक्रम में नए हैं, आप भी अपनी फरमाइश की गीत सुनना चाहते हैं, हम तक पहुंचाना चाहते हैं, ज़रूर पहुंचा सकते हैं व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से। आपको करना कुछ नहीं है, आपको लिखना है साथियों SMS पर फिल्म का नाम, गीत के बोल, आप कहां से इस फरमाइश को सुनना चाह रहे हैं, वहां का आपको नाम लिखना है और साथ ही फरमाइशकर्ताओं के नाम लिखकर भेज देना है व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से। हमारा नंबर है 9414082643। तो श्रोता साथियों हमें इंतजार रहेगा आपकी फरमाइश गीतों का। अब जैसा कि कार्यक्रम में फरमाइशों का सिलसिला शुरू हो चुका है, तो मैं बढ़ना चाहूंगी हमारी पहली फरमाइश की गीत की ओर। हमारी पहली फरमाइश आई है दोस्तों पंडरपुर सिटी से, फिल्म का नाम है सड़क, गीत के बोल है हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते। फरमाइशकर्ता जुड़ना चाह रहे हैं पंडरपुर शहर से, प्रशांत सिंधे, सुनीता सिंधे, यशार सिंधे, ऋषि सिंधे, कृष्णा घोड़के जी और भी हमारे दोस्त हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं, जुड़ रहे हैं। बागपत से जगमोहन सिंह बजापत, मुनेश देवी जी, अर्जुन भिटियांजलि, नितिन जगमोहन, भुवनेश्वरी देवी, सुधर नूतन, संतप, रामनंद कश्यप जी, दिल्ली से रामनाथ प्रजापति, सुमन देवी जी इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं। आपको नाम बताना चाहूंगी, मोहाली पंजाब से हैं बबल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा इसी बीच जुड़ रहे हैं। और भी दोस्त बागपत उत्तर प्रदेश से जुड़ना चाह रहे हैं, आसिफ अली खान, मोमिन अनास, मुस्कान, सादिक अली खान, सारिक अली खान, नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रकर्ष शाह, कुशल शाह, नितिशाह।

श्रोता साथियों, जैसा कि बहुत ही प्यारा सा गीत था, हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते, इसी गीत के बाद मैं फिर से बढ़ना चाहूँगी हमारी अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगी गंजू द्वारा से। फिल्म का नाम है प्रेम रोग, गीत के बोल हैं भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुमार। इस प्यारे से गीत को आवाज़ दिए सुरेश वाडकर, लता मंगेशकर जी ने। फरमाइश करता है इस गीत के साथ जुड़ना चाह रहे हैं, आपको नाम बताना चाहूँगी गंजुडवारा से शमशुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अनु अंसारी, कलीम अंसारी जी। मेरठ से जुड़ रहे हैं अनिल जैन, सैम जैन, मुस्कान मास्टर जी, वी एम जैन, आदि जैन, अंश जैन, पविजन, अंशिका जैन। श्रीरामपुर महाराष्ट्र से एड नाशी शेख, नदिया नाशी, साजिद शाहिद। गोविंदपुर अहमदनगर से जुनेद मुजावर, सबिया मिखाइल मुजावर जी। और भी हमारे श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं बरवट वकाल से, बुलढाणा महाराष्ट्र से, आपको नाम बताना चाहूँगी बलकरण वर्मा, अंजनी वर्मा, ज्योति प्रहलाद, राजेंद्र मनहरण वर्मा। और भी हमारे श्रोता साथी हैं भाटापारा छत्तीसगढ़ से, हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नौखेलाल वर्मा जी। सुनना चाह रहे हैं इसी गीत को बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामचंद्र विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू रजना, बदना प्रियल, दिव्यांश विश्वकर्मा जी। तो आइए साथियों मनोरंजन कर लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के गीत के साथ में। गीत के बोल हैं भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुमार। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

दोस्तों, इस गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है जमशेदपुर से। फिल्म का नाम है सावन को आने दो। गीत के बोल हैं, चांद से जैसे मुखड़े पर बिंदिया सितारा। फरमाइशकर्ता जुड़ना चाह रहे जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, तमन्ना भाटिया जी। और भी हमारे दोस्त हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं। आपको नाम बताना चाहूंगी, संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफार डावर, खुशनसीब अब्दुल हक डावर, जियाउलक अब्दुल रहमान डावर, राजेंद्र कटारे, छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी जी। और भी दोस्त जुड़ना चाह रहे हैं इसी गीत के साथ में। नाम बताना चाहूंगी, खंडवा मध्य प्रदेश से हैं विवेक सालिया डावर, हरीमा डावर, जिक्रा डावर, आयशा खत्री, फातिमा खत्री, तबस्सुम खत्री जी। करेली बरेली से हैं आरिफ हुसैन अंसारी, अमीर अंसारी, शमीम अंसारी, नसीन अंसारी, शमा अंसारी, माहिनूर अंसारी जी जुड़ना चाह रहे हैं। मधुबनी बिहार से हैं शबीर परवाना, शाहिद अली, जाहिद अली जी और एमडी शाहिद अली जी जुड़ना चाह रहे हैं। और भी दोस्त साई शिरडी से सुरेश मालोड़े, वर्षा मालोड़े, श्रद्धा मालोड़े, मानसी मालोड़े जी। छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पुनाराम देवांगन, कृष्णा देवांगन जी। तो आइए साथियों, सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं, चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर के साथ में।

श्रोता साथियों, जैसा कि बहुत ही प्यारा सा गीत था, चांद जैसे मुखड़े पे बिन लिया सितारा, इसी गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की गीत की ओर। दोस्तों, अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है, आपको मैं नाम बताना चाहूँगी, भोपालगढ़ राजस्थान से। फिल्म का नाम है लूटमार, गीत के बोल है जब छाए मेरा जादू। फरमाइश करता जुड़ना चाह रहे हैं जमशेदपुर भोपालगढ़ राजस्थान से, धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान छिपा, पूजा परिहार, और भी दोस्त हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे। खेल बाजार पानीपत से हैं नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्म मल्होत्रा, लड़गोल मल्होत्रा, नानक चल मल्होत्रा, रोहतक से पीयूष सिक्का, कुनिका सिक्का, डुग्गू भाविक, कोयल सिक्का, और भी साथी जुड़ना चाह रहे हैं नवाशहर पंजाब से, गगनदीप थाटी, तीता कुमारी थांडी, प्रियंका थांडी, प्रशांत थांडी, प्रियम वामिका, वाणी थांडी जी, और भी श्रद्धा साथी हैं दादीगढ़ भिवानी से हैं कृष्ण मेहरा, कोमल किरण, कपिल कुणाल मेहरा, कुंभार गली कोलगांव से जुड़ना चाह रहे हैं पांडु चंदन, उषा चंदन, रानी प्रतीक्षा, अभिषेक चंदन, सार्थक चंदन, प्रथमेश चंदन, संतोष चंदन, पांडुरंग कुम्हार जी, पोटा कला दुर्ग से हैं संजय साहू, सुधा साहू, शशांक साहू, सीमा साहू। तो आइए दोस्तों, मनोरंजन करते हैं दोस्तों की फरमाइश के गीत के साथ में। गीत के बोल है जब छाए मेरा जादू, तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर के साथ में।

श्रोता, उस गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश के गीत की। और अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है जफराबाद से। फिल्म का नाम है गोरा काला। गीत के बोल हैं, धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले। फरमाइश करता है इस गीत के साथ जुड़ना चाह रहे हैं सुधाकर राजे यादव देशमुख, प्रशांत राजे यादव देशमुख, ज्योति राजे देशमुख, संचित वयाल देशमुख, प्रणय देशमुख, सर्वत देशमुख, हर्षिता सानवी और प्रणाली देशमुख जी। इसी बीच और भी श्रोता साथी हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं। मैं नाम बताना चाहूँगी साथियों, आपको जुड़ना चाह रहे हैं सहारनपुर से सैयद मसूर, साना असला और अक्सा, अदबीर नाफिया अबिया जी, इफ्राहिम सद्दाम जी, नाजिया जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं हमारे श्रोता साथी अजित कसाना, मायादेवी ऋतिकादित्य कसाना, लदावली मुरादाबाद से हैं। जाखोद राजस्थान से शमुदाल खट्टक, विमला देवी, अमरजीत खट्टक, सुंदरलाल खट्टक, योगेश कुमार खट्टक, दीपक कुमार खट्टक, कुमारी पूजा खट्टक। कलानोर से हैं नरेंद्र शर्मा, किरण नितिन, मयंक शर्मा। जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी, हिमांश जी। नरवेल महाराष्ट्र से जुड़ना चाह रहे हैं पी एस नवाड़कर, नियोन नवाड़कर, विश्ल नवाकर। हरिद्वार उत्तराखंड से हैं ताज मदन सारे, गुलाम शाबिराही, महराज जहां। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं, धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

दोस्तों इस गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश आई है कनेरा मोहल्ला पटियाला से। फिल्म का नाम है खुदा गवा, गीत के बोल है रब को याद करो। फरमाइश करता जुड़ रहे हैं मुकेश बत्तन, नीलम बत्तन, नितिन पलक, करण गीतू, निहारिका हार्दिक और वंश बत्ता जी। और भी साथी जुड़ना चाह रहे हैं नादेड़ येतला महाराष्ट्र से शंकर लाल जयसवाल, गणेश लाल जयसवाल, शुभम प्रसाद जयसवाल, अर्णय जयसवाल, दुर्गेश्वरी जयसवाल, राखी जयसवाल, तृप्ति जयसवाल जी। नेहरू चौक पैठन से सुरेश जाधव, नीता जाधव, आरती पूजा, प्रसाद जाधव, सोनल जाधव, बिबिसिया जाधव, जलाना शहर से सोमनाथ, गीता, ओम सुभाष चंदन, एकनाथ, संगीता जाधव जी। फजल का पंजाब से सुभाष गोदरा, विमला गोदारे, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा जी। और भी साथी जुड़ना चाह रहे हैं इसी गीत के साथ में। नाम बताना चाहूंगी दोस्तों कुरावली से है राशिद हुसैन अंसारी, नसीन अंसारी, नौरीन अंसारी, मोहम्मद कैफ अंसारी, आसना अंसारी जी। तो आइए श्रोता साथियों मनोरंजन करते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत के साथ में। गीत के बोल है रब को याद करो। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, सुनते रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM।

दोस्तों, जैसा कि बहुत ही प्यारा सा गीत था, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ना चाहेंगे हमारी अगली फरमाइश के गीत की ओर। श्रोता साथियों, अगली फरमाइश का गीत बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आया है। फिल्म का नाम है सिर्फ तुम, गीत के बोल हैं पहली बार मोहब्बत की है। फरमाइशकर्ता जुड़ना चाह रहे हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से, मुकेश गोस्वामी, मधु गोस्वामी, आशी गोस्वामी, शिवन्या गोस्वामी, अनु गोस्वामी जी, और भी हमारे दोस्त जुड़ना चाह रहे हैं इस गीत के साथ में। आपको नाम बताना चाहूँगी, पटापरा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, अर्चना जोशी, हरमित सिंह चावला, बानी चावला, लोकेश जोशी, पायल जोशी, दनेश तिवारी, सावन नायक, अंकिता जोशी, विदेही जोशी जी, मारवाड़ बिलाड़ा राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, तरुण चौहान, प्रतीक चौहान जी, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से जुड़ रहे हैं गुणवंत श्रीवास, करुणा श्रीवास, आयुष श्रीवास, विवेक श्रीवास, बेबी आशीष श्रीवास, छत्तीसगढ़ से मोहन सिंह राज, अनिता राज, सुमित सोमो, मानस राज। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं पहली बार मोहब्बत की है। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

श्रोता साथियों, जैसा कि बहुत ही प्यारा सा गीत था, पहली पहली बार मोहब्बत की है, इसी गीत के बाद मैं फिर से बढ़ना चाहूँगी हमारी अगली फरमाइश की गीत की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आई है शिवाजी चौक कटनी से। फिल्म का नाम है श्रोता साथियों धर्मात्मा। गीत के बोल हैं, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। फरमाइशकर्ता जुड़ना चाह रहे हैं इस गीत के साथ में अनिल ताम्रकर, अमर ताम्रकर, दिलीप वर्मा जी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं। आपको नाम बताना चाहूंगी, राजू ताम्रकर, रजन रजक, संजीव वर्मा, विपिन गुप्ता जी, अरुण कोनोजा, संजय सोनी, पवन यादव, सुनील जैन, लालू सोना, मोना, हनी यश जी, सौम्या और उनके सदस्यगण परिवार के। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं और भी श्रोता साथी। वसीम महाराष्ट्र से, मास्टर विठल सुरेश शर्मा सुदे पदेश्वर से, मायरा श्रोसे जी जुड़ना चाह रहे हैं। और भी हमारे दोस्त आकोट से, विनायक बेंडे, मंगला बेंडे, शिवम, शुभम बेंडे, पवन जरिए, संजीव डाबे राव जी। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। अब तक आप बने रहिएगा साथियों कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, और सुनते रहिएगा आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।

दोस्तों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगी। फिल्म का नाम है कुछ कुछ होता है, गीत के बोल हैं कोई मिल गया, और ये फरमाइश हमारे बीच आई है आकोट से। विनायक बेंडे, मंगला बेंडे, शिवम बेंडे, विजय बेंडे, पवन जरिया, संजीव डाबे राव जी ये फरमाइशकर्ता जुड़ना चाह रहे हैं, और भी दोस्त इसी बीच इसी गीत के साथ जुड़ना चाह रहे हैं लोरमी चिचड़ी छत्तीसगढ़ से, कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा पुष्पराज, ऋषभ मरावी जी। सरगांव छत्तीसगढ़ से जुड़ना चाह रहे दीपेश वुना, पूनम ज्योति, शिवांश वर्मा। तो आइए साथियों, मनोरंजन करते हैं दोस्तों की फरमाइश के गीत के साथ में। गीत के बोल हैं कोई मिल गया।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है, मैं आपको बताना चाहूंगी। जुड़ना चाह रहे हमारे बीच में श्रोता साथी, फिल्म का नाम है धड़कन, गीत के बोल हैं तुम दिल की धड़कन में रहते हो। फरमाइश करता जुड़ना चाह रहे हैं दुलापुर उत्तर प्रदेश, मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, राजपाल पंकज, कादिल सिमा, मानवी तनवी, लख सोहिनी मोहिती, बलवीर सिंह जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं दोस्त तेलीवाला, दिलारी और धनोरी से भी, निशाद सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, अयान बाबू जी। गंजुडवारा से शमशुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अनु खान, उस्मान अंसारी, कलीम अंसारी जी। जज्जर हरियाणा से है बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया, मयंक भाटिया। तो आइए साथियों, सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं तुम दिल की धड़कन में रहते हो। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

0: देव बहुत हो गया, अब बंद भी करो मेरी तारीफ।
1: रहते हो बस तुम रहते हो।
2: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत टाप की रोड अकोला से आया है। फिल्म का नाम है हम तुम्हारे हैं सनम, गीत के बोल हैं सब कुछ भुला दिया। फरमाइश करता जुड़ना चाहे सुशीला देवी मंदुरकर, सदानंद मंदुरकर, कुमार गौरव मंदुरकर, यवतमाल से निशा, राजीव नागरिकर, नीलेश नागरिक, आरव अर्पिता जी। यवतमाल से हैं राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल मनवर, चेतन मनवर, रोशनी मनवर, प्रियांशी जी। महाराष्ट्र से जुड़ रहे हैं रुपेश सिंगे, महेश प्रिगेश, प्रीतेश सिंगे, पूरा संगे परिवार। और भी दोस्त हैं दुलापुर उत्तर प्रदेश से जुड़ना चाह रहे हैं मोहम्मद फरमान, सलमान, इरफान, इरकास, नरगिस खातून जी। तो आइए साथियों सुन लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के गीत को। गीत के बोल हैं सब कुछ भुला दिया। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर के साथ में।

दोस्तों, जैसा कि बहुत ही प्यारा सा गीत था, सब कुछ भुला दिया, इसी गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है मलयान सरजना मेरठ से। फिल्म का नाम है खलनायक, गीत के बोल हैं पालकी में हो के सवार चली रे। फरमाइशकर्ता जुड़ना चाह रहे हैं अनिल जैन, सैम जैन, मुस्कान मास्टर, जिवेम जैन, आदि जैन, अंश जैन, भव्य जैन, अंशिका जैन और भी हमारे दोस्त हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं। नाम बताना चाहूंगी, श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं बीड शहर महाराष्ट्र से नंद किशोर गटे, संगीता

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आई है, मैं आपको बताना चाहूँगी साथियों। फिल्म का नाम है गीत के बोल हैं, आपको बताना चाहूँगी पूछो जरा पूछो मुझे क्या हुआ है, और फिल्म का नाम है साथियों राजा हिंदुस्तानी। फरमाइशकर्ता जुड़ना चाह रहे लोरमी चिचड़ी छत्तीसगढ़ से कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा पुष्परा, ऋषभ मरावी जी। इसी बीच हमारे और भी साथी जुड़ना चाह रहे हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं। गंजू द्वारा से शमशुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अनु खान जी जुड़ना चाह रहे हैं। और भी श्रोता साथी जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाहते हैं, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश कुनेजा, पूनम अंगेजा, विशाल प्रिया, दिशानी निमित्त आहूजा जी, चोकोनाटी बुलंद शहर से हैं मोहम्मद सिद्धबासी, नगीत प्रवनाबासी, शनाबासी, सरफराज फरदीन, सुहनान अरजान, अब्बान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्यगण भी जुड़ रहे हैं। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के गीत को, गीत के बोल हैं पूछो जरा पूछो।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है, मैं आपको बताना चाहूंगी। फिल्म का नाम है वंस अपॉन अ टाइम। गीत के बोल हैं, तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। फरमाइशकर्ता जुड़ना चाह रहे हैं सहारनपुर से, जॉन टिकेस्टो, रोज टिकेस्टो, पल टिकेस्टो, वेज टिकेस्टो जी। और भी हमारे श्रोता साथी हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं, मैं आपको नाम बताना चाहूंगी। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से हैं उदयन पाल, जयहिंद पाल, दीक्षा, प्रतीक्षा, विमलेश पाल, दिव्यांश बघेल। नेहरू चौक पैटर्न से सुदेश यादव, अनिता जादव, आरती, पूजा प्रसाद यादव, सोनल यादव, बीबी सिया यादव। जलाना शहर से सोमनाथ, गीता, ओम सुभाष चंदन, एकनाथ यादव। रोहतक से हैं एकता कॉलोनी से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट, अंकित कांगड़ा जी। और भी हमारे साथी हैं राहुल नगर अमरावती से जुड़ना चाह रहे हैं सिद्धार्थ गुणाने, अर्चनाताई गुणाने, हीरामन शेने, परम प्रसिद्धि प्रतिभा गुणाने जी। और भी साथी जुड़ना चाह रहे हैं बेलतरा छत्तीसगढ़ से हैं बिलासपुर से गुणवंत श्रीवास, कुणाल श्रीवास, आयुश्रीवास, आयुषी श्रीवास, छत्तीसगढ़ से मोहन सिंह राज, अनिता राज, सुमू राज और मानस राज जी। कोरबा से लक्ष्मण सिंह ठाकुर, सावित्री देवी ठाकुर, कमल सिंह ठाकुर, अश्वर सिंह ठाकुर, मानुषनु, बबन, मनोहर, काना ठाकुर, हरिप्रिया जी। और भी दोस्त जुड़ना चाह रहे हैं इसी गीत के साथ में, आपको नाम बताना चाहूंगी। छत्तीस बिलासपुर से हैं छत्तीसगढ़ से छनुलाल श्रीवास, अनिता पुष्पा श्रीवास, अंजू योगिता श्रीवास, रंजन साहू, हेमंत नामदेव, धर्मदास वाधवानी जी। तो आइए साथियों सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल है, तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। आपको बताना चाहूंगी कि यही हमारे आज के कार्यक्रम आपकी फरमाइश का अंतिम गीत है। साथियों, आपसे हमारी फिर से मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में कुछ नई फरमाइश गीतों के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार और बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

तो साथियों, ये तो थी हमारी आज की सभा, जो कि अब यहीं समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि आज की इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। तो साथियों, आपको हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत कैसे लगे, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखे, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं साथियों, हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643 पर। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी अगली सभा में। तब तक के लिए दीजिए आज की इस सभा से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल।

शुभ संध्या श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM, आपका रेडियो आपकी आवाज, और मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर। साथियों, लेकर हाजिर हो चुकी हूं आज के इस शाम के सुहाने पल में हमारे आज के खास कार्यक्रमों की रूपरेखा। साथियों, दिन भर की भागदौड़ और जिम्मेदारी के बाद जब शाम ढलती है तो मन चाहता है कि थोड़ा सुकून, थोड़ा ज्ञान और थोड़ा मनोरंजन हो जाए, और इन सभी रंगों को लेकर आपके साथ है आपका अपना वागड़ रेडियो। तो साथियों, आइए जानते हैं आज की शाम के कार्यक्रमों के बारे में। सबसे पहले शाम 5 बजे शुरू होगा कार्यक्रम आराधना, भक्ति और आस्था से भरे सुरों को लेकर, जो मन को शांति देते हैं और आत्मा को सुकून। दिन भर की थकान को बुलाकर साथियों, ईश्वर के स्मरण के साथ इस खूबसूरत शाम की शुरुआत कीजिए। इसके बाद शाम 5:30 पर प्रस्तुत होगा कार्यक्रम युवाओं की आवाज, क्योंकि युवा ही भविष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। यह मंच है युवाओं के विचारों का, उनके सपनों का और उनके जज्बे का। साथियों, इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी आपकी अपनी रेडियो साथी कशिश पाराशर यानी कि मैं और जागृति भट्ट। आगे बढ़ते हुए इसे शाम 6 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम सच्चा बचपन, जो मासूमियत, मुस्कान और सपनों से भरा होता है। साथियों, इस कार्यक्रम में होंगी बचपन की कुछ सीखे, मीठी यादें। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी अंजलि पाराशर और कशिश पाराशर यानी कि मैं। इसके बाद दोस्तों, शाम 6:30 पर हम सुनेंगे कार्यक्रम खेतीबाड़ी, जो कि हमारे किसान भाइयों के लिए समर्पित कार्यक्रम है। इसमें आप जानेंगे खेती से जुड़ी तकनीक, मौसम की जानकारी और कृषि विशेषज्ञों की उपयोगी सलाह के बारे में। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी अंजलि पाराशर और उनके साथ होंगे जागृति भट्ट। इसके आगे दोस्तों, शाम 7 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम सच्चा स्वराज। साथियों, ये कार्यक्रम हमें हमारे समाज, देश और सच्चाई से जुड़ी उन बातों से रूबरू करवाता है, जो हमें जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रेरणा देते हैं। तो भूलिएगा नहीं, शाम 7 बजे कार्यक्रम सच्चा स्वराज। इसी के बाद दोस्तों, हम फिर से रुक करेंगे 7:30 पर और सुनेंगे कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। इस कार्यक्रम में आप जानेंगे डॉक्टरों की सलाह, योग से जुड़ी ढेर सारी बातें और बीमारियों से बचाव के तरीके। इस कार्यक्रम को लेकर आऊंगी मैं यानी कि आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर। तो जैसा कि साथियों, कार्यक्रम की रूपरेखा तो हम जान ही रहे हैं, इसी के बाद दोस्तों शुरू होगा हमारा विशेष प्रेरणादायक कार्यक्रम सपनों की उड़ान, जिसमें आप जानेंगे साथियों नए नए प्रेरणादायक विषयों के बारे में और हमारी सपनों की उड़ान के बारे में। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी और इसे आप सुन पाएंगे ठीक 8 बजे। इसी के बाद दोस्तों, अगला कार्यक्रम होगा मनोरंजक गीत कार्यक्रम। ये है साथियों पुराने और नए गीतों का ऐसा खूबसूरत संगम, जो आपके दिल को छू जाएगा और शाम को और भी यादगार बना देगा। और इसके बाद रात 9 बजे प्रस्तुत है हमारा खास कार्यक्रम शामे गजल, जहां गूंजेंगे दिल को छू लेने वाले अल्फाज, मधुर गजलें और सुकून भरे नगमे, जो इस सुहानी रात को और भी खास बना देंगे। तो साथियों, शाम की ये घड़ियां सिर्फ समय नहीं होती, बल्कि भावनाओं का एक खूबसूरत सफर होती है, जहां भक्ति का सुकून भी है, युवाओं के सपने भी हैं और बचपन की हंसी भी है, साथ ही किसान की मेहनत भी है और संगीत का वो जादू भी है जो आपके दिल को छू जाएगा। यही है हमारी शाम और यही है हमारा वागड़ रेडियो। तो आइए साथियों, अब शुरुआत करते हैं आज के पहले कार्यक्रम आराधना से। आप सुनते रहिए वागड़ रेडियो 90.8 FM।

0: आज के सुविचार।
1: मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता क्या होती है? सोचिए। धन, प्रेम, अहंकार। मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता होती है उसके रहस्य। चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, कितने भी प्रबल क्यों ना हो, परंतु उसके रहस्य उसके नाश की चाबी होती है। इसलिए यदि प्रबल रहना है, शक्तिशाली रहना है, समर्थ रहना है

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन। होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके। जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाईन बोनू, आ लक्षण आपने आपने मैं देखाए तो आपने आपने पाए वारा राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाइने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होवे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
4: देश के हर गरीब, हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
3: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आप सभी साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ साथियों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: लेकर हाजिर श्रोता साथियों कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातचीत का विषय रहने वाला है, आधे मन से जीने की आदत ने हमसे क्या छीन लिया है।
0: जी जी
1: श्रोताओं, कभी आपने गौर किया है, हम कई काम करते हैं तो लेकिन पूरे मन से नहीं। पढ़ाई कर रहे हैं तो मन मोबाइल में है, दोस्तों के साथ है तो दिमाग भविष्य की चिंता में है, परिवार के साथ बैठे हैं कशिश तो ध्यान किसी और जगह में है। हम मुस्कुराते हैं लेकिन मन कहीं और रहता है। हम सपने देखते हैं लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए पूरी ताकत नहीं लगाते, और यही है आधे मन से जीना। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जानेंगे कि आधे मन से जीने की आदत ने हमसे क्या क्या छीन लिया है।
0: जी हाँ जागृति जी, तो बातें ढेर सारी होंगी लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्यों ना साथियों को पहले यहाँ एक प्यारा सा गीत हम सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। और जैसा कि गीत से पहले विषय से अवगत करवाया था कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी आपसे बातचीत रहने वाली है, आधे मन से जीने की आदत ने हमसे क्या क्या छीन लिया है।
1: बिल्कुल।
0: तो कशिश, हमारे युवा साथियों को हम कहना चाहेंगे कि जिंदगी सिर्फ सांस लेने का नाम नहीं है, जिंदगी तो उस हर पल को पूरी शिद्दत से जीने का नाम है जिसे हम अक्सर कल के इंतजार में आज खो देते हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: श्रोताओं, कभी आपने गौर किया है कि हम कई काम करते हैं लेकिन पूरे मन से नहीं करते। आधे मन से जीना मतलब ये नहीं कि इंसान मेहनत नहीं करता, बल्कि इसका अर्थ है कशिश कि हमारी मौजूदगी कहीं और, हमारा मन कहीं और है। हम अपने वर्तमान को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाते और भविष्य की चिंता या अतीत की यादों में उलझे रहते हैं।
1: बिल्कुल जागृति जी, ऐसे में सवाल ये होता है युवा साथियों कि आधे मन से जीने की शुरुआत होती कहाँ से है।
0: बिल्कुल।
1: अक्सर इसकी शुरुआत आपको बताएं तो छोटी छोटी चीजों में होती है, जैसे कि अभी मन नहीं है इस काम को करने का, कल से शुरू करूंगा या करूंगी, देखते हैं आगे क्या होता है, मुझसे नहीं होगा, दूसरे लोग मुझसे बेहतर है। जागृति जी, ये ऐसी कुछ छोटी मोटी बातें होती है जिससे हम कह सकते हैं कि आधे मन से जीने की शुरुआत होती है।
0: जी हाँ।
1: श्रोता साथियों, धीरे धीरे यही सोच हमारी आदत बन जाती है। हम किसी काम को इसलिए नहीं करते क्योंकि उसमें हमारी रुचि नहीं है।
0: बिल्कुल।
1: किसी अवसर को इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि असफलता का डर होता है। और किसी रिश्ते को इसलिए समय नहीं देते क्योंकि हमें लगता है कि सामने वाला तो समझ ही जाएगा। लेकिन युवा साथियों, जिंदगी हमेशा दूसरा मौका दे ये जरूरी नहीं है।
0: बिल्कुल कशिश, क्योंकि इस आदत ने हमसे सबसे पहले हमारा वर्तमान ही छीन लिया है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि जब नौकरी लग जाएगी तब हम खुश हो जाएंगे, जब अच्छे नंबर आएंगे तब हम खुश हो जाएंगे, जब पैसा होगा तब हम घूमने जाएंगे, जब सब ठीक हो जाएगा तब चैन से बैठ जाएंगे, और इसी जब के इंतजार में हमारा आज निकल जाता है।
1: बिल्कुल।
0: साथियों, युवा जीवन का सबसे खूबसूरत समय भविष्य बनाने में लगना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वर्तमान को जीना ही हम भूल जाए। मेहनत और खुशी एक दूसरे के विरोधी नहीं है। पढ़ाई करते हुए भी दोस्तों के साथ हंसा जा सकता है, करियर बनाते हुए भी परिवार को समय दिया जा सकता है, और संघर्ष के बीच भी छोटी छोटी खुशियों को महसूस किया जा सकता है।
1: जी हाँ जागृति जी, हम देखते हैं कि हर युवा के भीतर कोई ना कोई सपना जरूर होता है। कोई कलाकार बनना चाहता है तो कोई शिक्षक, कोई खिलाड़ी तो कोई उद्यमी साथियों, कोई अधिकारी तो कोई अपने गांव और समाज के लिए कुछ करना चाहता है। लेकिन सपना देखने और सपने के लिए कदम उठाने में अंतर होता है दोस्तों।
0: बिल्कुल।
1: कई बार हम शुरुआत ही नहीं करते क्योंकि मन में सवाल आते रहते हैं कि अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा। लेकिन सवाल ये नहीं होना चाहिए कि अगर मैंने कोशिश नहीं की तो क्या होगा।
0: जी हाँ।
1: असफलता हमें रोकने के लिए नहीं बल्कि हमें बेहतर बनाने के लिए भी एक अनुभव बन सकती है साथियों।
0: बिल्कुल।
1: इसलिए हमारे युवाओं को अपने सपनों को केवल सोचने की नहीं बल्कि उनके लिए छोटे छोटे कदम उठाने की भी आदत डालनी चाहिए जागृति जी।
0: जी हाँ कशिश, और इस आदत ने रिश्तों से भी बहुत कुछ छीन लिया है। हम देखते हैं कि आज हम डिजिटल रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन कई बार भावनात्मक रूप से दूर होते जा रहे हैं। घर में परिवार के साथ बैठे हैं लेकिन हर हाथ में मोबाइल है। दोस्त सामने बैठे हुए लेकिन बातचीत के बीच बार बार स्क्रीन देखी जा रही है।
1: जी जी।
0: रिश्तों को केवल हमारी मौजूदगी नहीं, हमारा ध्यान चाहिए श्रोताओं। किसी अपने की बात को सच में सुनना, किसी परेशान दोस्त से पूछ लेना कि तुम ठीक हो, माता पिता के साथ कुछ समय बैठना, ये छोटी चीजें लग सकती है श्रोताओं, लेकिन रिश्तों को मजबूत बनाने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है।
1: बिल्कुल।
0: आधे मन से जीने में हमारी खुशियाँ भी कम करती है। कई बार कशिश, हमारे पास खुश होने के बहुत सारे कारण होते हैं लेकिन हमारा ध्यान उन चीजों पर रहता है जो हमारे पास नहीं है।
1: बिल्कुल।
0: दूसरों की सफलता देखकर हम अपनी उपलब्धियों को छोटा समझने लगते हैं। सोशल मीडिया पर किसी की जिंदगी देखकर हमें लगता है कि सबकी जिंदगी बेहतर है और हमारी अच्छी नहीं है।
1: बिल्कुल जागृति जी, और ये समस्या आज वर्तमान में काफी प्रचलन में है। तो इस विषय को लेकर जैसा कि हमारी बातें चल रही है कि आधे मन से जीने की आदत ने हमसे बहुत कुछ छीन लिया है।
0: बिल्कुल।
1: तो कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें हैं जो आगे कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं से हमारी बनी रहेंगी। लेकिन अभी क्यों ना हमारे साथियों को यहाँ पर एक और प्यारा सा गीत हम सुनवाएं।
0: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन लेते हैं यह गीत।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि बातचीत का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा आपसे चल रहा है कि वर्तमान में जो आधे मन से जीने की हमारी आदत है उसने हमारा बहुत कुछ छीन लिया है। जैसा कि गीत से पहले हम जान पाए थे जागृति जी कि इस आदत ने हमारे रिश्तों को हमसे छीन लिया है, खुशियां कम कर दी है, और साथ ही हमने ये भी जाना था कि किस प्रकार से आधे मन से जीने से हमारे सपनों को साहस नहीं मिल पाता। अब यही अगर बात करें श्रोता साथियों, तो आपसे कहना चाहेंगे कि पूरे मन से जीना आखिर होता क्या है। तो आपको बताना चाहेंगे कि पूरे मन से जीने का मतलब ये नहीं है कि हर समय खुश रहना है। पूरे मन से जीने का मतलब होता है जागृति जी कि हम पढ़े तो मन लगा कर पढ़े, परिवार के साथ बैठे हो तो सच में उनके साथ रहे, जब दोस्त से बात करे तो उनकी बात सुने, और जब कोई सपना देखे तो उसके लिए प्रयास करते रहे साथियों।
1: जी हाँ,
0: जब कोई गलती हो जाए तो उससे सीखने का प्रयास करे, और जब मुश्किल समय आए तो खुद को थोड़ा समय दे। दोस्तों, पूरे मन से जीना मतलब अपनी जिंदगी में अपनी मौजूदगी महसूस करना होता है।
1: बिल्कुल कशिश, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम एक सवाल पूछना चाहेंगे। श्रोता साथियों, आप खुद से पूछिए कि अगर मैं इसी तरह आधे मन से जिंदगी जीता रहा तो 5 साल बाद में कहाँ खड़ा रहूंगा।
0: बिल्कुल,
1: ये सवाल डराने के लिए नहीं है, ये हमें जगाने के लिए है। क्योंकि कशिश, जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या हमेशा ये नहीं होती कि हमारे पास समय कम है।
0: बिल्कुल,
1: कई बार समस्या ये होती है कि हमारे पास समय होते हुए भी हम उसे पूरी तरह जी नहीं पाते हैं। तो शुरुआत कैसे करें, ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्रश्न है।
0: जी जी,
1: बहुत बड़े बदलाव की जरूरत नहीं श्रोताओं, हर दिन एक काम ऐसा कीजिए जिसे आप पूरे मन से करना चाहते हैं। मोबाइल से थोड़ा समय निकाल कर किसी अपने से बात कीजिए, अपने लक्ष्य को लिखिए और उसके लिए एक छोटा सा कदम उठाइए। अपने मन की बात को दबाने के बजाय किसी भरोसेमंद व्यक्ति से साझा कीजिए, और सबसे जरूरी बात यह है कि आप अपने जीवन को दूसरों की नजर से नहीं, अपनी समझ और अपने मूल्यों से देखना सीख जाइए।
0: बिल्कुल,
1: याद रखिए, हर दिन परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, कुछ दिन अच्छे होंगे, कुछ मुश्किल होंगे, लेकिन हर दिन खुद से जुड़े रहना बहुत जरूरी है।
0: जी हाँ जागृति जी, साथियों जिंदगी कोई रिहर्सल नहीं है, बल्कि असली जिंदगी बाद में शुरू होती है, और यही पल आपकी जिंदगी का एक हिस्सा है। इसलिए अपने सपनों को आधे मन से मत देखिए, अपने रिश्तों को आधे मन से मत निभाइए युवा साथियों, अपने मेहनत को आधे मन से मत कीजिए, और सबसे बढ़कर खुद को आधे मन से मत जिए। क्योंकि जब हम आधे मन से जीते हैं तो धीरे धीरे सिर्फ समय नहीं खोते, बल्कि हम अवसर, रिश्ते, आत्मविश्वास, खुशियां और अपने सपनों की उड़ान भी खो सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: ऐसे में आप आज से ही छोटा सा संकल्प लीजिए कि मैं हर दिन को परफेक्ट बनाने की कोशिश नहीं करूंगा या करूंगी, लेकिन जिस पल में रहेंगे उसमें पूरी तरह मौजूद रहेंगे। मैं अपने सपनों के लिए कदम उठाऊंगा या उठाऊंगी, अपने रिश्तों को समय देंगे और अपने जिंदगी को आधे मन से नहीं बल्कि पूरे दिल पूरी ईमानदारी से जीने की कोशिश करेंगे।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। तो हमारे श्रोता साथियों को इस कार्यक्रम के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि श्रोताओं, सवाल ये नहीं है कि हमारे जीवन में कितने अवसर आए, बल्कि सवाल ये है कि हमने उन अवसरों को कितने पूरे मन से जिया। आधे मन से किया गया काम हमें केवल परिणाम से नहीं बल्कि अपने भीतर छिपी संभावनाओं से भी दूर कर देता है। हमने कई बार असफलता के डर से कदम रोक लिए, लोगों की बातों के डर से अपनी आवाज दबा दी, और सुविधाओं के कारण अपने सपनों को टालते रहे।
0: जी हाँ,
1: धीरे धीरे यही आदत हमारे जीवन का हिस्सा बन गई। लेकिन जीवन हमें हर दिन एक नया अवसर देता है कशिश, पूरे मन से शुरुआत करने के लिए। जरूरी नहीं है श्रोताओं कि हम हर काम में सफल हो, लेकिन जरूरी ये है कि जब कोई भी काम करें तो अपनी पूरी नीयत, अपनी मेहनत और विश्वास के साथ करें। क्योंकि अधूरे मन से जिया गया जीवन केवल अधूरे काम छोड़ता है, जबकि पूरे मन से जिया गया जीवन अनुभव, आत्मविश्वास और संतोष देता है।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए आप आज से ही खुद से एक वादा कीजिए कि जो करेंगे पूरे मन से करेंगे, जो सीखेंगे पूरे समर्पण से सीखेंगे, और जो जीवन में मिला है उसे आधे मन से नहीं पूरी जागरूकता और पूरी ऊर्जा के साथ जिएंगे।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि जिंदगी लंबी हो ये हमारे हाथ में नहीं, लेकिन जिंदगी को पूरे मन से जीना हमारे हाथ में जरूर है। आधा मन हमें केवल समय बिताना सिखाता है, जबकि पूरा मन हमें जीवन जीना सिखाता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो इस तरीके से जैसा कि आज के इस कार्यक्रम में युवा साथियों से हमारी बातें ढेर सारी हो चुकी हैं।
1: बिल्कुल,
0: और हम जान पाएंगे किस प्रकार से हमें अपनी जिंदगी को, अपने जीवन को आधे मन से नहीं बल्कि पूरी निष्ठा से और पूरे मन से जीना चाहिए। बातें जैसा कि ढेर सारी हो चुकी है और समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का, तो विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना हमारे श्रोता साथियों को यहाँ पर कार्यक्रम का अंतिम गीत हम सुनवाएं।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन लेते हैं यह गीत।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से जो भी बातें रही वो बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों, फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को। नमस्कार।

0: पप्पा पप्पा मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है।
1: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा। होवे न कोई गरीबी रोके न कोई हालात रोके, शिक्षा तक इस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
0: हिंडो स्कूल जा आपड़े, आपड़ा भी अपना पूरा करो।
1: याद रखिए, कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
2: होवे जयवरे सब सोरा भणेगा तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा।
1: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
3: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: सेहत नु राज हूँ है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की परबात में शुरुआत पानी तकी करो, थोड़ू सू व्यायाम ने तात्काली ने जीवन जीवा, फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा, जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह।
1: होवे सेहत है असली धन आपरू, आज जीवन नो सहारो है। आज थकीस आ राज ने अपना वंगा ने जीवन ने स्वस्थ बनावंगा।
4: होवे स्वस्थ रो खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नो असली राज।
3: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

नमस्कार श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM पर। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर। हाजिर हो गई हूं साथियों कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। श्रोता साथियों, आज हमारी कार्यक्रम में आपसे बातचीत का विषय है आदर्श टिफिन कैसा हो। जी हाँ, बच्चों का स्कूल बैग हो या किताबें, उनके साथ एक चीज रोज जाती है, वो है टिफिन। देखने में छोटा सा टिफिन, लेकिन बच्चे की सेहत, ऊर्जा, पढ़ाई और पूरे दिन के उत्साह में इसकी भूमिका बहुत बड़ी होती है। अक्सर माता पिता की चिंता होती है कि आज टिफिन में क्या दें। बच्चा रोज एक ही चीज खाने से मना करता है, सब्जियां पसंद नहीं करता, फल घर पर छोड़ देता है और पैकेट वाले स्नैक्स देकर खुश हो जाता है। ऐसे में श्रोता साथियों, सवाल है कि टिफिन स्वादिष्ट भी हो, पौष्टिक भी हो और बच्चों को पसंद भी आए तो कैसे। आज इसी विषय पर हम बात करेंगे कि आदर्श टिफिन कैसा हो। तो आइए जानते हैं कुछ आसान से काम की बातों को। लेकिन उससे पहले क्यों ना हम हमारे श्रोता साथियों को एक प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन करवा दें। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागर रेडियो 90.8 FM पर।

साथियों, इस गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करना चाहती हूँ कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि मैंने आपको गीत से पहले विषय से रूबरू कराया था कि आज हम बात करने वाले हैं आदर्श टिफिन कैसा हो, तो इस

0: और मैं बच्चों की सोशल प्रॉब्लम्स, खाने पीने की प्रॉब्लम्स, बच्चों की स्कूली समस्याएं, इसमें विशेष रुचि रखता हूं। और इसमें हम गांवों तक और पेरिफेरी तक, आदिवासियों तक हम जाते हैं और इन समस्याओं को सुलझाते हैं, और पर्टिकुलरली हम सरकारी स्कूलों में ज्यादा जाते हैं।
1: बिल्कुल। तो सर, जैसा कि आपने आपका परिचय हमें बताया और आज हमारे कार्यक्रम में बातचीत का विषय भी बच्चों के खान पान से जुड़ा हुआ ही है, तो सर आप सबसे पहले हमें यही बताइए कि बच्चों के लिए एक आदर्श टिफिन कैसा होना चाहिए।
0: बच्चों के लिए आदर्श टिफिन जो होता है उम्र के हिसाब से होता है और एज के हिसाब से होता है, और एज के हिसाब से उनका जो टिफिन हम भेजते हैं उसके तीन क्राइटेरिया होते हैं। उसमें एक तो वो टिफिन नीट एंड क्लीन होना चाहिए, उसमें जो भी खाने का पदार्थ हम रखें वो फ्रेश होना चाहिए। नंबर टू, वो फिलिंग होना चाहिए कि जिससे पेट भर जाए बच्चे का। और नंबर तीन, उसमें न्यूट्रिशियस वैल्यू भी होनी चाहिए, जो बच्चे को न्यूट्रिशन मिले, जिससे एनर्जी मिले, कैलोरीज मिले।
1: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। जैसा कि आपने हमें बताया कि बच्चों के लिए एक आदर्श टिफिन कैसा होना चाहिए, यही सर बच्चे के टिफिन में किन किन पोषक तत्वों का शामिल होना बहुत जरूरी है।
0: देखिए, इसमें पोषक तत्व बहुत सारे होते हैं, लेकिन इनको मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ। इसमें एक तो प्रोटीन होना बहुत जरूरी है, एक उसमें फैट भी होना बहुत जरूरी है, फैट मीन वसा, और एक मिनरल्स होने चाहिए, और एक विटामिन, और जो ट्रेस एलिमेंट्स हैं जो बहुत कम मिलते हैं वो भी खाने में पूर्ति करने के लिए होने चाहिए।
1: बिल्कुल। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि बच्चों के टिफिन में कई पोषक तत्व ऐसे जरूरी हैं जो होने चाहिए, यही सर क्या टिफिन में केवल पेट भरने वाले भोजन पर्याप्त है या उसमें पोषण का संतुलन भी जरूरी है?
0: पेट भरने वाला भी होना चाहिए और पोषण का संतुलन भी होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि पेट तो हम जैसे कोई मिठाई ज्यादा खा लेगा, कोई पर्टिकुलर फूड ज्यादा खा लेगा, लेकिन उससे न्यूट्रिशन एक ही एक तरह का मिलेगा, पूरा जनरल और बैलेंस न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। तो न्यूट्रिशन के लिए डाइट बैलेंस होनी चाहिए, और पेट भरने के साथ साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि सब चीजें बैलेंस रूप से, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी जा रहे हैं, उसमें प्रोटीन भी जा रहे हैं, उसमें फैट भी जा रहे हैं, उसमें मिनरल्स भी जा रहे हैं, ट्रेस एलिमेंट्स भी जा रहे हैं, मल्टीविटामिन भी जा रहे हैं। तो ये सब चीजें ध्यान रख के हमें भोजन का कंपोजिशन जो हम बच्चे को खिलाते हैं उसमें होना चाहिए।
1: बिल्कुल सर, जैसा कि आप हमें बहुत अच्छी जानकारी से अवगत करवा रहे हैं, यही अब मैं जानना चाहूंगी कि बच्चे की उम्र के अनुसार उनके टिफिन में क्या क्या परिवर्तन किए जा सकते हैं।
0: देखिए, बच्चा जब छोटा होता है तो 1 से 5 साल तक शैतानी बच्चा ज्यादा करता है।
1: बिल्कुल।
0: तो उनके थोड़े से क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट ज्यादा रखे जाने चाहिए ताकि उनको एनर्जी मिलती रहे। थोड़ा हल्का सा मीठा उसमें होता है, कुछ जैसे चावल होते हैं, इस तरह आलू होते हैं, जैसे स्टार्च कार्बोहाइड्रेट जिसमें ज्यादा होते हैं वो हमें रखना चाहिए। अच्छा, और साथ में प्रोटीन की डाइट भी होनी चाहिए क्योंकि उनको प्रोटीन भी जरूरी होता है, और फैट उनके लिमिटेड रखना चाहिए क्योंकि फैट भी उनको ग्रोइंग चाइल्ड होते हैं तो फैट की भी जरूरत होती है। लेकिन चूंकि एक्टिविटीज इन बच्चों की ज्यादा होती है तो इसमें कार्बोहाइड्रेट और कैलोरी जिससे ज्यादा मिले वो हमें खान पान रखना चाहिए। फिर बच्चे थोड़े बड़े होते हैं, थोड़े पढ़ने वाले हो जाते हैं, तो बच्चे स्पोर्ट्स ज्यादा खेल रहे हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा दें, और जो बच्चे एक्सरसाइज ज्यादा करते हैं, बच्चे बड़े होने के बाद 10-12 साल के बच्चे एक्सरसाइज भी करते हैं, साइकिलिंग भी करते हैं और खेलते भी हैं, कूदते भी हैं, कोई बैडमिंटन खेल रहा है, बास्केटबॉल खेलते हैं, इनके लिए हमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन भी इनके लिए बहुत जरूरी होता है। तो इनको प्रोटीन की डाइट में नापे और डॉक्टर से राय ले लेंगे कितना प्रोटीन देना है पर डे और किस डाइट में ज्यादा होता है, तो वो इतना प्रोटीन इन बच्चों को दिया जाए।
1: बिल्कुल सर।
0: और वो प्रोटीन कई रूपों में दिया जा सकता है, तो वो अलग अलग डाइट जिसकी जैसी घर का रहन सहन होता है, जैसा सेटअप होता है, जैसा रिलीजियस सोशल कस्टम्स के हिसाब से प्रोटीन डाइट देनी चाहिए।
1: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। जैसा कि आप हमें बता रहे हैं कि उम्र के अनुसार बच्चों के खान पान में प्रोटीन और अन्य जो पोषक तत्व हैं उनकी चीजें अलग अलग होनी चाहिए, यही सर रोजाना एक ही तरह का टिफिन बच्चों के लिए हम देखते हैं कि ठीक नहीं होता है। अलग अलग तरह के भोजन बच्चों के खाने में हम कैसे शामिल कर सकते हैं?
0: इसमें निश्चित रूप से है कि एक ही एक तरह का भोजन बेचेंगे तो बच्चे को बोरियत लगेगी, खाना अच्छा भी नहीं लगेगा। तो वैरायटी ऑफ फूड्स कई बार रखना चाहिए, और कभी उनको प्रोटीन के रूप में, फैट के रूप में, कार्बोहाइड्रेट के रूप में डिफरेंट डिफरेंट डाइट्स होती हैं। तो कभी चावल रख दिए, कभी चपाती रख दी, कभी खिचड़ी रख दी, कभी दलिया रख दिया। और मेरी तो पर्सनल राय है कि कभी कभी सरप्राइज के रूप में उनके टिफिन में हफ्ते में एक बार कभी स्नैक्स भी रख दिए जाए, और वो कभी कभी बाजार के बने हुए हों तो उनके लिए एक सरप्राइज होता है और उनका एंथुसियाज्म बढ़ जाता है इससे खाने पीने में। तो उनके लिए ये भी अगर कर दिया जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो इस तरह वैरायटी ऑफ फूड और टेस्ट चेंज भी करें, और उनको थोड़ा सा प्रफुल्लित रखने के लिए बीच बीच में हफ्ते में एक बार अगर स्नैक भी रख देंगे, स्नैक्स जो बाजार के आते हैं जो बच्चे पसंद करते हैं थोड़ी सी,

0: चिप्स डाल दिए, कभी बिस्किट्स रख दिए, तो बच्चे बहुत उनको अच्छा लगेगा कि हमें खान पान में इस तरह की चीजें भी मिल रही हैं और उनका खाने के प्रति रुचि बनी रही।
1: बिल्कुल सर, आपने सही कहा, क्योंकि हम देखते हैं कि बच्चों को अगर हम हमेशा पौष्टिक चीजें ही दें तो उनका मन उससे उब सकता है, लेकिन पौष्टिक चीजों के साथ साथ कभी हम अलग अलग तरीके की चीजें शामिल करेंगे तो बच्चों की खाने में रुचि भी रहेगी और बच्चे मन लगाकर अच्छे से खाना भी खाएंगे। यही सर हम देखते हैं कि बिस्किट, चिप्स और अलग अलग प्रकार के जो स्नैक्स हैं उन्हें कम बच्चों को दिया जाना बहुत जरूरी है, तो उसका क्या कारण है और उसके क्या फायदे हैं?
0: उसके फायदे न दिए जाने के तो फायदे ही फायदे हैं, और कारण इसके ये होते हैं कि एक तो ये क्या होता है कि ये पैक्ड होती है चीजें, तो जो चीजें पैक्ड होती हैं ये कब पैक हुई, बहुत लंबे टाइम से पैक हो जाती हैं, फिर बाजार में आती हैं, फिर बिकती हैं, फिर इनकी डेट लिख दी जाती है, तो ये इतने टाइम पड़ी पड़ी इनका डिजेनरेशन शुरू हो जाता है, डिजेनरेशन से थोड़ी थोड़ी टॉक्सिक हो जाती है कई बार। फिर इनमें सब में प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो शरीर के लिए ठीक नहीं होते, किसी में फर्स्ट क्लास प्रिजर्वेटिव होते हैं, किसी में सेकंड क्लास प्रिजर्वेटिव होते हैं, तो ये हेल्थ के लिए ठीक नहीं होते। फिर इनका ऑयल और जो फैट होता है वो डिजेनरेट हो जाता है, जैसे क्रीम बिस्किट्स होते हैं उनकी क्रीम खराब होनी शुरू हो जाती है, और बिस्किट्स का जो ग्लूकोज और उसमें जो फैट मिलाया जाता है वो डिजेनरेट होना शुरू हो जाता है। तो ये कुल मिला के टेस्ट के लिए बच्चों को कभी कभार दे दिए जाए, लेकिन रूटीन इनका ना बनाए, क्योंकि रूटीन बनाने में ये हेल्थ के लिए घातक होते हैं। और टेस्ट चेंज के लिए कभी कभी बच्चों को दे दिए जाए ताकि बच्चों का मूड एलिवेट रहे और उनको टेस्ट चलता रहे, लेकिन ये एज सच रूटीन बनाना है और रोज देना और इसको डाइट का सब्स्टिट्यूट मानना गलत है।
1: बिल्कुल सर, जैसा कि आपने बताया कि किस तरीके से हमें बच्चों के खाने में बिस्किट, स्नैक्स और पैकेट वाली चिप्स वाली चीजों को कम शामिल करना चाहिए, और हो सके तब तक हमें बच्चों को ये चीजें नहीं देनी है। नहीं सर, टिफिन में फल किस तरह और कितनी मात्रा में हम शामिल कर सकते हैं?
0: देखिए, फ्रूट्स बच्चों को सप्लीमेंट के तरह देने चाहिए, जैसे हम बड़े लोग हैं, जैसे हम खाना खाते हैं तो हम जैसे सप्लीमेंट के रूप में मिठाई खाते हैं, लास्ट में थोड़ी सी मिठाई खा लिया, पापड़ खा लिया, वैसे ही बच्चों को फ्रूट्स देने चाहिए, क्योंकि फुली अगर बच्चों को फ्रूट्स देंगे तो वो पेट उनका भर जाएगा और वो खाना कम खाएंगे, तो न्यूट्रिशन लेवल जो फ्रूट से मिलता है वो बच्चों को फलों से नहीं मिल पाएगा और बच्चों का पेट भर जाएगा। तो ये फ्रूट्स कंप्लीट डाइट नहीं होते, लेकिन इनमें कुछ मिनरल्स और कुछ ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं, तो सप्लीमेंट के थ्रू पे देंगे तो इनकी फिलिंग भी होती रहेगी, इनकी पूर्ति भी होती रहेगी और बच्चों की भूख भी नहीं मरेगी।
1: बिल्कुल सर, यही अब मैं जानना चाहूंगी कि बच्चों को रोज मीठा देना जरूरी है, और अगर नहीं तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें बच्चों को देनी चाहिए?
0: देखिए, ऐसा है कि मीठा जो होता है वो जरूरी तो होता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा कभी ना दिया जाए। जैसे कुछ चीजें होती हैं जो चीनी या गुड़ के बिना बच्चों को नहीं लगेंगी, जैसे हलवा बनेगा, खीर बनेगी, तो उसमें तो मिठास हमको डालनी ही पड़ती है।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन अननेसेसरली दूध में भी मीठा दे रहे हैं, दही में भी मीठा मिला रहे हैं, हर जगह मीठा दे रहे हैं, वो नहीं देना चाहिए। और कुछ नेचुरल चीजें होती हैं जब बच्चे खाएंगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे केला खा रहे हैं, एप्पल खा रहे हैं, अनार खा रहे हैं, उनमें जो मिठास होती है वो नेचुरल शुगर्स होती हैं, तो वो अगर दे दी जाए तो बच्चे को उससे नुकसान नहीं होता, फायदा ही होता है। तो शुगर देनी है लेकिन एक्सेसिवली नहीं देनी, रूटीन में जो जहाँ कंपलसरी है और जहाँ जरूरत है और जहाँ बिना चीनी के काम नहीं चलेगा, जिन प्रिपरेशन में, वो प्रिपरेशन चीनी वाली ही देनी पड़ेगी।
1: बिल्कुल सर, तो जैसा कि आपने हमें बताया कि बच्चों को मीठा कितनी मात्रा में देने की जरूरत है, यही सर मैं अब पानी के बारे में जानना चाहूंगी कि बच्चों को पानी कितनी मात्रा में पीना है, और साथ ही जो स्कूल जाते हैं, गर्मियों में खेलकूद जो बच्चे करते हैं, उनके लिए पानी की चीजें कैसे बदलती हैं?
0: देखिए, ऐसा होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जो स्कूल गोइंग होते हैं, जो 2 से 5 साल तक के होते हैं, नॉर्मली आजकल हमारे यहाँ 2 साल 3 साल के बच्चे को स्कूल भेजना शुरू कर देते हैं, तो इन बच्चों को 1.5 लीटर 2 लीटर पानी करीबन दे देना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: और जो बड़े बच्चे हो जाते हैं, जो एक्टिविटी ज्यादा करते हैं और स्कूल में खेलते 5 से 10 साल के लिए, उनको 2.5 लीटर के करीब, और जो 10 साल से ऊपर के बच्चे होते हैं, जो एडोलेसेंट हो जाते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करते हैं, उनको 3-3.5 लीटर भी पी ले, और स्पोर्ट्स के दौरान भी एक्सेसिवली वाटर पिए तो ठीक रहता है।
1: बिल्कुल सर, तो जैसा कि आपने पानी की मात्रा बताई और यही हम टिफिन को लेकर बच्चों की बात कर रहे हैं, तो कम समय में बनने वाले कौन से ऐसे पौष्टिक खाद्य पदार्थ हैं जो बच्चों को टिफिन में दिए जा सकते हैं?
0: फॉर एग्जाम्पल, जैसे घरों में हम जो नाश्ते में चीजें बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल पोहे बनाते हैं, चीले बनाते हैं, सूजी के चीले बनते हैं, बेसन के चीले बनते हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो इस तरह की जो तले हुए आलू होते हैं, अच्छा कम ऑयल में तले जाए, कम ऑयल में फ्राई की जाए, और जब इनको प्रिपरेशन बन जाती है तो इनका ऑयल निकाल लिया जाए, तो इस तरह की चीजें जो होती हैं जिनको ये होम फास्ट फूड बोलते हैं, बाजार के तो अलग फास्ट फूड होते हैं, यहाँ होम में बने हुए अलग होते हैं, तो इस तरह की चीजें हम अर्जेंट अगर कभी बनानी हो तो इस तरह की चीजें रख के दे सकते हैं, तो बच्चों का टेस्ट भी चेंज हो जाएगा और बच्चे खुश भी होंगे इस तरह का फूड देख के, तो ये इस तरह के फूड बीच बीच में रखे जा सकते हैं।
1: बिल्कुल, लेकिन सर हम देखते हैं कि बहुत सी बार बच्चे जो हैं खाने और सब्जियों और फल को लेकर मना कर देते हैं कि हमें नहीं खाना है, तो माता पिता किस तरीके से बच्चों को इन सारी चीजों को लेकर प्रोत्साहित कर सकते हैं?
0: प्रोत्साहित करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बच्चों को मोटिवेट करें पहले तो। अच्छा, एक लिमिटेड लेवल तक कराए। कई पेरेंट्स क्या होते हैं, सुबह से शाम तक बच्चे के पीछे पड़ जाते हैं कि तेरे को फ्रूट्स खाने, तो उसको लगता है पता नहीं मुझे क्यों खिलाना चाहते हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो वो बच्चा जिस चीज का ज्यादा जोर दो तो उससे दूर होता जाता है। तो मेरे पास जब बच्चे आते हैं तो मैं उनको, पेरेंट्स को ये कहता हूँ कि आप इनको जब बिस्किट्स वगैरह या चिप्स वगैरह रख के देते तब साथ में फ्रूट्स डालते हैं, और इनको कहें जब ये फ्रूट्स खाओगे तब ये चिप्स वगैरह मिला करेगी। तो वो फास्ट फूड के चक्कर में, चिप्स के चक्कर में, बिस्किट जब हम हफ्ते में एक आध बार रखेंगे, और या पोहे रखेंगे या इडली रखेंगे या चीले रखेंगे, तो बच्चे इनके लालच में कि ये खाना रखेंगे पेरेंट्स, तो फ्रूट्स खा लेते हैं। मेरा ऑब्जर्वेशन, और ये सक्सेसफुल टेक्निक है अगर इसको लागू किया जा सकता है पेरेंट्स को।
1: बिल्कुल, तो जैसा कि सर आपने बहुत अच्छी तरीका माता पिता को बताया है, यही मैं जानना चाहूंगी कि बच्चों को टिफिन पूरा खत्म करने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए या भूख के अनुसार ही बच्चे को खाने देना चाहिए?
0: नहीं, फूड टू फूड वेरी करता है। कई बार बच्चों को टेस्ट अच्छा नहीं लगता है तो बच्चे खाना छोड़ के ले आते हैं, तो हमें ये ऑब्जर्व करना है कौन सा खाना छोड़ रहे हैं कौन सा नहीं छोड़ रहे हैं, और उस प्रिपरेशन को दो तीन तरह से पहले जब घर में खाना खिलाते हैं बना के देखा जाए, और वो प्रिपरेशन उनको, जैसे पोलिया की सब्जी है मसाले में अच्छी लग रही है, रॉ अच्छी लग रही है, तो वो देख के उस हिसाब से दिया जाना चाहिए। जब लगता है कि इस तरह की प्रिपरेशन, ये तली हुई घिया खा लेंगे या रस्से वाली घिया खा लेंगे, तो इस तरह की दिए जाए, क्योंकि उनको हो सकता है कि सूखी घिया अच्छी नहीं लग रही हो, या तो इस तरह से टेस्ट वेरी किया जा सकता है प्रिपरेशन को चेंज करके।
1: बिल्कुल, और अगर सर बच्चा टिफिन रोज वापस घर लेकर आता है तो माता पिता क्या करें?
0: उसको देखे कि साइकोलॉजिकली उसको डाइवर्जन तो नहीं हो रहे हैं। कई बच्चे जैसे ज्यादा मोबाइल देखते हैं, तो आजकल मोबाइल के प्रचलन के चक्कर में हायर इनकम नहीं, लोअर सोशल इकोनॉमिक नहीं, पुअर लोग भी मोबाइल बच्चे देखते रहते हैं, तो उनसे इनका थोड़ा सा डाइवर्जन हो जाता है, ब्रेन में थोड़ा सा क्या है न्यूरोट्रांसमीटर्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो इनको पता नहीं लगता कब भूख लग रही है कब लग रही है, एपेटाइट छोड़ देते हैं, एंग्जाइटी हो जाती है, स्ट्रेस हो जाता है। तो इन सब चीजों को नोट करें, अगर इनमें से कोई चीज निकलती है तो उसको दूर करने की कोशिश करें।
1: बिल्कुल सर, तो जैसा कि आप बहुत अच्छी जानकारी हमें दे रहे हैं, तो यही अब मैं जानना चाहूंगी कि बच्चे के टिफिन में हम स्थानीय सब्जियां और फल शामिल करते हैं तो उसके क्या फायदे हैं?
0: सब्जियों में देखिए मल्टीविटामिन्स होते हैं, इनमें मिनरल्स होते हैं जैसे मैग्नीज, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब चीजें होती हैं। इनमें ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं जैसे कॉपर, जिंक, जैसे मटर की सब्जी उसमें कॉपर खूब होता है, सर्दी सर्दी हम खाते तो कॉपर बॉडी में। ये माइक्रो एलिमेंट्स होते हैं जिनकी माइक्रो डोजेस चाहिए, लेकिन ये जब इस तरह की चीजें हम खाते हैं तो उससे उनकी आपूर्ति हो जाती है, फुलफिलमेंट हो जाता है बॉडी में। तो ये फ्रूट्स और ये जो है ये इन चीजों के काम आते हैं, और न्यूट्रिशियस वैल्यू में बनाने के लिए हमें रोटी, सब्जी, चावल, दालें, प्रोटीन, चने, बिरिये और डिफरेंट तरह की सब्जियां, और ये चीजें हमें देनी पड़ती हैं।
1: बिल्कुल सर, तो जैसा कि आपने बताया कि स्थानीय चीजों को हम बच्चे के खाने में शामिल करते हैं तो उसके क्या फायदे होते हैं, तो जैसा कि कार्यक्रम में टिफिन बच्चों का कैसा हो, कौन कौन सी चीजें हमें शामिल करनी है, माता पिता किन चीजों का ध्यान रखें, इसको लेकर आपने हमें ढेर सारी बातों से अवगत करवाया है। तो अंत में आप हमारे श्रोता साथियों को कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: मैं पेरेंट्स को ये संदेश देना चाहूंगा कि जो खाना खिलाना है बच्चों को वो एक आर्ट है, और बच्चों को रूटीन डाइट में न्यूट्रिशियस डाइट दें, दालें दें, चने दें, छोले दें, चावल दें, रोटियां खिलाएं, घी खिलाएं, घर की बनी हुई चीजें होनी चाहिए। बच्चों को हफ्ते में एक बार हाफ टाइम के लिए बाहर की चीजें जरूर खिलाएं, ताकि बच्चों का फूड टेस्ट के प्रति एंथुसियाज्म बना रहे, और वो 7 दिन तक इस वेट में भी खाना खाएं, या मोनोटोनस ना कर दें कि रोज एक ही एक चीज बनाई जा रही है, किसी ने कह दिया न्यूट्रिशियस वैल्यू दाल में तो उसको दाल ही डाल के लाई जा रही है सुबह शाम, ऐसा ना करें। वैरायटी ऑफ फूड बनाएं, कभी कोई 5-6 तरह की तो दालें ही होती है, रोज एक दाल बन सकती है अलग अलग तरह की।
1: बिल्कुल,
0: इसी तरह डिफरेंट सब्जियां बनाएं, डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाएं, रोटी में कभी हरी सब्जी पत्ते की रोटी बना दें, कभी आलू की रोटी बना दें, कभी पराठे भेजें, कभी घर के बनी हुई डिफरेंट डिफरेंट डाइट्स जो है इनको टेस्ट भी डेवलप करेगी, ग्रोथ भी करेगी, इनके लिए न्यूट्रिशियस वैल्यू भी रखेगी और खाने के प्रति इनकी रुचि भी रखेगी। और मेरा मानना है कि हफ्ते में कभी एक बार स्नैक्स और एक बार आउटडोर डाइनिंग कराने में इनकी कोई बुराई नहीं होती, इनको बाहर खाना खिलाया जा सकता है। कुछ लोग ढाबे में खाना पसंद करते हैं तो बच्चे खाएंगे साथ तो उनको अच्छा लगेगा, तो ये भी करें, ऐसा ना हो कि बिल्कुल ना खाने के चक्कर में इनको, और एक जब बाहर खिलाने ले जाते तो नीट एंड क्लीन जगह देखें, और जो हाइजीनिक जगह हो, जहाँ सफाई रहती हो, जब ताजा फूड मिलता हो वहीं खिलाया जाएगी।
1: बिल्कुल,
0: तो मेरा मैसेज ये रहेगा कि वैरायटी ऑफ फूड, और हफ्ते में एक बार बाहर की इनको खाना खिलाया जाए, डाइनिंग रखी जाए, और स्नैक्स बीच बीच में कभी कभार दिए जाए, ताकि इनका खाने पीने के प्रति रुचि बनी रहे।
1: बिल्कुल, तो सर आपने हमें कार्यक्रम में बहुत अच्छी जानकारी दी है, तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
0: जी धन्यवाद।
1: श्रोता साथियों, जैसा कि आज की बातचीत से एक बात साफ है कि आदर्श टिफिन महंगा या बहुत खास होने की जरूरत नहीं है। हमारे घर और आसपास आसानी से मिलने वाली चीजों से भी स्वादिष्ट और पौष्टिक टिफिन तैयार किया जा सकता है। टिफिन में कोशिश करें कि विविधता हो, पौष्टिकता हो, साफ सफाई हो और बच्चों की पसंद का भी थोड़ा ध्यान हो। बच्चों को सिर्फ यह न सिखाया जाए कि सब्जी खानी है, बल्कि उसे भोजन की कीमत और उसके शरीर के लिए उसकी जरूरत भी समझाई जाए। जब बच्चे भोजन बनाने, फल सब्जी चुनने और अपना टिफिन तैयार करने में छोटी छोटी जिम्मेदारी निभाते हैं, तो उनमें स्वस्थ भोजन की आदत विकसित करना आसान हो जाता है। याद रखिए, टिफिन छोटा हो या बड़ा, उसमें पोषण हो सबसे ज्यादा। स्वाद के साथ सेहत का मेल, तभी तो बच्चा रहेगा चुस्त दुरुस्त और खेल। इसी संदेश के साथ श्रोता साथियों, कार्यक्रम सच्चा बचपन से मैं विदा लेती हूँ। आप भी अपने बच्चों के टिफिन को सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि स्वस्थ भविष्य की छोटी सी शुरुआत बनाइए। तो आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें जरूर पहुँचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखें, कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001, और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर को कार्यक्रम सच्चा बचपन से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: पप्पा पप्पा मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा था की दोस्ती करवी है।
3: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा।
2: होवे न कोई गरीबी रोके न कोई हालात रोके, शिक्षा तक इस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर। हिंडो स्कूल जा।

0: इन फिर भी जो बारिश आएगी उससे हमारी फसलों का बचाव सामान्य रूप से हो पाएगा।
1: जी बिल्कुल।
0: एक तो ये बात हुई कि किस तरह से बारिश का हमारा अभाव हो रहा है और हमारी जो फसलें हैं, जैसे हमारे खेतों में हम देख रहे हैं कि दो तरह की फसलें हमारे पास है। एक तो हमारा जो कल्टीवेटेड जैसे सोयाबीन है, मक्का है, उड़द है, या जो भी हमारे मिश्रित खेती वाली जो फसलें हैं वो भी है, और एक जो हमारी साग सब्जी और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है, जो
1: जी बिल्कुल,
0: जिसके अंदर हमारे बगीचे भी हैं, और उसमें ताकि इन दोनों तरह के रूप में अगर देखें तो कई सारी ऐसी बातें होती हैं कि हमें जो पानी का जो अभाव है उससे हमारी फसलों को बचाना है।
1: जी बिल्कुल।
0: हम हमेशा ये कहते हैं कि हम जैविक खेती करें।
1: जी बिल्कुल।
0: जैविक खेती करने का मतलब क्या होता है कि जब जैविक खेती हम करते हैं तो हमारी मिट्टी के अंदर ऐसी नमी बनी रहती है, हम उसके अंदर काफी जो सूखने का समय में हमारे अंदर जो पानी का जो उपलब्ध पानी है खेत का, उससे हमारी फसलों का बचाव हो सकता है।
1: जी बिल्कुल।
0: तो अगर जिन किसानों ने जैविक खेती करते हैं, जो अपने प्रयोग में लाते हैं, तो उनको निश्चित रूप से ऐसे समय में फायदा होता है।
1: जी बिल्कुल।
0: क्योंकि हमारा जो मिट्टी का जो कार्बनिक स्तर है वो जैविक खेती करने वाले को ज्यादा होगा।
1: जी जी।
0: तो उससे क्या होता है कि जो जड़ों का विकास है, जड़ों का फैलाव है, वो सामान्य रूप से अच्छा रहता है।
1: जी हाँ।
0: उसके अंदर नमी होती है, उसके अंदर इस तरह से बनावट मिट्टी की इस तरह से होती है कि वो उसके अंदर जो उसका पानी के अभाव को बहुत ज्यादा अनुभव नहीं कर पाती फसलें।
1: जी जी सर।
0: जबकि हम देख रहे हैं कि रासायनिक खेतों में अगर हम बातें करते हैं, जहां हम केवल रासायनिक खेती के आधार पर होता है, तो उसमें अभी पानी की आवश्यकता बहुत ज्यादा हो जाती है।
1: जी बिल्कुल।
0: इसलिए इस जो अभी का जो हमारा अभी वातावरण है, उससे हमें एक तो ये सीख इसी समय ले लेनी चाहिए कि हमें जैविक खेती को कैसे भी अपनाना चाहिए।
1: जी हाँ।
0: क्योंकि अगर ऐसी असामान्य विषम परिस्थितियां जब आती है तो जैविक खेती वालों को कंपैरेटिवली ज्यादा फायदा रहता है।
1: जी जी बिल्कुल।
0: वैसे भी हम देखते हैं कि जब जैविक खेती होती है तो मिट्टी के अंदर जो उसका पोषण है वो बना रहता है।
1: जी हाँ।
0: और पोषण का जो उसकी जड़ों को और पौधों को उपलब्ध कराने का वो सामान्य प्रक्रिया भी चलती रहती है।
1: जी बिल्कुल।
0: इसी तरह से ये चीजों में अगर जैविक खेती होती है तो हमें फसलों के अंदर थोड़ा सा ये हमें इस तरह की सामान्य प्रक्रिया से बचा कर सकते हैं।
1: जी बिल्कुल सर, आपने सही कहा। जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये जो बारिश का मौसम है उसमें हम बहुत अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं कि अगर हम बारिश का जब हमें अभाव देखने को मिलता है तो जो जैविक खेती हम करते हैं और उसमें हम जो जैविक खाद का उपयोग करते हैं तो उनमें नमी बनी रहती है, तो जो हमारे किसान भाई बहन हैं उन्हें उनकी फसलों में फायदा हो जाता है। वहीं हमारे किसान भाई बहन अगर रासायनिक खेती का प्रयोग करते हैं तो हम देखते हैं कि रसायन का जो वो प्रयोग करते हैं उससे उनकी जो मिट्टी है, उनका जो उपजाऊपन है वो भी खत्म हो जाता है और जो नमी खेत में बनी रहनी चाहिए वो भी नहीं बनी रहती है, जिसके कारण उन्हें अभी के समय में नुकसान उठाना पड़ सकता है।
0: और इस तरह से जब रासायनिक खेती करते हैं
1: जी जी।
0: तो क्या मिट्टी के अंदर गर्मी बनी रहती है।
1: जी बिल्कुल।
0: तो उसमें पानी की मांग ज्यादा रहती है। अब इस तरह की अभी जो हम बारिश का अभाव देख रहे हैं पानी का, तो अभी हमको फसलें भी हमको अपनी मैनेज करनी रही।
1: जी बिल्कुल।
0: तो उसके लिए क्या करते हैं कि हम देख रहे हैं अगर जो जमीन की सतह है उस पर अगर नमी बनी रहे तो अब नमी बनी कैसे रहे, तो उसके लिए हम हल्की गुड़ाई को मानते हैं कि हल्की गुड़ाई करेंगे तो उससे क्या होगा कि जो जमीन के अंदर जो, क्योंकि मिट्टी ठोस हो जाती है।
1: जी बिल्कुल।
0: तो मिट्टी ठोस होने से क्या है, अगर हल्की सी उसकी खुदाई गुड़ाई होती है तो उसमें जो नीचे की जो कैपिलरी होती है, जो पानी जैसे कहते हैं ना, अपन पानी तो जमीन के अंदर तो पानी है ही।
1: जी बिल्कुल।
0: तो वो पानी का कैपिलरी मूवमेंट होने से पानी सतह पे आने की संभावना बनी रहती है। और दूसरा, उस गुड़ाई के साथ बहुत ज्यादा गुड़ाई भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ऐसा भी नहीं कि उसमें सारा पानी उड़ा दें।
1: जी बिल्कुल।
0: क्योंकि हमें पानी की वैसे ही मांग है, पानी कम है और मिट्टी के अंदर भी पानी की उपलब्धता है। मिट्टी के अंदर पानी की उपलब्धता बनाने के लिए हम थोड़ी हल्की गुड़ाई कर रहे हैं ताकि जो नीचे जो पानी है वो थोड़ा सतह पे आ सके।
1: जी बिल्कुल।
0: दूसरा, वो पानी उड़े ना, इसके लिए हम जो, क्योंकि जब गुड़ाई करेंगे तो ऊपर जो खरपतवार वगैरह हैं जो सतह पे है उनको हम खेत से बाहर ना निकालें। मतलब उसमें एक तरह का जो कहते हैं मल्चिंग, जैसे जो हम किसान, सामान्य किसान हमारे समझते हैं मल्चिंग, मल्चिंग के अंदर क्या करते हैं कि जैसे प्लास्टिक की शीट वगैरह लगाते हैं या कुछ पौधों की ऐसी परत लगाते हैं ताकि जो मिट्टी की सतह है उससे पानी उड़े ना।
1: जी बिल्कुल।
0: क्योंकि पानी का सामान्य जो स्वभाव है उड़ता रहता है और उसको उड़ने से, क्योंकि अभी इस टाइम के बचाने के लिए हमें ये करना आवश्यक हो जाता है, तो इस तरह का भी हम प्रबंधन करें। फिर दूसरा प्रबंधन में ये भी है कि साहब हम स्प्रे से करें, फवारा जैसे अपन कहते हैं, एक तो छाट करके
1: जी जी।
0: अगर हमको खाद वगैरह भी देना है छोटा उसके सीमित मात्रा में, तो हम कम पानी के अंदर अगर हम स्प्रिंकलर या फवारे से या हम स्प्रे करें तो हम उसको अपने पौधों के ऊपर, फोलियर स्प्रे जिसको कहते हैं, कि पत्तों के ऊपर छाट के वो पानी का वो स्प्रे कर सकते हैं। उसमें हम थोड़ा सा अपना जो जैविक का वो है तो वो भी डाल सकते हैं, क्योंकि हम जैसे क्योंकि हमारे सभी उसके अंदर पत्ते आ रहे हैं जो फोलेज कहते हैं कि जिसमें पत्तों का है और पत्तों का बढ़वार की आवश्यकता है, पत्तों के ऊपर से पानी की उत्सर्जन होता है, इवेपोरेशन कहते हैं
1: जी बिल्कुल।
0: तो उसको रोकने के लिए क्या करते हैं कि हम उसके ऊपर हल्की जो छिड़काव कर सकते हैं। तो अभी अगर जैविक खेती जो हम करते हैं तो हम ये देखते हैं कि उसके अंदर हमें ऐसा छिड़काव होता है जिससे अपन कोई जिसे पत्ते बढ़वाने काला जो कहते हैं हार्मोन का ग्रोथ हार्मोन का स्प्रे कहते हैं, तो ग्रोथ हार्मोन जैविक खेती के अंदर ये बनाया जाता है कि वो जो कंडे हैं अपने उपले वगैरह होते हैं उनको पानी के अंदर 7 दिन तक उसके एक टंकी में पानी भर के और उसके अंदर उपले डालकर और 7 दिन तक उसको ढक के रख देते हैं और जो पानी उसका है 7वें दिन उसको निथार के उसका कंसंट्रेशन बना के हम 10% तक के में जो अपना घोल बना के उसको पानी के साथ छिड़काव कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि सीमित पानी के अंदर हम कुछ दिन के लिए अपन फसल को बचा पाएंगे
1: जी बिल्कुल,
0: क्योंकि वो हालांकि वैसा जो हम बारिश से कहते हैं वो तो नहीं होने वाला, लेकिन पत्तों के ऊपर थोड़ी नमी बनी रहेगी तो जो फसलों को लाइफ सेविंग मिल जाती है
1: जी बिल्कुल सर।
0: इसी तरह से जो अपनी जो सब्जियों वाली खेती होती है उसमें भी अभी एक ऐसी कई सारी चीजें हैं कि उसमें भी पानी हल्का सा जो बूंद बूंद पद्धति से पानी पिलाया जाता है, स्प्रिंकलर से पिलाया जाता है, फव्वारा पद्धति से पिलाया जाता है, और जो अपन ने कहा पत्तों के ऊपर पानी का छिड़काव
1: जी बिल्कुल,
0: उसके साथ में कुछ अपने जो
1: जैविक
0: खाद वगैरह उसका छिड़काव ताकि पौधे की लाइफ बच जाए। और ये भी देखते हैं कि अगर जब क्योंकि उसमें तो जैसे पपीते हैं या जितने भी हमारे उद्यान की फसलें हैं तो उसमें पौधे सीमित मात्रा में होता है, तो हमें उसको बूंद बूंद पद्धति से या सीमित मात्रा में पानी पिलाकर अभी हमें उसकी जीवन को बचाने की आवश्यकता होती है।
1: तो
0: उसमें ये कार्य करके हम पानी का बचाव कर सकते हैं और इस विषम परिस्थिति से हमारे पौधों का रख रखाव कर सकते हैं। फिर ये भी देखा जाता है कि जब मतलब इस तरह की जो हवाएं होती है तो वो आती है तो वो भी सतह पे जो नमी है उसको उड़ा देती है
1: जी बिल्कुल।
0: तो जहाँ पर ऐसे बैरियर क्रॉप है इस तरह से अगर लगे होते हैं तो उसमें भी पानी का उड़ना कम हो जाता है। तो इस तरह से जो कुछ कार्य हैं तो वो उनसे हम ये फसलों को बचा सकते हैं
1: जी बिल्कुल सर, आपने बहुत सही कहा। हमारे जो किसान भाई बहन है वो किस तरीके से अपनी फसलों की देखभाल कर सकते हैं वो बहुत सारी बातों पर ध्यान देकर ये जो कार्य है वो कर पाते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे जो खेत हैं उसके चारों ओर अगर हम फलदार पेड़ पौधे लगा देते हैं और उन पेड़ पौधों पर अगर हम पानी की सिंचाई करें तो इससे भी हमारे खेत में नमी बनी रह सकती है। तो ये सारी चीजें हमारे किसान भाई बहनों को ध्यान रखने की बहुत जरूरत है, क्योंकि हमारे जो किसान भाई बहन है वो अपनी खेती से ही आमदनी प्राप्त कर पाते हैं। अगर ये बारिश के मौसम में बारिश नहीं आ रही है तो उन्हें खेतों पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और जैविक खेती को अपना कर अपने खेतों का बचाव कर सकते हैं और खेतों में नमी को बरकरार वो रख सकते हैं।
0: हाँ, साथ में ये भी है कि अपन मिलवा खेती करते हैं या जो अपन कहते हैं कि जो सांगड़ी खेती अपन अपनी भाषा में कहते हैं, तो सांगड़ी खेती में क्या होता है कि जो फसल की सघनता ज्यादा होती है
1: जी बिल्कुल,
0: यानी कि पत्तों बहुत ज्यादा फॉलेज होता है उसमें और मिट्टी के ऊपर जो पानी की नमी को उड़ने का संभावना कम रहती है, तो उसमें क्या है पौधे आपस में सब बसते हैं
1: जी बिल्कुल,
0: तो उसमें पानी की मात्रा की आवश्यकता कम होती है। तो ऐसे समय में जब हमें इस तरह की खेती के हमने मॉडल अपनाए हुए हैं तो हमें निश्चित रूप से फायदा होता है। जैसा भी आपने बताया कि जैविक खेती है तो जैविक खेती में नमी है, जैविक खेती इसलिए कहते हैं कि जैविक खेती अपनाओ ताकि हमें खेत के अंदर नमी बनी रहे, खेत के अंदर हमारा पोषण बना रहे, खेत में उपजाऊपन बना रहे और क्योंकि मिट्टी हमारी अभी की नहीं है, मिट्टी हमारी बरसों से लाखों सालों से चली आ रही है और लाखों साल आगे चलेगी। तो आज हमारा किसान भाइयों का ये दायित्व है कि हमें किसी तरह से मिट्टी को बचा के रखें, तो ऐसा ना कि हम थोड़ी लापरवाही से मिट्टी को खत्म कर दें, हम रेगुलर रासायनिक खेती कर करके उसके अंदर उसके उपजाऊपन का ह्रास कर दें। तो ये हमें अभी के समय में ये समझने की बहुत बड़ी आवश्यकता है कि जिन किसानों ने जैविक खेती की है तो वो फायदे में है और आगे भी हम ये माने कि हमें जैविक खेती अपनानी चाहिए
1: जी बिल्कुल। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और हमारे किसान भाई बहनों को आपने बहुत अच्छी जानकारी दी।
0: धन्यवाद।
2: અંજલિ બોલ જેમ કે આજે આપણે રોકડેજી સર આવી હતા ને એણે આપણને ઘણા ઘણી વાતે બતાડી કે આ પાણી તો પડતું નથી, તેવામાં આપણી જે ફસલ હે એને આપણને હરતે રખરખાવ રાખવું પડે।
1: હવે જાગૃતિ બોન એણે આપણને ઘણી આખી એવી વાતે બતાડી હે જે આપણને ધ્યાન રાખવી હોગા ને અગર એ વાતે આપણે ધ્યાનમાં રાખંગા તો આપણે દેખી શકો કે આપણે જે ફસલ હે એનું જે ઉત્પાદન હે એ ખરાબ નહીં થાય, કેમ કે આપણે દેખ કે જે વખત આપણે જૈવિક ખેતીની વાત કરો તો અણી ખેતીમાં વધારે પાણીની જરૂરત નથી પડતી, આપણે દેખ કે આપણે જે ખાદ ના કહ ને જે એનમે मिट्टी की उर्वरा क्षमता रहे ई भी वधी तकी रहे है। तो इनमें नमी रहवाने कारण अपनी जो फसलें हैं अगर इन्होंने टाइम माते पानी नहीं मिले तो आटलू अपना ने नुकसान नहीं उठाव पड़े है। ने एने साथे आपने जे खेतर है एने शारे आड़ी अगर आपने फलदार पौधा लगा भी दो ने एना में पानी नी सिंचाई कर दो तो इन तकी भी आपने खेतर में नमी भी बनी तकी रहे है। तो घणा कनी एवी बातें है जे आपने खेती करते टाइम ध्यान राखवी जोईए।
2: तो अंजलिबन बातें तो आपने घणा कनी करी ने हवे आप देखी रहो कि टाइम थई गयो है सूटा पड़वानो। तो सूटा तो पड़ा पण जाते जाते हमरे लिए एक और कितने मोरे पड़ा सूटा
1: हवे।

0: अंजलि बोन गीत तो आई शुरू नड़स गीत हाथे पड़ा सूटा आशा करे कि आज जेवी बातें करी कार्यक्रम खेतीवाड़ी में ये आपड़े किसान भाई बोनों ने गमी होंगा तो किसान भाई बोन आपने हमारो आज नो कार्यक्रम केवु लाग्यो एना बारे में आप राय सुझाव आली शको आपड़े अड़ा पता माते
1: तो बोने लकी लो अमारू पतु है कार्यक्रम खेतीवाड़ी वागड़ रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कुपड़ा वागथरा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान अमारू पिनकोड नंबर है 327001 अजी वधारे जानकारी बल्ले आप अमने फोन करी शको अमारे अणा फोन नंबर माते अमारू फोन नंबर है 9460051234
0: तो भाई बन फेरी मलंगा अणस कार्यक्रम में एक ना विषय ने हाते तारू दी
2: राम राम
0: राम राम, राम, राम।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
1: लेकर हाजिर है अंजलि कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें रहने वाली है महिला सहभागिता और समान अवसर को लेकर। जैसा कि जब आधी आबादी आगे बढ़ती है तभी समाज पूरी गति से आगे बढ़ता है।
0: जी।
1: किसी भी देश की प्रगति का रास्ता केवल आर्थिक विकास से नहीं बल्कि महिलाओं को समान अधिकार, समान अवसर और निर्णय लेने में समान भागीदारी देने से होकर गुजरता है। महिला को अवसर देना केवल एक व्यक्ति को आगे बढ़ाना नहीं बल्कि पूरे परिवार, समाज और राष्ट्र की क्षमता को मजबूत करना है। इसीलिए महिला सहभागिता और समान अवसर केवल चर्चा का विषय नहीं श्रोताओं, बल्कि एक न्यायपूर्ण और विकसित समाज की अनिवार्य आवश्यकता है।
0: जी हाँ जागृति जी, तो आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से इस विषय पर ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में क्यों ना हम हमारे श्रोता साथियों को एक प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन करवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम सच्चा स्वराज में वागड़ रेडियो 90.8 FM।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि गीत से पहले विषय से अवगत करवाया था कि आज हम बात करने वाले हैं महिला सहभागिता और समान अवसर को लेकर। अंजलि, कहा गया है कि नारी को अवसर, समाज को नई दिशा, समान भागीदारी से बनेगा सशक्त राष्ट्र।
1: बिल्कुल,
0: यानी कि श्रोताओं, जब आधी आबादी आगे बढ़ती है तभी समाज पूरी गति से आगे बढ़ता है।
1: बिल्कुल जागृति जी, क्योंकि किसी भी देश की वास्तविक प्रगति का आंकलन केवल उसकी सड़कों, इमारतों, तकनीक या आर्थिक विकास से नहीं किया जा सकता। विकास तब सार्थक माना जाता है श्रोता साथियों, जब समाज के प्रत्येक वर्ग को आगे बढ़ने का समान अवसर मिले।
0: बिल्कुल,
1: और हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार योगदान दे सके। इस दृष्टि से महिलाओं की सहभागिता और उन्हें समान अवसर प्रदान करना बहुत जरूरी है। महिलाएं समाज की आधी आबादी है और परिवार, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, इसी के साथ हम देखते हैं कि संस्कृति और राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका सदियों से महत्वपूर्ण रही है।
0: बिल्कुल,
1: आज महिलाएं केवल परिवार की जिम्मेदारी नहीं निभाती जागृति जी, बल्कि वह शिक्षक, डॉक्टर, वैज्ञानिक, किसान, उद्यमी, अधिकारी, खिलाड़ी, कलाकार, जनप्रतिनिधि और समाज सेवी के रूप में अपनी पहचान भी बना रही है।
0: जी हाँ।
1: लेकिन महिलाओं की क्षमता का पूरा उपयोग तभी संभव है जब उन्हें रोजगार, शिक्षा, नेतृत्व, निर्णय लेने और अपने सपनों को पूरा करने का समान अवसर मिले।
0: बिल्कुल अंजलि, आपने सही कहा। तो हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से कि महिला सहभागिता केवल महिलाओं के अधिकारों का विषय नहीं है, बल्कि ये परिवार, समाज और राष्ट्र के विकास से जुड़ा हुआ प्रश्न है।
1: बिल्कुल,
0: जिस समाज में महिलाओं की प्रतिभा को अवसर मिलता है वहाँ विकास की गति और अधिक व्यापक और समावेशी होती है। महिला सहभागिता का अर्थ है श्रोताओं, समाज के प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं की सक्रिय, सम्मानजनक और प्रभावी भागीदारी। परिवार के निर्णयों से लेकर ग्राम सभा, पंचायत, विद्यालय, कार्यस्थल, व्यापार, प्रशासन और राष्ट्रीय नीतियों तक महिलाओं की आवाज को महत्व मिलना महिला सहभागिता का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सिर्फ महिलाओं की संख्या बढ़ जाना ही पर्याप्त नहीं है। वास्तविक सहभागिता तब मानी जाएगी जब महिलाएं अपनी राय स्वतंत्र रूप से रख सके, निर्णय प्रक्रिया में भाग ले सके और उनके विचारों को सम्मान पूर्वक सुना जाए।
1: जी हाँ जागृति जी, अब यही बात आती है समान अवसर क्यों आवश्यक है। श्रोता साथियों, समान अवसर का अर्थ यह नहीं है कि हर व्यक्ति को बिल्कुल एक जैसी परिस्थितियाँ दी जाए।
0: जी हाँ।
1: बल्कि यह है कि किसी व्यक्ति के आगे बढ़ने में केवल उसके महिला होने के कारण बाधा न बने। यदि किसी लड़की में प्रतिभा है तो उसे शिक्षा का अवसर मिलना चाहिए। यदि कोई महिला व्यवसाय करना चाहती है तो उसे प्रशिक्षण और आवश्यक सहयोग मिलना चाहिए। यदि वह नेतृत्व की क्षमता रखती है तो उसे नेतृत्व करने का अवसर भी मिलना चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि किसी भी समाज में प्रतिभा का लिंग नहीं होता, प्रतिभा को अवसर चाहिए, मेहनत को सम्मान चाहिए और सपनों

0: आत्मनिर्भरता के महत्व की। श्रोता साथियों, महिला सहभागिता का एक महत्वपूर्ण आधार आर्थिक आत्मनिर्भरता है।
1: बिल्कुल,
0: जब महिला अपनी आय अर्जित करती है तो उसके आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता में वृद्धि होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में हम देखते हैं जागृति जी कि महिलाएं खेती, पशुपालन, दूध उत्पादन, हस्तशिल्प, घरेलू उद्योग और छोटे व्यवसायों में महत्वपूर्ण योगदान देती है।
1: बिल्कुल,
0: उनके श्रम को अक्सर औपचारिक आर्थिक गतिविधि के रूप में पहचान नहीं मिली है। आवश्यकता है श्रोता साथियों कि महिलाओं के कौशल को प्रशिक्षण, बाजार, तकनीक और वित्तीय अवसरों से जोड़ा जाए, क्योंकि महिलाओं को केवल रोजगार की तलाश करने वाली नहीं बल्कि रोजगार देने वाली उद्यमी के रूप में भी विकसित करना चाहिए।
1: बिल्कुल अंजलि, तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें चल रही है महिला सहभागिता और समान अवसर को लेकर, तो ये बातें आज के इस कार्यक्रम में ऐसे ही बनी रहेंगी। लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
0: जी हाँ,

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि गीत से पहले हम जान पा रहे थे कि किस तरीके से महिला सहभागिता और समान अवसर की जरूरत होती है, आर्थिक आत्मनिर्भरता के महत्व को हमने जाना। यही बात करें ग्रामीण महिलाओं की सहभागिता की, तो श्रोता साथियों, भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है।
1: बिल्कुल,
0: वे खेतों में काम करती हैं, पशुओं की देखभाल करती हैं, परिवार का प्रबंधन करती हैं और कई छोटे घरेलू व्यवसाय भी चलाती हैं। ग्राम विकास की योजनाओं में महिलाओं

0: की सक्रिय भागीदारी से हम देखते हैं जागृति जी की स्थानीय समस्याओं की बेहतर पहचान हो सकती है।
1: बिल्कुल।
0: पानी, स्वच्छता, शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य और आजीविका जैसे मुद्दों पर महिलाओं का अनुभव महत्वपूर्ण होता है। ग्राम सभा और पंचायतों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर मजबूत करती है।
1: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि जिस निर्णय का प्रभाव महिलाओं और परिवारों पर पड़ता है उसमें महिलाओं की आवाज भी शामिल होनी चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: घर में बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक योजना और महत्वपूर्ण पारिवारिक फैसलों में महिलाओं की राय को सम्मान मिलना होगा। इस तरह हम कह सकते हैं कि समाज और शासन के स्तर पर महिलाओं की भागीदारी बहुत जरूरी है। जब महिलाएं निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा बनती है तो विकास के मुद्दों में उनके अनुभव और दृष्टिकोण शामिल होते हैं। श्रोताओं, महिला समानता की राह में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक पुरानी सोच है, ये काम महिलाओं का है और ये काम पुरुषों का है। ऐसी सोच व्यक्ति की क्षमता को सीमित करती है। काम का निर्धारण लिंग के आधार पर नहीं होता है बल्कि रुचि, योग्यता और क्षमता के आधार पर होना चाहिए। बेटियों को वो भी सपने देखने का अधिकार है जो बेटों को मिलता है। अगर बेटी विज्ञान पढ़ना चाहती है, खिलाड़ी बनना चाहती है, व्यवसाय करना चाहती है या प्रशासन में जाना चाहती है तो परिवार को उसका उत्साह बढ़ाना चाहिए।
0: जी हाँ जागृति जी, इसमें परिवार की भूमिका है कि वह महिला सहभागिता की शुरुआत घर से करे। यदि परिवार बेटियों और बेटों के बीच भेदभाव नहीं करता तो समानता की मजबूत नींव रखी जा सकती है। बेटियों को निर्णय लेने का अवसर देना, उनकी बात सुनना, उनकी शिक्षा को महत्व देना, उन्हें अपनी प्रतिभा विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना परिवार की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।
1: बिल्कुल।
0: साथ ही घर के कार्यों को केवल महिलाओं की जिम्मेदारी मानना भी उचित नहीं है। परिवार के सभी सदस्यों को घरेलू जिम्मेदारियों में सहयोग करना चाहिए। हम देखते हैं जागृति जी कि महिलाओं को रोजगार के क्षेत्र में भी समान अवसर मिलना चाहिए। उनकी योग्यता, मेहनत और कार्य क्षमता का सम्मान होना चाहिए। कार्यस्थल ऐसा होना चाहिए जहाँ महिलाओं को सुरक्षित, सम्मानजनक और सहयोगी वातावरण मिले।
1: बिल्कुल।
0: उन्हें अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ने, नई जिम्मेदारियां लेने और नेतृत्व करने का अवसर मिलना चाहिए। क्योंकि महिलाओं की कार्य क्षमता पर संदेह करने के बजाय अगर उनकी प्रतिभा को हम पहचानते हैं तो हम देखते हैं कि महिलाएं अपने आप में आत्मनिर्भर बन पाती है।
1: जी हाँ अंजलि, क्योंकि आज डिजिटल तकनीक ने महिलाओं के लिए नए अवसर खोले हैं। ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल भुगतान

0: बताए श्रोता साथियों, आखिरकार संतुलित भोजन है क्या? हम कहना चाहेंगे कि संतुलित आहार वह आहार है श्रोता साथियों, जिसमें शरीर की जरूरत के अनुसार विभिन्न पोषक तत्व हमें उचित मात्रा में मिल सके।
1: बिल्कुल।
0: हमारे भोजन की थाली में श्रोता साथियों अलग अलग खाद्य समूहों को शामिल करने की हमें कोशिश करनी चाहिए, जैसे कि श्रोता साथियों अनाज में गेहूं, चावल, बाजरा, ज्वार और मक्का। दालों की बात करें अंजलि जी, तो हम देखते हैं कि दालों में हमें कई प्रकार की दालें होती हैं, उनको शामिल करना चाहिए। इससे श्रोता साथियों हम देखते हैं कि हमारे शरीर को प्रोटीन मिलता है। हरी सब्जियां और जो दूसरी सब्जियां होती हैं वो हमें शामिल करनी है। मौसमी फल हमें शामिल करने हैं। दूध या इसके कई सारे विकल्प होते हैं, वो भी हम शामिल कर सकते हैं। थोड़ी मात्रा में श्रोता साथियों स्वस्थ वसा है उसे शामिल करना है। पर्याप्त पानी पिए और साथियों कहना चाहेंगे कि हर व्यक्ति की उम्र, काम और स्वास्थ्य और साथ ही शरीर की जरूरतें होती हैं वो अंजलि जी अलग अलग होती हैं।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए श्रोता साथियों विशेष स्वास्थ्य स्थिति होने पर हमें डॉक्टर से पोषण के बारे में जानकारी भी हम ले सकते हैं।
1: जी हाँ मनीषा, पोषण की बात केवल भोजन तक सीमित नहीं है, स्वच्छता भी अच्छे स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि भोजन पौष्टिक है लेकिन साफ नहीं, पानी असुरक्षित है और भोजन गंदगी में रखा गया है तो बीमारियां फैल सकती हैं। इसलिए हमें कुछ सरल आदतें अपनानी चाहिए। खाना खाने से पहले हाथ धोना, शौचालय के बाद हाथ साफ करना, बच्चों को भोजन देने से पहले हाथ धोना, फल और सब्जियों को साफ रखना, भोजन को ढककर रखना, साफ और सुरक्षित पानी पीना। सही पोषण और स्वच्छता दोनों मिलकर स्वस्थ जीवन का आधार बनते हैं। श्रोता साथियों, हमारे आसपास प्रकृति हमें मौसम के अनुसार कई प्रकार के फल और सब्जियां भी देती है। मौसमी खाद्य पदार्थों को भोजन में शामिल करना एक अच्छी आदत हो सकती है। स्थानीय स्तर पर मिलने वाले खाद्य पदार्थ अक्सर मनीषा आसानी से उपलब्ध होते हैं और परिवार के बजट के अनुसार भी हो सकते हैं। हमें हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि केवल महंगे खाद्य पदार्थ ही पौष्टिक होते हैं। हमारे आसपास मिलने वाली दालें, अनाज, हरी सब्जियां, मौसमी फल, मोटे अनाज, स्थानीय पारंपरिक खाद्य पदार्थ भी पोषण का अच्छा स्रोत हो सकते हैं। इसलिए अपने गांव और क्षेत्र में उपलब्ध पौष्टिक खाद्य पदार्थ की जानकारी बढ़ाना जरूरी है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर ढेर सारी बातें हो चुकी हैं। कार्यक्रम के माध्यम से हमने जाना कि बच्चों के लिए पोषण क्यों जरूरी है, महिलाओं और हमारे युवा साथी हैं उनके लिए पोषण क्यों जरूरी है और सही संतुलित आहार क्या है, इसे लेकर हमने ढेर सारी बातें की।
1: बिल्कुल।
0: अब देख रहे हैं कि समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना श्रोता साथियों को कार्यक्रम का अंतिम गीत हम सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही हम कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य से विदा लेना चाहेंगे, लेकिन अंत में आपको कहना चाहेंगे कि आज हम धीरे धीरे अपनी पारंपरिक भोजन व्यवस्था से दूर होते जा रहे हैं। पहले लोग स्थानीय अनाज, दालें, सब्जियां और मौसमी खाद्य पदार्थ अधिक खाते थे। मोटे अनाज और स्थानीय खाद्य पदार्थों को भोजन में शामिल करने की परंपरा कई क्षेत्रों से चली आ रही है।
1: जी हाँ।
0: बाजरा, ज्वार, रागी, कूड़ी, कांग, बटी, अन्य स्थानीय अनाजों को संतुलित भोजन का हिस्सा माना गया है।
1: जी हाँ।
0: लेकिन भोजन में विविधता सबसे महत्वपूर्ण है। केवल एक ही चीज को स्वास्थ्य का पूरा आधार नहीं माना जा सकता। हमें अपने पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक पोषण संबंधी जानकारी को समझदारी से जोड़ना चाहिए। यदि घर के आसपास थोड़ी सी जगह उपलब्ध है श्रोता साथियों, तो वहाँ आप छोटी सी पोषण वाटिका यानी कि किचन गार्डन तैयार कर सकते हैं। पोषण वाड़ी में हम अपनी आवश्यकता के अनुसार सब्जियां, कुछ अन्य पौष्टिक खाद्य पौधे भी लगा सकते हैं। इससे परिवार को ताजी सब्जियां मिल सकती है और बच्चों को भी बागवानी और पौष्टिक भोजन के महत्व की जानकारी मिलती है। घर की छोटी सी जगह का उपयोग करके हरी पत्तेदार सब्जियां, टमाटर, मिर्ची, मौसमी सब्जियां उगाने का प्रयास किया जा सकता है। पोषण वाड़ी केवल सब्जियां उगाने का माध्यम नहीं है श्रोता साथियों, बल्कि परिवार को स्वस्थ भोजन के प्रति जागरूक बनाने का एक माध्यम भी है।
1: तो इन्हीं बातों के साथ आज के कार्यक्रम से विदा लेते हैं श्रोता साथियों। उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातें रही, गीत संगीत रहे, वो आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
0: बिल्कुल, तो श्रोता साथियों लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वाकथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
1: इसी के साथ दोस्तों, आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
0: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारश्चर
1: और आपकी अपनी साथी मनीषा पटेल को।
0: नमस्कार।

0: हमरो हमरो हमरो गरीबों ने पूछे हैं जमीन माते नाम हिरते आवे कागज केने करने बनावो पड़े सरकारी विभाग में जा या पसे गांव में स्वाद थई जाए
1: तो हमरो बोनू अरे सब समस्या नो समाधान आपरे कने से ग्राम सभा तक की बात शुरू थाय है पटवारी सचिव ने पंचायत आय तक की हर प्रक्रिया जुड़े है एकलस ने हमरा ने हाथे मली में जावू है फार्म भरो जानकारी लो जमी माते नाम लकड़वो काटो नती जय वरे अधिकार हमर अपनावे जानकारी सबनु हाथ में अधिकार आस है समाधान में राह
0: होवे भाइयों ने बहनों हक जानो हक मांगो जमीन कागज माते अपनु नाम लकाड़ो
2: वागड़ रेडियो एवं वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

नमस्कार श्रोता साथियों, कार्यक्रम सपनों की उड़ान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर। स्वीकार कीजिएगा साथियों मेरा प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हम कार्यक्रम सपनों की उड़ान को लेकर जब भी हाजिर होते हैं तो आपसे बातचीत करते हैं एक नए विषय को लेकर। तो आज भी कार्यक्रम के माध्यम से मेरी आपसे बातें ढेर सारी होंगी एक नए विषय को लेकर। दोस्तों जैसा कि हम सभी देखते हैं कि हमारे जीवन में कई बार ऐसी परिस्थिति आती है जब हमें लगता है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हम अपने आसपास के लोगों को सफल होते हुए देखते हैं और अपने आप को उनसे कम समझने लगते हैं। लेकिन कभी आर्थिक स्थिति हमें कमजोर महसूस कराती है साथियों, तो कभी शिक्षा की कमी हमें झंझोर देती है, कभी परिवार की जिम्मेदारियां हैं, तो कभी समाज की बातें और कभी किसी की असफलता का दर्द। धीरे धीरे दोस्तों हम अपने मन में ये सोच बना लेते हैं कि मैं नहीं कर सकता कुछ भी, मेरे बस की बात ही नहीं है, मेरे पास साधन नहीं है, मैं दूसरों जितना अच्छा भी नहीं हूँ। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि क्या वास्तव में हमारी कमजोरी हमारी परिस्थितियाँ होती हैं? नहीं साथियों, अक्सर हमारी सबसे बड़ी कमजोरी होती है खुद को कमजोर मान लेना। तो आज के इस कार्यक्रम में हम इसी विषय को लेकर ढेर सारी बातें करेंगे और जानेंगे कि खुद को कमजोर समझना साथियों सबसे बड़ी कमजोरी नहीं होती है। तो बातें ढेर सारी होंगी, लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शुरुआत में हम आपको गीत संगीत के साथ पहले मनोरंजन करवाते हैं। तो आइए श्रोता साथियों, पहले सुनते हैं यहाँ पर एक प्यारा सा गीत। तो आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में।

साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले बातचीत की शुरुआत हो चुकी है और विषय के बारे में भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि खुद को कमजोर समझना हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। दोस्तों, कहा जाता है कि इंसान पहले अपने मन में हारता है, उसके बाद जीवन में हारता है। जब तक हमारे मन में विश्वास होता है, तब तक कठिन से कठिन रास्ता भी आसान लगने लगता है। लेकिन जिस दिन हम अपने आप को कमजोर मान लेते हैं दोस्तों, उसी दिन हमारी कोशिशें भी कमजोर पड़ने लगती है। आप जरा सोचिएगा कि एक व्यक्ति के पास बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, वो मेहनती भी है, उसके पास सीखने की क्षमता भी है, लेकिन अगर वह हमेशा यही सोचता रहे कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो क्या वह अपनी प्रतिभा का सही उपयोग कर पाएगा? शायद नहीं। दूसरी ओर एक व्यक्ति के पास साधन कम हो सकते हैं, पढ़ाई के अवसर भी कम मिल सकते हैं, जीवन में परेशानियां भी हो सकती है, लेकिन अगर उसके मन में ये विश्वास है कि मैं कोशिश करूंगा और आगे बढ़ूंगा, तो वह धीरे धीरे अपनी मंजिल के करीब पहुंच सकता है। इसलिए हमारी ताकत केवल हमारे शरीर में नहीं होती साथियों, बल्कि हमारे विचारों और आत्मविश्वास में भी होती है। हम देखते हैं कि जीवन में हर व्यक्ति को संघर्ष तो करना ही पड़ता है। परिस्थितियां हमें कमजोर नहीं बनाती, हार मान लेना हमें कमजोर बनाता है। कोई व्यक्ति आर्थिक परेशानियों से लड़ता है, तो कोई बीमारी से, तो दोस्तों कोई पारिवारिक जिम्मेदारियों से, और कोई समाज की नकारात्मक सोच से लड़ता है। कई बार लोग सोचते हैं कि जिनके पास पैसा है, सुविधाएं हैं और अच्छे अवसर है, सफलता केवल उन्हीं के लिए बनी है। लेकिन इतिहास और समाज में ऐसे अनगिनत उदाहरण है श्रोता साथियों, जिन्होंने कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी अपने जीवन को बदल दिया है। गाँव और छोटे कस्बों में भी ऐसे अनेक युवा हैं जिन्होंने सीमित संसाधनों के बावजूद भी पढ़ाई की है, मेहनत की है और आगे भी बढ़े हैं। साथ ही महिलाओं की बात करें तो ऐसी कई महिलाएं हैं जिन्होंने घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ अपने पैरों पर खड़ा होना सीखा है। ऐसे किसान भी हैं जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में नए तरीके अपनाए हैं और खेती को एक बेहतर अवसर के रूप में अपनाया है। हमारे सामने ऐसे बच्चों के भी उदाहरण हैं दोस्तों, जिन्होंने साधनों की कमी को अपनी पढ़ाई के रास्ते में कभी बाधा नहीं बनने दिया। और इन सभी लोगों में एक बात समान थी, और वो थी उन्होंने खुद को कमजोर मानने से इनकार कर दिया। तो इस तरीके से हम जान पा रहे हैं, परिस्थितियां हमें कमजोर नहीं बनाती, बल्कि हमारे मन में जो हमारी सोच है कि हम हार मान चुके हैं, वो हमें कमजोर बनाता है। तो बातें ढेर सारी मेरी आपसे चल ही रही हैं, और हम जान ही रहे हैं श्रोता साथियों कि खुद को कमजोर समझना हमारी सबसे बड़ी कमजोरी होती है। तो इस विषय को लेकर आगे भी मेरी आपसे ढेर सारी बातें होंगी, लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं यहाँ पर एक और प्यारे से गीत के साथ में। तो आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में और सुनते रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM।

दोस्तों, इस गीत के बाद फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि बातचीत का विषय काफी महत्वपूर्ण चल रहा है और गीत से पहले ढेर सारी बातें भी हम जान पाए थे। हमने जाना था दोस्तों कि परिस्थितियां कमजोर हमें नहीं बनाती, बल्कि हमारे मन में जो सोच है कि हम हार मान चुके हैं वो हमें कमजोर बनाता है। और गीत से पहले मैंने जैसा कि आपको बताया था कि हमारे सामने ऐसे कई उदाहरण हैं जिन्होंने कभी परिस्थितियों के सामने घुटने नहीं टेके, बल्कि उन्होंने परिस्थितियों का सामना किया और खुद को कमजोर मानने से इनकार कर दिया। यही अब बात आती है कि अपनी तुलना दूसरों से करना भी हमारी कमजोरी को बढ़ाता है। वो कैसे साथियों? तो आज के समय में बहुत से लोग अपने जीवन की तुलना दूसरों से करने लगे हैं। कोई कहता है कि उसके पास मुझसे ज्यादा पैसा है, तो कोई ये कहता है कि वो मुझसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, उसके पास मुझसे ज्यादा अधिक अवसर है, वो मुझसे ज्यादा सुंदर है, वो मुझसे ज्यादा सफल है। ये ढेर सारी ऐसी बातें हैं जो हमें सुनने को मिलती है। लेकिन

व्यक्ति की परिस्थितियाँ अलग होती है साथियों, और हर व्यक्ति का जीवन भी अलग होता है। दो लोगों की यात्रा एक जैसी नहीं हो सकती। हो सकता है कि किसी को सफलता जल्दी मिल जाए और किसी को उसके लिए अधिक समय और संघर्ष करना पड़े, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि जो व्यक्ति धीरे धीरे चल रहा है वह कभी अपनी मंजिल तक ही नहीं पहुंच पाएगा। धीरे चलना गलत नहीं है, रुक जाना गलत है। इसलिए दोस्तों, दूसरों से अपनी तुलना करने के बजाय आपको अपने आप से ये पूछना चाहिए कि मैं क्या कल से आज बेहतर हूँ, मैंने आज क्या नया सीखा है, मैं अपनी कमजोरी को ताकत में कैसे बदल सकता हूँ या बदल सकती हूँ। श्रोता साथियों, यही सवाल हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। अगर इस बात को एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाऊं, तो एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। वह पढ़ाई में बहुत तेज नहीं था। जब भी स्कूल में कोई प्रतियोगिता होती तो वह पीछे हट जाता। धीरे धीरे उसके मन में ये बात बैठ गई दोस्तों कि वह दूसरों से कमजोर है। वह ये सोचने लगा कि मैं कभी कुछ नहीं कर सकता। फिर क्या हुआ, एक दिन उसके शिक्षक ने उससे पूछा कि बेटा, तुम हर काम शुरू होने से पहले ही क्यों मान लेते हो कि तुम हार जाओगे। शिक्षक की बात सुनकर लड़के ने कहा, क्योंकि गुरुजी, मैं दूसरों जितना अच्छा नहीं हूँ। शिक्षक उसे स्कूल के बाहर एक पेड़ के पास ले गए। उन्होंने साथियों जमीन पर पड़े एक छोटे से पौधे की ओर इशारा करते हुए कहा कि देखो, ये पौधा अभी छोटा है, इसके पास न बड़े पेड़ जैसी ऊंचाई है और न ही मजबूत तना, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि यह कभी बड़ा पेड़ नहीं बनेगा। साथियों, लड़के ने कहा, नहीं, अगर इसे पानी और देखभाल मिलेगी तो यह बड़ा भी हो सकता है। यही बात सुनकर शिक्षक थोड़ा सा मुस्कुराए और बोले कि बस यही बात तुम्हारे जीवन पर भी लागू होती है। तुम आज जहाँ हो वहीं से शुरुआत करो, खुद को कमजोर मत समझो, सीखते रहो, मेहनत करते रहो और आगे बढ़ते रहो। साथियों, उस दिन के बाद लड़के ने दूसरों से तुलना करना बंद कर दिया। उसने अपनी कमियों को पहचानना शुरू किया और उन पर काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा और कुछ वर्षों बाद वही लड़का अपने क्षेत्र में एक सफल व्यक्ति बना। दोस्तों, उसकी जिंदगी तब बदली जब उसने खुद को कमजोर समझना बंद कर दिया। इसलिए कमजोरी को पहचानना गलत नहीं है, और ये बात हम सभी को समझने की आवश्यकता है। हमारे अंदर की कमजोरी को पहचानना गलत नहीं होता साथियों, बल्कि अपनी कमियों को पहचानना ही सुधार की पहली सीढ़ी होती है। अगर हमें पढ़ाई में परेशानी है तो हमें पढ़ाई पर अधिक ध्यान देना चाहिए। अगर हमें किसी काम का अनुभव नहीं है तो हमें सीखना चाहिए। अगर हम आत्मविश्वास की कमी महसूस करते हैं दोस्तों, तो हमें धीरे धीरे बोलने, समझने और आगे बढ़ने का अभ्यास भी करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कहना चाहूंगी कि परेशानी तब होती है जब हम अपनी किसी एक कमजोरी को अपने पूरे जीवन की पहचान बना लेते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए, कोई कहता है कि मैं पढ़ाई में कमजोर हूँ, इसलिए मैं जीवन में सफल नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों, ये सोच तो बिल्कुल गलत है। किसी व्यक्ति की एक कमजोरी यह नहीं तय करती कि वह जीवन में क्या बन सकता है। हर इंसान में कुछ कमियां होती है तो कुछ खूबियां भी होती है। जरूरत इस बात की है कि हम अपनी खूबियों को पहचाने, कमजोरियों को पहचाने, लेकिन खुद को कमजोर नहीं माने श्रोता साथियों। और यही आज के कार्यक्रम का मुख्य संदेश है, क्योंकि हम जैसा कि जानते हैं कि वर्तमान युग में प्रतिस्पर्धा काफी बढ़ चुकी है। हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, हर किसी को श्रोता साथियों सफलता चाहिए। लेकिन सफलता प्राप्त करने के इसी दौर में हमारे अंदर कुछ कमियां भी हैं जो हमें पीछे ढकेल देती है। लेकिन दोस्तों, हमारे अंदर आत्मविश्वास ये होना चाहिए कि हम उन कमियों को हमारी कमजोरी ना समझकर हमारी ताकत बना लें। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ी कमजोरी होती है। इस बात को हम गलत साबित करें, जब इंसान खुद पर विश्वास करना छोड़ देता है युवा साथियों, तो उसकी सबसे बड़ी ताकत भी बेकार हो जाती है। लेकिन जब इंसान अपने आप पर भरोसा कर लेता है तो साधारण परिस्थितियों में रहते हुए भी वह असाधारण काम कर पाता है। हमें हमेशा जीवन में ये याद रखना चाहिए कि हमारी परिस्थितियां हमें रोक नहीं सकती। अगर हमारा हौसला मजबूत है तो हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। हमारी असफलताएं हमें हरा नहीं सकती अगर हम दोबारा कोशिश करने का साहस रखते हैं तो। दूसरों की बातें हमें कमजोर नहीं बना सकती अगर हमारा खुद पर विश्वास है तो। इसलिए आप आज से ही अपने मन में ये संकल्प लीजिए कि हम खुद को कमजोर नहीं समझेंगे, हम असफलता से सीखने की कोशिश करेंगे, हम अपनी कमियों को पहचान कर उन्हें सुधारेंगे, हम दूसरों से तुलना करने के बजाय खुद को बेहतर बनाएंगे। क्योंकि जिस दिन इंसान अपने मन पर विश्वास करना सीख जाता है, उसी दिन से उसकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाती है। इन्हीं बातों के साथ अब मैं कार्यक्रम से विदा लेना चाहूंगी, क्योंकि बातें ढेर सारी हो चुकी है श्रोता साथियों।
विदा तो जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले आपको मनोरंजन करवाना चाहूंगी यहाँ पर एक और प्यारे से गीत के साथ में। तो आप बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में।

दोस्तों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम सपनों की उड़ान अब यही समाप्त होता है। अंत में आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि हार से मत डरना, कोशिश को जारी रखना, रास्ते मुश्किल हो तो हौसला भारी रखना, खुद को कभी कमजोर मत समझना, जीवन में तुम्हें मंजिल मिलेगी, बस खुद पर विश्वास रखना। इन्हीं उम्मीदों के साथ कार्यक्रम से अब विदा लेती हूँ। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का यह कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखे, कार्यक्रम सपनों की उड़ान, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643 पर। इसी के साथ आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org। तो दोस्तों, फिर से मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम सपनों की उड़ान में एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: सेहत नु राज हूं है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की परबात नी शुरुआत पानी तकी करो, थोड़ू सू व्यायाम ने दात काढ़ी नी जीवन जीवा, फल सब्जी रोजे खा बीमारी नी दूर भगावा, जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू, आज जीवन नो सहारो है, आज थकी आ राज ने अपनावंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नु असली राज। वाघ रेडियो वाघधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: हमरो हमरो हमरो गरीबों ने पूछे हैं जमीन माते नाम हिरते आवे कागज केने करने बनावो पड़े सरकारी विभाग में जा या पसे गांव में स्वाद थई जाए
1: तो हमरो बोनो अरे सब समस्या नो समाधान आपरे कने से ग्राम सभा तक की बात शुरू थाए है पटवारी सचिव ने पंचायत आय तक की हर प्रक्रिया जुड़े है एकलस ने हमरा ने हाथे मली में जावो है फार्म भरो जानकारी लो जमी माते नाम लकड़वो काटो नती जैवरे अधिकार हमरा अपनावे जानकारी सबनु हाथ में अधिकार आस है समाधान में राह
0: होवे भाइयों ने बोनो हक जानो हक मांगो जमीन का कागज माते अपनो नाम लकाड़ो
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
3: जागृति बुन आपने कार्य सोचू है अगर आप बूंदे रुके जाएगा तो हूँ था
4: नाना अंजलि बोन हूँ था का
3: अरे जागृति बोन आपड़ी जे नदिया है ये हुकी जाएगा खेतर बंजर थे जाएगा ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा
4: ओ अंजलि बोन एटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है पानी थकीस आपड़ो जीवन है
3: होवे जागृति बोन हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है
4: होवे अंजलि बोन आपड़े भाई बोन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो बारिश ने पानी नो संग्रह करो आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नो जीवन सफल थी जागा
3: होवे होवे जागृति बोन आपड़े भाई बोनों ने कहो कि पानी बचावो ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है हर बूंद नु मोल आपड़े जानो
5: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
6: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।

तो साथियों, ये तो थी हमारी आज की सभा, जो कि अब यहीं समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि आज के इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। तो साथियों, आपको हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत कैसे लगे, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखे, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं साथियों, हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643 पर। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी अगली सभा में। तब तक के लिए दीजिए आज के सब